और आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं बैजू बावरा फिल्म का एक गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत है शकील बदायनी का और संगीत है नौशाद का।

इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीतों का एक कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: स्य च विस्तारः अस्ति। सः उक्तवान् यत् दलस्य सहकर्मिभिः नूतन संघटनात्मक दलस्य सदस्यैः च सह अत्युत्तमः संवादः जातः। इतः प्राक् भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिन नवीनः नवनियुक्तैः राष्ट्रियपदाधिकारिभिः सह उपवेशनम् अकरोत्। नितिन नवीनः सनसूचितवान् यत् उपवेशनावधौ भाजपा दलेन वन्दे मातरम् इत्यस्य ऐतिहासिक परम्परायाः सम्माननस्य संरक्षणस्य च सम्बन्धे एकः प्रस्तावः अपि पारितः। दलेन सम्पूर्णस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य सम्माननं गौरवम् ऐतिहासिक परम्पराम् राष्ट्रियस्थानं च संरक्षितुं संकल्पः अपि कृतः। भारतस्य राष्ट्रियगीतस्य रूपेण तस्य स्थानं यथावत् स्थापयितुं दलं प्रतिबद्धमस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य कोलकातायां गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड अथ यंत्र इंडिया लिमिटेड चेत्यनयोः गार्डन रीच इत्यत्र स्थितेभ्यः पंच सौविध्य केन्द्रेभ्यः आयोज्यमाने भूमिपूजन समारोहे भागं ग्रहीष्यति। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अपि कार्यक्रमे उपस्थितः भविष्यति। भूमिपूजन समारोहानन्तरं जीआरएसई इत्यस्मिन् भवने सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमैः सह संवाद सत्रम् आयोजयिष्यते। रक्षामंत्री दिवसस्य उत्तरार्धे युवभारती क्रीडांगणे ईस्ट बंगाल एफसी तथा मोहन बागान सुपर जॉइंट इत्यनयोः मध्ये आयोज्यमानायाः ड्यूरन कप इत्यस्य स्पर्धायाः निर्णायक चक्रमपि द्रक्ष्यति। भारतीय वायुसेनया ऑस्ट्रेलिया मलेशिया देशयोः द्वयोः अन्ताराष्ट्रिय विमानाभ्यासयोः स्वीय सहभागिता सफलतया सम्पन्ना। एतयोः ऑस्ट्रेलियायां पिच ब्लैक 20-26 इत्यभ्यासः अथ मलेशियायां उदार शक्ति 20-26 इत्यभ्यासः च सम्मिलितौ स्तः। रक्षामन्त्रालयेन उक्तं यत् द्वयोः देशयोः भारतीय वायुसेनायाः सहभागितया हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे तस्याः परिचालन क्षमता उन्नत सामरिक समन्वयम् अथ रणनीतिक रक्षा सहयोगं च सुदृढीकर्तुं प्रतिबद्धता प्रकाशिता। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः अद्य प्रभृति रूस देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। तत्र जयशंकरः भारत रूस अन्ताप्रशासनिकायोगस्य वाणिज्यार्थिक प्रविधि सांस्कृतिक सहयोगानां 27वें अधिवेशनस्य साहाध्यक्षतां विधास्यति। यात्रावधौ डॉ जयशंकरः रूस देशस्य विदेश मन्त्रिणा सर्गेई लावरोव इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति अथ क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु अपि चर्चा करिष्यति। क्रीडा मन्त्रालयेन ह्यः जापाने आगामि मासे प्रारप्स्यमाणानाम् एशियायाः क्रीडानां कृते 290-400-सदस्यात्मकस्य भारतीय दलस्य अनुमोदनं कृतम्। अस्मिन् दले 65-200 पुरुषाः अथ 27-200 महिलाः च क्रीडकाः सन्ति। भारतस्य 20-सदस्ययुतं बैडमिंटन दलं पीवी सिंधुः लक्ष्य सेनः आयुष शेट्टी इत्यादिभिः प्रसिद्धैः क्रीडकैः युक्तमस्ति। अस्मिन् दले महिलायुगलं गायत्री गोपीचन्दः अथ त्रिसा जोली अपि सम्मिलिताः सन्ति। इति वार्ताः।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के ठीक 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह। सुबह सुबह कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है, तो क्यों ना आज हम बात करें इस बारिश की ही, इस पानी की ही। बारिश की बूंदें जब धरती पर आती हैं, बारिश की बूंदें जब धरती पर आती हैं, सूनी राहों में हरियाली सजाती हैं, ठंडी हवाओं में खुशबू से घुल जाती है, ठंडी हवाओं में खुशबू से घुल जाती है, बारिश हर दिल में एक नई उमंग जगाती है। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा?

कि कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने आपने कभी इस बारे में कुछ सोचा या नहीं सोचा, लेकिन हम आपको बताते हैं कि हमने इस बारे में पढ़ा जरूर होगा। भूगोल की किताबें पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई गई थी हमारे अध्यापकों द्वारा, और जब हम पढ़ते थे तो हमारे दिमाग में एक चित्र उभरता है, सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती और फिर बरसात की बूंदें और बहती हुई एक नदी, उसके किनारे बसा हमारा घर, गांव या शहर। साथियों, पानी से उठी भाप बादल बनकर पानी बरसता है और वापस नदी या समुद्र में मिल जाता है, ये तो आप सब जानते ही हैं। और ये तो हुई जलचक्र की बात। बरसात के मौसम में आप सब जानते ही हैं कि क्या होता है, चारों तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। हमारे आपके घरों के आसपास सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है, देश के कई भाग पानी में डूब जाते हैं। ये बाढ़ ना गांवों को छोड़ती है और ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। साथियों, ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। साथियों, चलो थोड़ी सी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाते हैं और याद करते हैं अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है या कोई अतिथि हमारे घर आता है और हमें पैसा देता है, तो हम खुश होकर झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं और फिर जब कोई जरूरत होती है तो गुल्लक से निकाल लेते हैं, और इस तरह से बचत के पैसों को बाद में उपयोग में लेते हैं। तो साथियों, हमारी ये धरती भी इसी तरह की एक बहुत बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है, तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी सी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में और छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। जल चक्र हमें ठीक से समझते हैं, जब बरसात हो तो हम उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी और हम इस बारिश का भरपूर आनंद भी ले सकते हैं। और अंत में इतना ही, वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नव छटा अनूठी घनघोर छा रही है, बादलों की ओट से जब बूंदे मुस्कुराती हैं, सूखी धरती को प्रेम से गले लगाती हैं, मिट्टी की खुशबू मन को महका जाती है, बारिश की हर फुहार नई खुशी दे जाती है। तो सुबह सुबह कार्यक्रम से अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह, आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कृषि संकेत। आज का विषय है कार्बनिक खाद एवं संतुलित उर्वरक करे उपयोग, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एमपी दुबे।
1: जब भी हम खेती की बात करते हैं किसी भी फसल की, ये कहा जाता है और ये साहित्य में भी उपलब्ध है कि हमको कम से कम 3 वर्ष में एक बार प्रत्येक खेत में कार्बनिक खाद देना आवश्यक होता है। ये कार्बनिक खादें ना केवल सूक्ष्म मात्रा में किंतु सभी आवश्यक पोषक तत्वों को उपलब्ध कराती हैं फसलों के लिए। वहीं दूसरी ओर अगर हमने कुछ रसायनों का प्रयोग किया है, जैसे नींदानाशक, कीटनाशक या फफूंदनाशक, इन दवाइयों का इस्तेमाल

0: रोग कीट या खरपतवारों को दूर करने के लिए अगर इस्तेमाल किया है तो इनका जो घातक प्रभाव होता है काफी हद तक देसी खादें या गोबर की खाद डालने से इनका जो घातक प्रभाव है जमीन में वो काफी कम हो जाता है। जो इसकी जो आँच है घातक प्रभाव की, इसका जो विषैलापन है वो कम होता है, फसलों में इसके अवशेष कम आते हैं और वातावरण सभी लोग काफी हद तक इनके दुष्प्रभाव से बचे रहते हैं। तो ये बहुत अहम पहलू है कि आपकी जितनी भी खेती है आवश्यक रूप से आपको हर तीसरे वर्ष कम से कम प्रत्येक खेत में खाद डालना है। अगर आप खाद्यान्न फसलें बोते हैं जैसे धान हैं गेहूं हैं, तो हम अनुशंसा करते हैं कि 1 हेक्टेयर में 25 से 30 टन अर्थात 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमारी अनुशंसा होती है। अगर आप दलहनी और तेलहनी फसलों की खेती करते हैं तो आप 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर के मान से इन खादों का प्रयोग जरूर करें ताकि आपका उत्पादन बढ़े और सभी पोषक तत्व जो जीवन काल के लिए फसलों के आवश्यक होते हैं वो मिलते रहें। जहाँ तक अच्छा उत्पादन लेने का सवाल है, तो इतनी बड़ी मात्रा में हम इन कार्बनिक खादों की आपूर्ति प्रत्येक खेत में नहीं करा पाते हैं, क्योंकि इतनी मात्रा में जब 1 हेक्टेयर में हमको 30 टन की आवश्यकता होती है, कल्पना कीजिए कि आप पूरी धरती में इस मान से देसी खाद नहीं दे पाएंगे। उसके अन्य विकल्प हैं, आपका नाडेप निर्मित खाद, इसमें पोषक तत्वों की सांद्रता बढ़ जाती है, और अच्छा खाद है केंचुआ खाद, जिसमें और ज़्यादा मात्रा होती है, सांद्रता ज़्यादा होती है, कम खाद में ज़्यादा आपको पोषक तत्व मिल जाते हैं, अभी सभी आवश्यक तत्व होते हैं। लेकिन जो अधिकतम उत्पादन लेने के लिए हम बहुत अच्छी अच्छी नई नई प्रजातियों का इस्तेमाल करते हैं, जिनका उत्पादन उदाहरण के लिए गेहूं में 50 से 55 या 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिलता है। अच्छे किसान 5.5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन ले रहे हैं हमारे ज़िले में भी, लेकिन इतना उत्पादन लेने के लिए उनको भरपूर पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे गेहूं की बात करें, सिंचित गेहूं की, तो 100 से 120 किलो नत्रजन, मिट्टी कैसी है, मिट्टी का टेस्ट कैसा आया है, उपलब्ध नत्रजन कितनी है, उस पर निर्भर करेगा कि 1 हेक्टेयर में 100 किलो चाहिए कि 125 किलो चाहिए, ठीक है ना। दूसरा है स्फोर, इसको हम कम से कम 60 किलो प्रति हेक्टेयर कि इसकी आवश्यकता होती है सिंचित गेहूं के लिए, और पोटाश 40 किलो प्रति हेक्टेयर रिक्वायर्ड होता है, आवश्यक होता है। जस्ता कम से कम 5 किलो 6 फसलों के लिए, और गंधक 20 किलो प्रति हेक्टेयर हर वर्ष हर फसल के लिए, ये हमारी अनुशंसा होती है तत्वों की। तो देसी खादों से ये इन तत्वों की इतनी बड़ी मात्रा में आपूर्ति कराना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए उर्वरक के रूप में आपको ये साधन दिए गए हैं, तो इनसे हम लोग आपूर्ति कम मात्रा में ज़्यादा उर्वरकों की तत्वों की पोषक तत्वों की आपूर्ति कराते हैं। लेकिन इनके दुष्प्रभाव ना हो उसके लिए आवश्यक है, जैसा मैंने पूर्व में कहा, कि प्रत्येक 2 वर्ष में आपको देसी खादें खेतों में डालना है। जैसे आपका 12-32-16 है, हमारी गेहूं की फसल में पोटाश सबसे कम लगता है 40 किलो सिंचित गेहूं में, तो सबसे पहले हम 16 को आधार मानते हुए 40 किलो आपका पोटाश कितने एनपीके में लगेगा उसकी गणना करते हैं, और उस निर्धारित मात्रा में जो 40 किलो की आपूर्ति वो खाद करवाता है, उस मात्रा में कितना एन और पी चला गया है उसको 100 और 60 में से हम घटा देते हैं, और बाकी बची हुई जो मात्राएं हैं नत्रजन की और स्फुर की वो हम यूरिया और सिंगल सुपरफास्फेट।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि संकेत। आज का विषय था कार्बनिक खाद एवं संतुलित उर्वरक करें उपयोग, और विशेषज्ञ थे डॉक्टर एमपी दुबे। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ की चर्चा। वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस थीम पर राज्य स्तरीय

0: क्लेव का मुख्यमंत्री कल करेंगे शुभारंभ। खेल मंत्रालय ने जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय भारतीय दल को दी मंजूरी। और भोपाल तथा इंदौर सहित प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महासचिव भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं, जिनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और जनता के साथ इसके जुड़ाव को गहरा करना है। इससे पहले दिन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा कल कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल में वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस थीम पर राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विकास को IIT, IIM, एम्स और DRDO जैसे 130 से अधिक अग्रणी संस्थानों के शोध, तकनीकी और नवाचार से जोड़ना है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल मुख्य वक्तव्य देंगे। इस अवसर पर दीर्घकालिक संस्थागत सहयोग के लिए MOU भी हस्ताक्षरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल के SNCU के वार्मर में आग से झुलसे 3 नवजात बच्चों में से एक की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मृत बच्ची के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जबलपुर मेडिकल कॉलेज में उपचाररत दोनों बच्चों के संपूर्ण इलाज का खर्च शासन द्वारा वहन किया जाएगा। डिजिटल कृषि मिशन के तहत नई दिल्ली में कल एग्रीस्टेक एवं दालों में आत्मनिर्भरता मिशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसमें सहभागिता की। उन्होंने बताया कि देश में अब तक 10 करोड़ 41 लाख से अधिक किसानों की फार्मर ID बनाई जा चुकी है।
1: एग्रीस्टेक हो या दलहन आत्मनिर्भरता मिशन हो, बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है हमारे। 10 करोड़ 41 लाख से ज्यादा फार्मर आईडी अपनी बनाए ना। लैंड पार्सल भी कई राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया फार्मर आईडी बनाने के बाद। डिजिटल सर्वेक्षण का काम भी कई जगह प्रारंभ हुआ है, बहुत अच्छा। अब डिजिटल सर्वे में जैसे एक राज्य से ये बात आई थी कि गेहूं और धान का तो बढ़िया हो जाता है, लेकिन सोयाबीन जैसी फसल में ऊपर पत्ते रहते हैं, नीचे फलियां रहती, तो कई बार परफेक्ट प्रोडक्शन नहीं आता। तो मुझे लगता है वैसी चीजों को भी हम ध्यान में रख के रास्ते निकालेंगे, टेक्नोलॉजी से ही रास्ते निकलेंगे।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल नई दिल्ली के एक कार्यक्रम में कहा कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोपरि कर्तव्य है।
2: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
0: मध्य प्रदेश पुलिस की अभिनव पहल कम्युनिटी पुलिसिंग और SOS बालग्राम के साझे प्रयासों से भटके हुए बच्चों को नया सहारा मिल रहा है। हाल ही में रायसेन में डरे सहमे मिले 2 बच्चों को जबलपुर पुलिस से समन्वय कर उनके माता पिता तक पहुंचाया गया। वहीं दिल्ली से भटककर भोपाल पहुंची एक किशोरी ने डर के कारण अपना हुलिया बदल लिया था, जिसे छतरपुर और भोपाल पुलिस ने 3 दिन में परिजनों को सौंपा। रानी कमलापति स्टेशन के पास ट्रैक पर मिले बच्चे की पहचान गोविंदपुरा थाने में दर्ज रिपोर्ट से हुई। वहीं पुलिस ने अंतर्राज्यीय समन्वय से उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चों को भी उनके घर वापस पहुंचाया है। DGP कैलाश मकवाड़ा ने पुलिस के इन प्रयासों की सराहना की है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2026 के लिए मध्य प्रदेश के 2 उत्कृष्ट चयनित शिक्षकों में सांदीपनी महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल की शिक्षिका डॉ. अर्चना शुक्ला और सीधी जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार के शिक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह के नवाचारों की इन दिनों काफी चर्चा है। दृढ़ इच्छा शक्ति, नवाचार, जनभागीदारी और विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा के माध्यम से इन दोनों शिक्षकों ने शासकीय स्कूलों में सकारात्मक बदलाव की नई मिसाल पेश की है। डॉक्टर अर्चना शुक्ला राज्य स्तर पर चयनित 6 शिक्षकों में शामिल रहीं और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला शिक्षिका बनी। वहीं शैलेंद्र प्रताप सिंह ने ग्रामीण क्षेत्र के सीमित संसाधनों वाले स्कूल को अपनी नवाचारी सोच से एक बेहतर शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित किया। दोनों शिक्षकों की इस उपलब्धि पर स्कूल शिक्षा विभाग ने गर्व जताया है।

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम MPRDC का एक्सीडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम अब सड़क दुर्घटनाओं के साथ साथ जलभराव, बाढ़ और अन्य आपदाओं की भी रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा है। प्रबंध संचालक भरत यादव के अनुसार इस सिस्टम को ARS 3.0 संस्करण में अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी आ रही है। किसी भी आपातकालीन या सड़क दुर्घटना में मदद के लिए नागरिक टोल फ्री नंबर 1099 पर तुरंत संपर्क कर सकते हैं। अब समाचार खेल के। खेल मंत्रालय ने जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय भारतीय दल को मंजूरी दे दी है, जिसमें सर्वाधिक 73 एथलेटिक्स से हैं। इस टीम में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, लंबी कूद के मुरली श्रीशंकर और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन जैसे दिग्गज शामिल हैं। वहीं एशियाई खेलों से ठीक पहले भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया है, जहां पर रोहित यादव ने भाला फेंक में 87.68 मीटर के अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ और मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद में 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज बारिश का दौर फिलहाल थम गया है, लेकिन कुछ जिलों में अच्छी बारिश चल रही है। नर्मदा नदी इस समय उफान पर है। जबलपुर में भी जलस्तर बढ़ने से धुआंधार जलप्रपात भी जलमग्न है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन सहित प्रदेश के प्रमुख जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। नागरिकों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने लंबित CM हेल्पलाइन शिकायतों का समीक्षा करते हुए उनके जल्द से जल्द निराकरण के निर्देश दिए। खंडवा नगर निगम के जोन 1 और जोन 2 में 27 अगस्त को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा शिविर का आयोजन किया जाएगा। आगरमालवा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित वृहद स्वास्थ्य परीक्षण सह विधिक जागरूकता शिविर में 200 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर 93 लोगों की आभा ID बनाई गई। कटनी के गादरघाट में 29 और 30 अगस्त को कजलिया मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर बारडोली उत्सव समिति ने बैठक की। इंदौर में मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की संयुक्त बेंच द्वारा कल जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें 33 प्रकरणों में से 17 का निपटारा किया गया। धार में आगामी त्योहारों को देखते हुए कलेक्टर राजीव रंजन मीणा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। डिंडौरी के मेहंदवानी में जनविश्वास अभियान शिविर के दौरान पशुपालन विभाग द्वारा 39 पशुपालकों को दवाइयां वितरित की गई। अशोकनगर में प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित कर विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुरैना के जिला रोजगार कार्यालय परिसर में बेरोजगार युवाओं के लिए 24 अगस्त को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक युवा संगम जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा और छिंदवाड़ा में भारत के उप महारजिस्ट्रार एवं अतिरिक्त मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी डॉ. विजय कुमार ने दौरा कर जनगणना 2027 की तैयारियों का जायजा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ की वार्ता। वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस थीम पर राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव का मुख्यमंत्री कल करेंगे शुभारंभ। खेल मंत्रालय ने जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय भारतीय दल को दी मंजूरी और भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के ठीक 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रेडियो पत्रिका कार्यक्रम गागर में सागर। संकलन व निर्माण है सेवा नासिर का और संयोजन प्रस्तुति है शुभ्रता यादव की।
1: गागर में सागर।
2: पत्रिका गागर में सागर को लेकर हाजिर हूँ मैं साहिबा। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। श्रोताओ, इस पत्रिका कार्यक्रम में सबसे पहले पेश है सागर मंथन।
1: सागर मंथन।
2: हमारे नगर सागर में हरियाली तीज का पर्व बड़े हर्ष उल्लास और पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। मकरोनिया नगर पालिका तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा विशेष सांस्कृतिक आयोजन और पौधारोपण किए गए। इस अवसर पर बोलते हुए

0: ये हैं सागर सांसद महोदया डॉक्टर लता वानखेड़े।
1: माँ ममता सा गहरा सागर, सुता पुष्प की कोमल डाल, पत्नी रूप में संस्कृति जिससे रहती जीवित हर काल, देवी जैसा रूप समाया, जैसे शीतल हो चंदन, हर रूप में सफल रही उस मातृशक्ति को कोटिश वंदन, कोटिश वंदन, कोटिश वंदन। मातृशक्ति के बिना तो ये सृष्टि है ही नहीं, सृष्टि का आधार ही मातृशक्ति है। और उनका इतना सम्मान, उनके उल्लास के लिए ये कार्यक्रम आयोजित करना, यहाँ पर मकरोनिया में ये जो परंपरा शुरू करी है, ये बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बहनों, मैं आप सबको हरियाली तीज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि हरियाली तीज केवल एक पर्व नहीं है, ये हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति, प्रकृति के प्रति हम सबका प्रेम और नारी शक्ति के सम्मान का पर्व है। और सावन की हरियाली, झूलों की मधुर वेग और लोकगीतों की मिठास इस पर्व को विशेष बना देती है।
0: पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि 16 अगस्त को मनाई गई। मध्य प्रदेश के सागर जिले सहित पूरे राज्य में उनकी पुण्यतिथि पर नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा उनके राष्ट्र सेवा के कार्यों को याद किया गया।
2: अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे,
3: अमर रहे, अमर रहे।
2: अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे,
3: अमर रहे, अमर रहे।
0: वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी की जयंती इस साल भी 16 अगस्त को मनाई गई। उनकी वर्षगांठ पर विभिन्न कार्यक्रम, शोभा यात्राएं और श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गईं। शिक्षण संस्थाओं में भी उनका पुण्य स्मरण किया गया।
4: रानी अवंतीबाई लोधी प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महान वीरांगना थी। उन्होंने मध्य प्रदेश के रामगढ़ रियासत में अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया।
0: श्रवण मास के दौरान मध्य प्रदेश में नर्मदा जल लेकर भव्य कांवड़ यात्राएं निकाली जाती हैं। हाल ही में बरमान और बुधनी घाट से पवित्र जल लेकर सैकड़ों शिव भक्त और कांवड़ यात्री सागर पहुंचे, जहां जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया।

नाग पंचमी के अवसर पर शहर में पारंपरिक अखाड़ों की गूंज सुनाई दी। मुख्य मार्गों से निकले अखाड़ों को देखने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक जुटे।

0: और अब मौसम का हाल। सागर में मानसूनी बारिश ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अच्छी बारिश से राजघाट बांध का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। दो दिनों में 51 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ा है। राजघाट बांध से सागर नगर सहित मकरौनिया, सदर, कैंट क्षेत्र में जल आपूर्ति होती है। चलते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर, शिखर की ओर।
1: शिखर की ओर।
0: आज इस प्रोग्राम में लाए हैं संसद सत्र में सागर को मिली सौगातों की चर्चा। आज हमारा सौभाग्य है कि शिखर की ओर कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं सागर सांसद महोदया डॉक्टर लता वानखेड़े जी। मैडम, अभी आपका दिल्ली प्रवास रहा, जिसमें सुनने में आया है कि सागर के लिए भविष्य में हमें बहुत सारे लाभ और सौगातें मिलने।
2: तो पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमको ये अवसर दिया कि हम अपनी प्रिय जनता को बता सके कि हमने दिल्ली में इस बार क्या क्या किया है। तो इस बार जब सत्र में गए तो हमने सबसे पहले हमारी जो आम जन की, हमारे ग्रामीण जन जीवन वाले हमारे सब भाइयों की जो आवश्यकता होती है कि सबसे ज्यादा दीदी ट्रेन का ठहराव चाहिए, और हमारी जो विदिशा की 3 विधानसभाएं हैं, सिरोन, शमशाबाद और कुरवाई, वहाँ ट्रेन रूट नहीं है। उसके लिए बीना में हमारी वंदे भारत का स्टॉपेज हो उसके लिए, और खुरई में हमारी बहुत सी ट्रेनें हैं उनका स्टॉपेज हो उसके लिए, हमारे लिए पूना के लिए नई ट्रेन हमने मांगी।

0: है। ऐसी बहुत सारी ट्रेन्स हैं जिनकी हमने मांग की है और हम सबसे पहले माननीय हमारे यशस्वी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मिले, उनसे सारा कुछ मांग की। उन्होंने बहुत सारा आश्वासन भी हमें दिया है कि वो बहुत जल्दी इन सब मांगों पर विचार करेंगे और उसको करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही हमने हमारे जो मंत्री है NHAI राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी, वो अभी विदिशा आए थे, बहुत सारी घोषणा उन्होंने की थी, बहुत सारे हमें सौगात उन्होंने दी थी, तो उसके ऊपर जो DPR बनना, सर्वे होना, ये सारा कार्य कहाँ तक पहुँचा इसके लिए भी हमने उनको पूरी जानकारी दी और उन्होंने यथाशीघ्र उसको प्रारंभ करके और उसको बनाने का हमें तुरंत हमें आश्वस्त किया उन्होंने। उसके साथ ही हमारे और जो नए जितने भी हमारे ब्रिज बने हैं, आरओबी बने हैं, तो उसका तत्काल काम शुरू हो उसके लिए भी हमने आग्रह किया माननीय रेल मंत्री जी से। जो हमारे हैवी इंडस्ट्री मंत्री कुमार स्वामी, उनसे भी कहा कि हमारे सागर को रोजगार की बहुत आवश्यकता है। वैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सागर एक औद्योगिक हब बनने जा रहा है और उसी को और आगे बढ़ाते हुए एक हैवी इंडस्ट्रीज यदि हमारे क्षेत्र में लग जाती तो हमारे काफी युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो इस दिशा में भी हमने उनसे फिर पुनः एक बार हमने उन्हें आवेदन दिया है, तो उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया। इसके साथ ही सबसे बड़ी सौगात हमें इस बार मिली है कि हमारे पूरे देश में 12 एयरपोर्ट स्वीकृत हो रहे हैं, उसमें से हमारे सागर का नाम भी है। तो बहुत जल्दी हमारे मंत्री जी राम मोहन नायडू जी इस ओर प्रयास कर रहे हैं और हमारी कलेक्टर मैडम जो अति संवेदनशील है, अति सक्रिय है प्रतिभा जी, उन्होंने भी लैंड का सर्वे करना शुरू कर दिया है ताकि वो हम उनको लैंड भेज सके और फिर वो हमारे यहाँ ये हवाई सेवाएं जल्दी से दे सके। इस दिशा में भी हमारे निरंतर प्रयास रहा। उसके बाद हमारे कृषि मंत्री माने शिवराज सिंह चौहान जी को हमने यहाँ पर, चूंकि हमारा पूरा कृषि प्रधान क्षेत्र है हमारा बुंदेलखंड, तो हमारे बुंदेलखंड में कृषि यूनिवर्सिटी नहीं है, तो हमने उनसे एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नए अनुसंधान केंद्र की उनसे मांग की है, तो मुझे लगता है हमारी वो मांग भी अतिशीघ्र पूरी होगी। इसके साथ साथ हमने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सागर मेडिकल कॉलेज है लेकिन बहुत सारी सुविधाएं हमारे लोगों को नहीं है जिससे उन्हें भोपाल नागपुर जाना पड़ता है। इस चीज से हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को अवगत कराया तो उन्होंने भी कहा है कि इसको आप प्रदेश शासन से इसका आप जल्दी से प्रपोजल भेजो तो हम आपके सागर के हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी बनाने की हम स्वीकृति दे देंगे। इसके साथ ही और हम आप देखते हैं कि हम निरंतर हमारे मंत्रियों से मिलते रहते हैं।
1: एक सवाल मन में आ रहा है कि हमारे यहाँ जो साइबर की जो वो है उसके बारे में भी सुनने में आ रहा है।
0: बिल्कुल, हमने अभी अपने गृह मंत्री जी से मुलाकात की और उनसे कहा कि हमारा एक फॉरेंसिक सेंटर है जिसको अत्याधुनिक बनाने की जरूरत है क्योंकि हमारे पूरे संभाग का वो इकलौता एक ही फॉरेंसिक सेंटर है, तो उसको आप बनाइए, पुलिस को और आधुनिकीकरण, पुलिस सेवा को और आधुनिक बनाइए और ऐसी बहुत सारी मांगे हमने उनके समक्ष पेश की तो उन्होंने हमारे सुझावों पर वो सकारात्मक जवाब दिया और उन्होंने कहा कि इसको हम जरूर करेंगे। और इस तरह हम अपने रक्षा के जो हमारी DG मैम है रक्षा क्षेत्र की, उनसे मिले, उनसे पूरा हमने कैंट एरिया की जो हमें समस्या आ रही है, हमारे नागरिकों को समस्या आ रही है कि वो जहाँ रहते हैं उन घरों में उनके घर खराब हो चुके हैं, वो अपने घरों में रिनोवेशन नहीं करा पाते, यदि कराते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी लग जाती है, इत्यादि इत्यादि हमने बहुत सारी चीजें उन्हें बताई। तो उन्होंने कहा कि मैडम देखिए ऐसा है, चुनाव करवाइए क्योंकि ये जो संविलियन है इसको कराने में बहुत दिक्कत जाती है क्योंकि हम आपको लैंड नहीं देंगे, हम आपको केवल घर देंगे, रोडे दे देंगे, बाकी हम लैंड नहीं देंगे, यदि लैंड ही नहीं देंगे तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि हमारे वहाँ के बहुत सारे भाई लोग कृषि करते हैं, उनका जीवन यापन उसी पर निर्भर होता है, यदि वही नहीं मिलेगा तो वो तो बेरोजगार हो जाएंगे।
1: जी जी,
0: इसलिए उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी पुनः चुनाव की प्रक्रिया में जाएंगे और उसके लिए आप हम लोगों को प्रपोजल भेजिए तो हम चुनाव के यहाँ से आदेश दे देंगे। इस तरह हम बहुत सारे अपने मंत्रियों के साथ साथ हम जो हमारी कार्यपालिका रहती है, जो लोग हमारे विभिन्न अधिकारी रहते हैं, जो जानते हैं कि कहाँ से कहाँ रोड बनना है, कहाँ से कहाँ रेलवे लाइन का सर्वे होना है, हम उनसे भी मिले। हम रेलवे के जो चेयरमैन हैं सतीश जी, उनसे मिले। NHAI के जो बड़े अधिकारी हैं जो सबसे बड़ा काम देखते हैं, उनसे मिले। हम सभी मंत्रियों के साथ साथ कार्यपालिका से भी हम मिलते हैं ताकि वो हमारी सारी योजनाएं हैं उसको मंत्री तक कोई ठीक से फीट कर सके और उसका कार्य तुरंत प्रारंभ कर सके। इस तरह हमने विभिन्न क्षेत्रों में हमारे जो उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी उनको भी हमारे यहाँ के उद्योगों को के संरचना को और अधिक आधुनिक बनाने की दिशा में भी हमने उनको भी पत्र सौंपा है जी।

0: समस्याओं का हम 3 महीने अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जाके मंत्रियों से उसके बारे में बातचीत।
1: बहुत बहुत आभार आपका।
2: और अब बारी है इस पत्रिका के अगले चरण की, सागर के मोती।
3: सागर के मोती।
2: आज के इस अंक में शामिल है कॉमनवेल्थ गेम्स पदक विजेता यामिनी मौर्य।
4: कॉमनवेल्थ गेम्स में सागर को पहला पदक दिलाने वाली आज एक हस्ती हमारे साथ है, हमारी सागर की बिटिया है। तो अब सागर आगमन हुआ है, कैसा लग रहा है, सबसे पहले ये पूछना चाहते हैं।
5: बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, और बहुत अच्छी रैली निकाली है घर वालों ने, बहुत अच्छा लग रहा है।
4: और अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये बहुत दूर का सफर है, मतलब वहाँ तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल है, बहुत सारी समस्याएं होंगी, तो किस लेवल से यामिनी ने शुरू किया ये सफर?
5: मैंने स्कूल लेवल से शुरू किया था, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी तब से शुरू किया था। पुराने से घर में आए थे सर देखने के लिए, बच्चे ढूंढने के लिए
4: जी।
5: तो वहीं से उन्होंने बोला था कि आप आ जाओ ठाकुर देवालय मंदिर, वहाँ पे हम करवाते हैं प्रैक्टिस। तो फिर वहाँ पे गए, उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह करवाई, मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने शुरू किया वहाँ से। 2008 की बात है ये।
4: क्या बात है। और उससे पहले कभी आपकी फैमिली में कोई ये खेल खेलना नहीं था, इस फील्ड में नहीं था?
5: नहीं नहीं, कोई नहीं था।
4: यामिनी अब हम ये पूछना चाहते हैं कि देखो इसके लिए कुछ अलग ट्रेनिंग तो होती होगी कि हम इस लेवल तक खेल पाए, तो कुछ ट्रेनिंग वगैरह लिया क्या आपने?
5: हाँ, ये पहले मैंने बेसिक ट्रेनिंग मैंने सागर में करी, 3 साल बाद मैं भोपाल गई, फिर वहाँ पे करी नेशनल लेवल। सागर से तो मेरा नेशनल में मेडल आ चुका था एक,
4: अच्छा,
5: सब जूनियर में
4: जी।
5: फिर वहाँ जाके मेरा गोल्ड मेडल आया सब जूनियर में
4: जी।
5: भोपाल जाके वहाँ की ट्रेनिंग करी अलग कोचेस के साथ।
4: हाँ हाँ।
5: फिर मैं द्रोणाचार्य बॉडी, जीवन शर्मा सर हैं, एक्सीलेंस कोच थे पटियाला में, उनके पास मैंने गई थी मैं यहाँ से ट्रांसफर लेके। तो फिर अच्छा। वहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग हुई, एलीट लेवल की ट्रेनिंग हुई है वहाँ पे। फिर उसके बाद मैं सबसे बड़ा सेंटर अभी जो है इंडिया का JSW सेंटर बल्लारी में, फिर वहाँ पे मैं जीवन सर के साथ ही गई थी, वो वहाँ पे कोच अलॉट किए गए थे तो वो मुझे लेके गए थे वहाँ।
4: यामिनी जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि कई बार बच्चियों को इतना बाहर जाने के लिए परिवार के सपोर्ट की भी बहुत जरूरत होती है, तो आपके परिवार का कैसा सपोर्ट रहा आपको?
5: नहीं, उन्होंने कभी मना ही नहीं किया, मैंने बोला कि यहाँ जाना है, सर ने बोला यहाँ जाना, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। कभी कोई प्रॉब्लम, मतलब पापा ने नहीं रोका न मम्मी ने रोका, मेरी ग्रैंड मदर थी वो अब नहीं है, उन्होंने भी सपोर्ट किया कि हाँ लेके जाओ इसको।
4: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा अब ये बताओ कि नए लोग नई जगह, हमारे लिए तो एक सपना सा है ये सब सुनना सोचना, आप उसमें शामिल हो गए, कैसे लोग मिले, वहाँ पे क्या हो रहा था, कितने दिन का वहाँ का आपका रहा, कहाँ पे खाना पीना रहना, साथ में रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या करते, थोड़ा सा साझा करो ये बात।
5: कॉमनवेल्थ हम गए थे, ये हमारा 11 दिन का कॉमनवेल्थ था, हमारे इवेंट पहले हम वहाँ पे पहुँचे, उसके पहले हमने कई सारी कैंप लगाए इस कॉमनवेल्थ के कॉम्पिटिशन के लिए, वहाँ पे ट्रेनिंग करी हमने यूरोपियंस के साथ, क्योंकि यहाँ पे कॉमनवेल्थ में यूरोपियन की कंट्री भी आती है, जैसे अपनी ये इंग्लैंड हो गई, स्कॉटलैंड हो गया, ये यूरोप की अच्छी कंट्री है, जूडो का बहुत टफ कॉम्पिटिशन है यहाँ पे, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया,
4: काफी लंबे समय से वो लोग खेल रहे हैं।
5: हाँ, तो हम भी खेल रहे हैं, और हमने भी फिर हमारी टीम ने पेरिस में प्रैक्टिस करी, फिर बर्मिंघम में प्रैक्टिस करी मैंने थोड़े दिन, वहाँ का वेदर ये सब अडेप्ट करने के लिए।
4: अच्छा यामिनी, ये सब करते समय कहीं लग रहा था कि पदक ले आएगी यामिनी के, सच बताना?
5: हाँ
4: कि
5: जी, लग रहा था।
4: क्या बात। हाँ, है तो
5: पूरा कॉन्फिडेंस था, और जिस दिन फाइट थी, जब मैं फाइनल में पहुंची तो ये था कि बस गोल्ड ही है।
6: मेरे वेट में मैं शायद ऑलरेडी स्ट्रांग थी, तो फाइनल तक मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं हुई जीतने में, मैं 30-30 सेकेंड और 1 मिनट में सारी फाइटें जीत गई। फाइनल फाइट ही सबसे टफ थी, क्योंकि वो लड़की मतलब वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म किया है, मेडल्स है, और हम दोनों की बहुत टक्कर की फाइट गई थी, तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उससे कम थी या ज़्यादा, बस एक कुछ टैक्टिकल मिस्टेक हुई जिसकी वजह से मुझे पेनल्टी मिली, और संघर्ष है पर हर प्लेयर की यही कहानी होती है।
4: अरे भाई,
5: गोल्ड के लिए खेल रही थी मैं।
4: बिल्कुल बिल्कुल, देखो उस जज्बे से जब हम खेलते हैं तो निश्चित सफलता हमारे हाथ आती है। आप देख रही होंगी कि सागर वासियों को कैसा लग रहा है कि हमारी बिटिया ने मतलब कितना मान बढ़ा दिया है, आज महसूस कर रहे होंगे आप। जो बच्चे और खेलकूद के मैदान में या जूडो में ही जाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहती हो यामिनी?
5: हाँ, वो जाए, अगर उनकी रुचि है तो जरूर जाए, और एक दो बार तो जाना ही चाहिए, सबको ट्राई तो करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे फिजिकल और मेंटली हेल्थ दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है।
4: हाँ।
5: जूडो गेम, कोई और भी गेम, शायद हमें मेंटली इतना मजबूत कर देता है, शायद ही कोई और चीज करती होगी हमें हमारी जिंदगी में, जो अप्स एंड

0: एथलीट देखता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं इसलिए।
1: अब यामिनी हम ये पूछना चाहते हैं कि यामिनी का अगला सपना क्या है?
0: अभी मेरा अगला सपना है, सितंबर लास्ट वीक में हमारे एशियन गेम शुरू हुए हैं जापान में, तो वहाँ पे मैं सिलेक्ट हूँ। तो अब मैं, हमारे जूडो से चार लड़कियाँ सिलेक्ट है, तो हम चारों लड़कियाँ उस चीज के लिए प्रिपरेशन करेंगी और वहाँ पे जाके मेडल जीत के आने को।
1: तो बिल्कुल हम सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि यामिनी बहुत जल्द और एक पदक और उसके बाद अनेक पदक
2: हमारे देश के लिए जीत कर लाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अगले पायदान पर ये है माटी की महक।
3: माटी की महक।
1: आज ई कार्यक्रम में हमारे संगे हैं एक बुंदेली गायक। अपन पूछ रहे भैया का नाम तुम्हाओ?
4: हमारो नाम रवि नायक है।
1: आवाज तो तुम्हारी बहुत अच्छी कहाई। बुंदेली लोक गीतों में मनुका का गालित
4: सब सार का माई का आशीर्वाद है। बुंदेली हमें शुरू से ही पसंद है। गावे में जैसे भजन कीर्तन दादरा चौकड़िया गारी कछियाई लेद विक्रम छंद विधा टकोरा कहरवा राय ढोला जहाँ तक है बुंदेली हम सभी गाले थे।
1: तनक हमारे श्रोताओं के लाने कछु सुना दो।
4: एक गीत है दीदी और जो गीत हमें बहुत पसंद है और ई गीत को सुन के हम बहुत गर्व भी करते के बुंदेलखंड की माटी ने हमें जन्म दो है और लगातार हम ये गीत को गाउत भी हैं। अरे ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में सो जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। अरे जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। विवस धाम और छाम बास करें रघुवर हरदौल मैयर की माई जटा शंकर। हरदौल मैयर की माई जटा शंकर। और क्षीर सागर सी गहराई भीम कुंड में सो जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। अरे जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो भैया अब पूछ जा रहे कि कब से गाना शुरू कर दो है तो मानो कितनी उम्र रही हुई है तुम्हारी जब से गा रहे?
4: दीदी हमने गावो 10 वर्ष की उम्र से शुरू कर दो। तो बुंदेली माटी से जब हम हल्के हते जब ही से हमें बुंदेली माटी से प्रेम रहो और बुंदेली हम बिल्कुल छोटे से गाउते आए प्रेम रहो हमें ई माटी से ई बुंदेली भाषा से के ई बुंदेली भाषा और बुंदेली माटी के लाने हमें अपने जीवन में कछु करने हैं और हम अपनी उम्र में ई किलाने ई माटी के लाने बुंदेली भाषा के लाने कछु करके जे और ई में गावे में हमारी माता श्री कमला देवी नायक का बड़ा सहयोग रहा है, उनका प्रयास रहा है, उनके लाने सत सत नमन है।
1: अब जब भी बता दो के सिर्फ गात हो के कछु बजा भी लेते हो?
4: दीदी हम हारमोनियम भी बजा लेते हैं और हारमोनियम को ही बजा के गाते।
1: अब हमारे श्रोता कुछ और सुनना चाह रहे होंगे तो अब का सुना रहे आप?
4: हाँ दीदी एक गीत है जो हमारे जीवन से जुड़ो रहो आज भी जुड़ो है और हम उनके लाने हमेशा सुनत रहते। अरे राम जू धनी मोरे राम जू धनी राख रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जू धनी। अरे राख रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जू धनी। मैं मति भ्रम मूर्ख का जानो पाप कर्म सब ढोए। अरे माया मिली न राम अंत में दोई हाथ से खोए। अरे माया मिली न राम अंत में दोई हाथ से खोए। फोरो पापों की गगरिया मोरे राम जू धनी। अरे राखे रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जू धनी। ई जादू नगरी से बचवे जीखो राम बचावे। ओ कितनो होए सयानो लेकिन देख देख डर जावे। कितनो होए सयानो देखन देख देख डर जावे। जाहे काजर की पुतरिया मोरे राम जू धनी। अरे राखे रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जू धनी। बहुत बहुत धन्यवाद।
5: भैया आप ऐसे शौक में गात हो कि कहीं जाते भी हो कार्यक्रम?

0: क्रम करबे।
1: दीदी हमें शौक नहीं है, हमारा जुनून है बुंदेली गाना। हमने आपसे पहले ही बोला है ई माटी के लाने ई भाषा के लाने कछु करके जाने, और लगातार कार्यक्रम भी करते हैं, मर्यादित गाते हैं, बुंदेली गाते हैं और बुंदेली गाते रहेंगे। कोई भाषा को जितनो संरक्षण हुई है, जितनो ही को आगे बढ़ावे को काम रहे, वो अपने जीवन में करत रहे।
0: अच्छा जा और बता दो कि कोई ऐसा लोकगीत गायक हुई जो ना आपको पसंद हुई है। सो करने का है कि हम अपने श्रोताओं को और आपको सुनवा दे हैं उनका गाव भाव कोई लोकगीत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद है दीदी, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, और सागर आकाशवाणी परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जय बुंदेलखंड, जय बुंदेली। दीदी आप चंद्रभूषण पाठक जी का गाया हुआ खबर शारदा लइयो मोरी सुनवा दो।
0: हाँ तो लवैया सुना।

0: इस सप्ताह चर्चा में अब बारी है इस सेगमेंट की।
1: इस सप्ताह चर्चा में
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में देश के पहले वर्चुअल चिड़ियाघर का शुभारंभ किया। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी आम लोगों के लिए शुरू की गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, इंदौर हमेशा नई सोच और बेहतर काम के लिए पहचाना जाता है। शहर लगातार विकास और तकनीक के क्षेत्र में नए प्रयोग कर अपनी अलग पहचान बना रहा है।
2: इस अवसर पर बोलते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव,
3: इंदौर जो करता है वो सबसे अच्छा करता है। आज राज्य में इंदौर के अंदर हमारे अपने जू के पास डिजिटल जू चालू हुआ, ये अद्भुत एक अनुभव भी रहेगा। जो विदेश में कई और जगह होता था उससे अच्छा हमारे यहाँ 14D अंदर ऐसा लगता है कि जैसे हर एक स्थान पर वो अद्भुत अनुभव है। मैं बधाई देना चाहूँगा, वर्तमान के युग में जब नया डिजिटल जमाना चल रहा है, ऐसे में डिजिटल युग के माध्यम से अतीत के वो डायनासोर के जमाने से लगा करके एक तरह से वो ट्रेन का भी जो अनुभव है वो अद्भुत है। हमारे लिए बैठे बैठे पानी समुद्र का कब आ जाता पता ही नहीं चलता, और ऊपर से ट्रेन से जैसे नीचे गोते लगाते हैं कि लगता है कि भगवान बचाए तो ठीक है। मेरी अपनी ओर से ये अच्छा अनुभव कराने की बजाय
0: भारत 17 साल के अंतराल के बाद दूसरी बार BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कर रहा है। ये प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट 17 से 23 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। और अब साहिबा को दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। स्वर व निर्माण साहिबा नासिर का
1: गागर में सागर।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो पत्रिका गागर में सागर। संकलन व निर्माण था सेहबा नासिर का और संयोजन और प्रस्तुति थी शुभ्रता यादव की।

आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के ठीक 7:50 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है गीतों और गजलों का कार्यक्रम संगीत सरिता। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाई चंद गजलें। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं ये गजल।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों की छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 24 सदस्य थे सवार। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तन्वी और कोमल को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है।
1: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा

0: की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुँचाया जाएगा। आनंद और प्रिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद DTH, HIST और IPTV सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरेंट कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार की सर्वोपरि कर्तव्य है।
3: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
1: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में AI को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित हेल्थ केयर समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि AI दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति

0: पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं ठप हैं। इस बीच बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। BYC ने बताया कि शुक्रवार को मस्तुंग के खड़कुचा इलाके में एक ड्रोन हमले में 4 मजदूर मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इनमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
1: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज MV ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायुसेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय वायुसेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्लोवाकिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 पदक और जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश, मखदूम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से खेला जाएगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने 6ठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में NC सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रही। नाइजीरिया के चुकवु एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों के शॉटपुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिनभर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक की खबर सभी अखबारों में

0: प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भाजपा जेनजी से जुड़ेगी, 14 से 25 वर्ष के युवाओं से जुड़ने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। जनसत्ता का शीर्षक है, राष्ट्रगीत के सम्मान से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं। भाजपा ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय की आलोचना की। अमर उजाला के अनुसार, कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास, विकसित भारत का उद्घोष भी वंदे मातरम। दैनिक जागरण ने वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वंदे मातरम के दो ही पद गाने की कांग्रेस की जिद से ये साफ है कि सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय पर उसके पूर्ण गायन पर आपत्ति जताई थी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, गोरखा मुद्दे पर समझौते की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति, चिकन नेक को मिलेगी अवैध सुरक्षा। गृहमंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई बैठक का उद्देश्य वर्तमान समस्याओं का समाधान करना। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर का बयान देते हुए लिखा है, पाक यूनिक आतंक फैलाता है। बोले, चीन के साथ अच्छे रिश्ते दोनों के हित में। अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा, भारत यूएस संबंध ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर आधारित। राजस्थान पत्रिका ने नया युद्ध शीर्षक से दिया है, ईरान की घेरेबंदी के बीच अमरीका में साइबर हमले, ड्रोन मिसाइलें शांत, अब यूएस और ईरान के बीच साइलेंट वॉर। अमर उजाला के अनुसार, मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में असंतोष, रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई, पूर्व सैनिकों के संगठनों में भी बढ़ी नाराजगी, सुरक्षा बलों पर हमले को बताया कारण। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 1 सितंबर से ई बोर्डिंग पास दिखाकर हो सकेगी विदेश यात्रा, एयरपोर्ट पर फिजिकल बोर्डिंग पास और स्टैंपिंग व्यवस्था खत्म होगी। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, चैटबॉट नहीं, बुजुर्ग सबसे बड़े लाइफ कोच, संकट में सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा। 1500 अमरीकी बुजुर्गों की युवाओं को सीख, जो हाथ में है उसी पर फोकस करें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार, कांगड़ा की अंशिका और प्रवीण राणा बने प्रेरणा स्रोत, एक साथ की LLB, बेटी टॉपर और पिता तीसरे स्थान पर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार, 3 साल बाद विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की, वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, तन्वी और कोमल को कांस्य। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम के शुरुआत में आइए सुनते हैं देवकी नंदन सकवार से ये रैया।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। और लीजिए आप सुनिए पुरुषोत्तम लोधी से ये लोकगीत।

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागर।
2: वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य।
3: इस प्रोग्राम का ये अंक लेकर हम हाजिर हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं वात्सल्य स्कूल के ही पढ़े हुए एक छात्र। आइए जानते हैं उनसे उनका नाम।
4: मेरा नाम है अनुज भट्ट।
3: अनुज, ये बताइए कि वो कौन सा वर्ष रहा होगा जब आप यहाँ आए और आप किस क्लास में यहाँ पढ़े?
4: मैं नर्सरी से पढ़ा हूँ, 1992 से याद है। उसके बाद मैं 2008 में पास आउट हुआ, नर्सरी से लेकर 12th तक यही।
3: तो अब हम आपसे एक सवाल ये जानना चाहते हैं कि जब छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं तो देखिए पढ़ाई का बच्चों को लगता है बोझ, चाहे पढ़ाई कितनी ही मनोरंजक हो, एक ऐसा बना रहता है दिमाग, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कुछ कलात्मक, कुछ क्रिएटिव चीजें बच्चों को सिखाई जाए। उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि जब आप आए तो आपको यहाँ क्या माहौल मिला?
4: वात्सल्य का जो USP रहा है वो CCA बहुत ज्यादा रहा है। हमारे यहाँ पर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन है, फिर एलोक्यूशन है, एक्सटेम्पोर है, ये शब्द भी हमने यही सीखे, वो सब चीजें होने के कारण डांस कॉम्पिटिशन है, वेरियस डांस कॉम्पिटिशन होते थे, फिर 15 अगस्त का या टीचर्स डे का या बाकी जो एनुअल फंक्शन स्पोर्ट्स डे होते हैं, इनसे काफी चीजें सीखने इसलिए भी मिलती हैं क्योंकि आर्ट के अलावा ये आपको मैनेजमेंट भी सिखाते हैं। क्योंकि जब आप टीचर्स डे की तैयारी करते हैं तो वो पूरे सिर्फ बच्चे ही करते हैं, उसमें टीचर्स इन्वॉल्व नहीं होते, वो मैनेजमेंट भी बच्चों का होता है, वो सीनियर बच्चे और जूनियर बच्चों के बीच में जो तालमेल होता है, उसके अलावा

0: पूरी प्लानिंग व्यवस्था, तो वो जो चीजें हैं वो सब सीखने ऐसे ही मिलती है। सेम चीज होती है जब स्पोर्ट्स डे एनुअल फंक्शन होता है।
1: बिल्कुल। तो अनुज, अगला सवाल हमारा ये है कि अनुज ने वात्सल्य स्कूल में आकर वात्सल्य के लिए क्या किया?
0: जब पास आउट होने वाला था उस साल मैंने जो वात्सल्य का स्कूल सॉन्ग है,
1: अच्छा,
0: वो कंपोज किया था।
1: क्या बात है। और वो शायद अभी भी है?
0: वो अभी भी है।
1: थोड़ा सा भाई गुनगुनाओ ना, आपके स्कूल का सॉन्ग है
0: वो। मेरे दोस्त हैं पराग सुरेलिया
1: जी,
0: उनके साथ मिलके किया था।

0: कारवां। क्या जोशीला, मतलब एक 11th क्लास का बच्चा
1: जी
0: ये सब कर सकता है? हाँ, ये तो मतलब
1: देखिए सिर्फ कॉन्फिडेंस का काम था जो स्कूल ने बूस्ट किया था
0: जी,
1: क्योंकि उस समय संगीत तो उतना नहीं आता था, आज भी उतना नहीं आता संगीत, तो खैर जीवन में कोई पूरा कंप्लीट सीख नहीं सकता कोई भी कला हो।
0: तो अनुज आप कर क्या रहे हैं, किस क्षेत्र में?
1: मैं म्यूजिक कंपोजर हूँ।
0: क्या बात है, मतलब वो सॉन्ग से लेके अनुज पहुंचे मुंबई तक भी, कि आज जो मुकाम आपने हासिल किया है उसमें वात्सल्य की कितनी भूमिका लगती है आपको?
1: लगभग पूरी ही भूमिका मान लीजिए, मतलब और भी लोगों का योगदान है उसको अपन नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मतलब जो पुराने टीचर्स हैं, इन लोगों ने जो चीजें शेप करी, चाहे वो भाषा हो या फिर संगीत हो या फिर ओवरऑल कल्चरल एक्टिविटीज के बारे में जो चीजें सिखाई
0: जी।
1: और जाहिर तौर पर अलका मैम का मेन विजन होता था।
0: तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि जब पूरी बिल्डिंग हम वात्सल्य की देखते हैं आज भी, तो आपको क्या लगता है कि वो बच्चों की ग्रूमिंग के हिसाब से आपको परफेक्ट लगता है अपना वात्सल्य?
1: बिल्कुल, देखिए अगर आप वात्सल्य के कैंपस को देखें, हमारे समय से भी देखें, तो अभी तो फिर जो हम चीजें देख रहे हैं आज, उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है, बहुत कम हल्का बदलाव है, क्योंकि उस समय ही वात्सल्य का जो कैंपस था वो इतना बड़ा हो गया था जब पास आउट हो रहे थे। जब आप बाहर जाते हैं, बाहर के स्कूल्स देखते हैं, चाहे वो पंचगनी के स्कूल्स हो, चाहे वो देहरादून में हो, या और भी जो बड़े स्कूल्स हैं, नामी स्कूल्स हैं 100 साल 200 साल पुराने, उनके कैंपसेस जो होते हैं वो इतने ही बड़े होते हैं, इतनी ही वैरायटी होती है उनके। हमारे यहाँ पहाड़ भी है, हमारे यहाँ पे प्लेन्स भी हैं, हमारे यहाँ पर ग्रीनरी भी है, बड़े पेड़ भी हैं, छोटे पेड़ भी हैं, गार्डन्स भी हैं।
0: आज आपने प्रोग्राम में इतना टाइम हमें दिया और आप अपने ही स्कूल वात्सल्य में बैठ के हमारे साथ इतनी देर तक बातचीत में भागीदार बने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।
2: वात्सल्य, बच्चों का सुनहरा भविष्य।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागर।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वात्सल्य, बच्चों का सुनहरा भविष्य। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है बच्चों का मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा।

बाल सभा सुनने वाले सभी श्रोताओं, खासकर हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को हमारा जय हिंद। बच्चों, आज कार्यक्रम की शुरुआत इन बहुत ही प्यारी सी पंक्तियों के साथ कर लेते हैं। काले गहरे बदरा वाला ये जादूगर कौन, कहां से ये नभ में आता, रिमझिम रिमझिम फुहारे बरसाने वाला ये जादूगर कौन, छू मंतर कर सूरज को उलझाने वाला ये जादूगर कौन, रंग बिरंगे छाता ताने सब बच्चों को भिगोने वाला ये जादूगर कौन, जब जब उसके दिल में आता झोले से बूंदे टपकाने वाला ये जादूगर कौन, काले गहरे बदरा वाला ये जादूगर कौन। तो बच्चों, इन्हें रिमझिम

और जादू से भरी पंक्तियों के साथ हम आ गए हैं एक बार फिर आप ही की तरह चहकती फुदकती उछलती कूदती बारिश के बूंदों की तरह छनकती मस्ती भरी बच्चों की सभा बाल सभा लेकर। और आज आप साथ हैं अपनी रानी दीदी के, स्वीकार है दीदी का ढेर सारा प्यार और सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और करते हैं और करते हैं बाल धमाल। हाँ बच्चों, कैसे हैं आप सब? बता दूं, बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं आप सभी। और दीदी ये बात भली भांति जानती है कि आपकी खुशियों का क्या राज है। पहली बात तो आपको स्कूल में बड़ा ही अच्छा लग रहा है इन दिनों, क्योंकि आपकी पढ़ाई ने रफ्तार पकड़ ली है। आपका जो नया सिलेबस जो आपको अब समझ में आने लगा है, साथियों से मिलना भी खूब भा रहा है और अब स्कूल के माहौल में आप रच बस गए हैं। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात जाने बच्चों, तो इन टपकती बूंदों के साथ खूब पर्व त्योहार भी हंसी खुशी के साथ मनाए जा रहे हैं। छमछम करती बूंदों में कभी किसी को भीगने का मन करता है तो किसी को खिड़की से इन बूंदों को देखना अच्छा लगता है। चाहे कैसे भी हो बच्चों, ये मौसम तभी अच्छा लगता है जब हम सब स्वस्थ रहकर इसका आनंद ले पाए। तो कुछ सावधानियों को अपनाना होगा, स्वच्छता का, सफाई का, खान पान का, कहीं बाहर आने जाने का, इन सब बातों का अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा। ज्यादा देर गीले ना रहें, सूखे कपड़े पहने और बाहर का खुला हुआ खाद्य पदार्थ या बासा भोजन और डिब्बा बंद वाले पदार्थों को नहीं खाना है, ठीक है ना? आपकी माँ घर में जो भी ताजा और पौष्टिक खाना बनाए उसे ही शौक से खाना है। तो इस तरह इन छोटी छोटी बातों को मानकर आप इन दिनों को हंसी खुशी के साथ बिता सकते हैं। और देखिए देखिए, दीदी की नजर आपकी तैयारियों पर भी है। कैसे, आपने घर में छोटी छोटी और सुंदर राखियां बनानी शुरू कर दी है ना, और अपनी माँ से अपनी पसंद की डिश बनाने की भी आप बात कर रहे हैं है ना, कर रहे हैं ना? सब बातें अच्छी हैं बच्चों, क्योंकि अब भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन पर्व आने को है। तो इस तरह सब बच्चों के मन में खूब उमंग और उत्साह बना हुआ है। और क्यों ना हो बच्चों, ये त्योहार ही कुछ ऐसा होता है। रक्षाबंधन मतलब जहां बहनें भाई के प्रति सम्मान और प्यार की भावना रखती हैं, वहीं भाई भी अपनी बहन को ता उम्र रक्षा, सम्मान और प्यार का वचन देते हैं। तो इस तरह प्यार और वचन की मजबूत डोर भाई बहन को जोड़े रखती है। ये बात हमारे बड़े बच्चों ने तो समझ ली है, लेकिन हमारे छोटे छोटे बाल गोपालों को तो इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें तो बस मीठी सी नोकझोंक करना है, राखी बांधना है रक्षाबंधन में, और जो भी तोहफे मिलना है वो ले लेना है, मिठाई पर लड़ना झगड़ना है, रूठना और मनाना है। इस तरह से घर में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हर त्योहार को हर उम्र के बच्चे अपने हिसाब से समझ पाते हैं और इस तरह खुशियों के पल सहेजे जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह हम सभी को रक्षाबंधन पर्व की इन रस्मों का इंतजार है। तो तैयारियां करते रहिए और देखिए हमारी धरा, हमारी प्रकृति खुश है इन दिनों, क्योंकि सावन की फुहारें पड़ रही हैं, चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। तो हम भी प्रकृति की रक्षा का वचन ले सकते हैं ना बच्चों, इस पर्व पर खूब सारे पेड़ लगाएंगे और उन्हें सहेजेंगे। और हम कह सकते हैं कि हमारी सारी खुशियों का आधार हमारी यही पृथ्वी, ये धरा ही तो है। यदि हम इसका ख्याल रखेंगे तो ये पेड़, ये फूल, ये पत्तियां हम सभी की रक्षा करते रहेंगे और खूब खूब दुआएं देते रहेंगे इस गीत की तरह। आइए सुन लेते हैं ये बहुत ही मधुर सा गीत।

0: हाँ बच्चों, बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, भाई बहन के प्यार से सजा ये गीत हमने सुना था फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से। और हम सभी बच्चों को आगामी रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत से आगामी अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि इस पर्व की तैयारियां अच्छे से कीजिएगा और ये पर्व अच्छे से हंसी खुशी के साथ मनाइएगा। और आपकी हंसी खुशी का राज हम जानते हैं कि आपको अपने साथियों से मिलना बहुत ही अच्छा लगता है, तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं, बाल मंच के तहत मिलते हैं नन्हे मेहमान से।
1: आ ई ई उ उ ओ लेकर आए बच्चों का शो
2: बाल मंच।
3: बाल मित्रों, आ गया है नन्हे मेहमान का क्रम और हमारे नन्हे से मेहमान हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है?
4: मेरा नाम देवांश ठाकुर है।
3: देवांश, आप किस क्लास में पढ़ते हैं?
4: हम 7th में हैं।
3: आपको आज हमारे स्टूडियो में आकर कैसा लग रहा है?
4: बहुत अच्छा।
3: और हमारे सारे नन्हे मुन्ने बच्चे आज आपको सुन रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ लाए हैं आप? क्या सुनाएंगे उनको?
4: मैं कविता सुनाने वाला हूँ।
3: बिल्कुल, सुनाइए कविता।
4: जय जय प्यारा जग से न्यारा, सोबे सारा देश हमारा, जगत मुकुट जगदीश दुलारा, जय सौभाग्य सुदेश हमारा, जय जय प्यारा भारत देश, प्यारा देश जय देशेस, अजय अशेष सदै विशेष, जहाँ न संभव अधकालेश, संभव केवल पुण्य प्रवेश, जय जय प्यारा भारत देश।

0: बहुत अच्छी कविता आपने हमको सुनाई है और बहुत अच्छा लगा। इस कविता को सुनकर एक देश प्रेम की भावना सभी के दिलों में गूंज उठती है ना?
1: हाँ।
0: आपको अपने देश से कितना प्यार है?
1: बहुत ही सारा।
0: अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय फूल है कौन सा है?
1: कमल।
0: और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है?
1: मोर।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत एकता में अनेकता है, विविधता है।
1: हाँ, पता है।
0: है ना? हमारे देश में समुद्र भी है, रेगिस्तान भी है, ऊंचे पहाड़ भी हैं, सब कुछ है, बहुत सुंदर है हमारा देश। आप कहीं घूमने गए हैं?
1: हाँ।
0: कहाँ कहाँ घूमा है आपने?
1: हम लोग मथुरा वृंदावन घूमने गए थे।
0: अच्छा, तो आपको घूमने गए थे जब आपको, तो कैसा लगा था?
1: बहुत अच्छा।
0: बहुत सारे लोग मिले होंगे?
1: हाँ।
0: और वहाँ पे खेल खेल में बहुत सारे दोस्त भी बने होंगे?
1: हाँ।
0: बहुत सारे नए नए दोस्त बनते हैं, तो कैसा लगता है?
1: बहुत ही अच्छा।
0: बहुत ही अच्छा लगता है ना? तो बहुत सारी बातें भी होती होंगी।
1: हाँ।
0: और हमें लग रहा है कि आप एक कविता और सुनाना चाहते हैं जिसमें लिखा है बातें बातें, है ना?
1: हाँ।
0: क्या है कविता का नाम, आप ही पढ़ के बता दीजिए।
1: उफ ये बातें।
0: उफ ये बातें, तो सुना दीजिए उफ ये बातें कविता।
1: बात बात की बात चली, बात बात में बात बड़ी, बात बात में कह दी बात, बात बात में चुभ गई बात, बात रोष में कही गई यही बात विस्तार बनी, बात कही जो मीठी सी गहरी दिल में उतर गई, बात हंसी में घुली हुई दिल से दिल की बात बनी।
0: क्या बात है, इस कविता का मतलब समझ में आता है आपको? क्या मतलब है इस कविता का?
1: हमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए।
0: हाँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और मीठी बोली बोलनी चाहिए, सबसे प्रेम से बात करनी चाहिए। हाँ। है ना? हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे तो बहुत समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं।
1: हाँ।
0: अच्छा, आज हमारे जो छोटे बच्चे कार्यक्रम सुन रहे हैं उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: हाँ।
0: बताइए क्या कहना चाहेंगे?
1: कि अपन को कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अपने देश से प्यार करना चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके देवांश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: आओ बच्चों।
3: तो अपने साथी से मिलके आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और आपके मन में भी गुदगुदी हो रही है कि हम भी अपने साथियों से ढेर सारी बातें कर पाएं, कहानी सुना पाएं, कविता सुना पाएं। तो आप भी हमारे स्टूडियो आ सकते हैं बुधवार शाम 4 बजे कार्यक्रम बाल सभा में, बाल मंच में नन्हे मेहमान के तहत बच्चों की रिकॉर्डिंग होती है। और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, झांकी हिंदुस्तान की तहत।
2: जो तुम्हें दिखाएं
4: झांकी हिंदुस्तान की।
3: बच्चों, आज झांकी हिंदुस्तान की के अंतर्गत जानेंगे वंदे मातरम की कहानी। हाँ बच्चों, वंदे मातरम का अर्थ होता है माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। बच्चों, जैसे जन गण मन हमारा नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गान है, उसी तरह वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रीय गीत है। ये गीत 1882 में आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था, जिसे बंगाल के बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा था। इस गीत को लिखे पूरे 150 साल हो गए हैं। 24 जनवरी सन 1950 को वंदे मातरम गीत को राष्ट्रीय गीत की मान्यता दी गई थी। उसी समय बच्चों भारतीय संविधान सभा में ये तय हुआ कि जन गण मन राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत होगा। स्वतंत्रता आंदोलन के समय में ये देशभक्ति का प्रतीक था बच्चों, इसलिए इस गीत को राष्ट्रीय गीत का सम्मान मिला। आपको बता दें कि वंदे मातरम गीत के सम्मान में सावधान की मुद्रा में खड़े होने का नियम है और पूरा गीत गाने में करीब 3 मिनट 10 सेकंड का समय लगता है। सन 1896 में हुए एक अधिवेशन में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसे सार्वजनिक रूप से गाया था। तो बच्चों, आज झांकी हिंदुस्तान में हमने वंदे मातरम गीत की यात्रा के बारे में जाना। और हाँ हाँ, कहीं मत जाइएगा, कार्यक्रम बाल सभा की यात्रा अभी जारी है, क्योंकि देखिए बाबा जी आ गए हैं और यात्रा जारी रखने के लिए उन्होंने अपनी कहानियों का पिटारा खोलना शुरू कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आज

0: बहुत ही कम जमीन थी, उसकी फसल को बेचकर उसे बिल्कुल थोड़े रुपये मिलते थे। उन रुपयों से वे लोग ठीक ठाक खाना भी नहीं खा पाते थे। वो राजा के पास अपनी समस्या लेकर गया। राजा दयालु थे, उन्होंने किसान को अपनी जमीन में से कुछ जमीन दे दी खेती करने के लिए। उन्होंने कहा, ये जमीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एक दिन वो खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने वहां खोद कर देखा तो उसे सोने की एक ओखली मिली। किसान ईमानदार था, उसने अपनी बेटी से कहा, हमें ये ओखली राजा के खेत में मिली है, जिसकी जमीन उसी की ये ओखली भी है, इसलिए हमें इसे राजा को लौटा देना चाहिए। किसान की बेटी बोली,
1: नहीं नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ ओखली मिली है, यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसल भी मांगी तो आप क्या करेंगे? आप इस ओखली को अपने ही पास रखिए।
0: लेकिन किसान को ये बात ठीक नहीं लगी। वो बोला, जो चीज हमें मिली ही नहीं, वो मांगने का राजा को कोई अधिकार नहीं है। वो राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा, लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि किसान की बेटी ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालचवश मूसल अपने पास रख ली है। किसान बेचारा सोने की मूसल कहां से लाकर देता? परिणाम ये हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में ना उसे ढंग से खाना मिलता था, ना पानी मिलता था। किसान को ऐसी गलती की सजा दी गई जो उसने की ही नहीं थी। वो खाए पिए बिना निढाल हो गया। लेटे लेटे वो रोता रहता। बेटी की बात मानी होती, काश मैंने अपनी बेटी की बात मानी होती। एक दिन राजा ने उसे ऐसे कहते हुए सुन लिया। उन्होंने किसान से पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसान को तुरंत छोड़ दिया गया। किसान की बेटी को राजा ने दरबार में बुलाया। उससे बातें करने के बाद राजा को पता चल गया कि वो बहुत बुद्धिमान है। किसान की बेटी को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया गया। उन्हें रहने के लिए घर और सभी सुख सुविधाएं दी गईं। किसान और उसकी बेटी सदा सुख से रहे। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की हुई। तो बच्चों, बाबा फिर आएंगे लेके अपने पिटारे में एक और कहानी। तब तक बाबा ये चला।
2: हाँ तो बच्चों, बाबा जी चले गए हैं और बहुत ही अच्छी सीख दे गए हैं कि अपने पास सच्चाई और अच्छाई हमेशा रखिएगा तो आपकी जीत निश्चित है। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं एक और क्रम के साथ।
0: तो बच्चों, ये है
2: बच्चों, हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं ना, तो हमारे मन में कई तरह के सवाल आते हैं, है ना? आते हैं ना कि ये तारे, ये चंद्रमा हमसे कितना दूर है, वहाँ कैसा लगता होगा, वहाँ की जमीन कैसी होगी, क्या वहाँ इंसान कभी पहुँच सकता है। तरह तरह के सवाल उठते हैं हमारे मन में। तो बच्चों, ऐसे ही सवालों के जवाब खोजने के लिए हमारे वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष का अध्ययन करते रहते हैं। और इस तरह भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में पूरी दुनिया में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। तो इस तरह हर वर्ष 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। और देखिए, आज 23 अगस्त ही तो है, इसीलिए तो दीदी आपके लिए ये जानकारी लेकर आई है। अब फिर सोचने वाली बात है बच्चों की, आखिर 23 अगस्त

अगस्त ही क्यों, वो इसलिए बच्चों क्योंकि ये दिन हमारे लिए बहुत खास है। 23 अगस्त सन 2023 को भारत के चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसके बाद प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक अध्ययन किया था। तो बच्चों, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस केवल चंद्रयान की सफलता को याद करने का दिन नहीं है, ये दिन बच्चों युवाओं को विज्ञान, तकनीक और नवाचार की ओर प्रेरित करने का भी दिन है। इस दिवस के माध्यम से विद्यार्थियों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि और वैज्ञानिक सोच विकसित करने पर जोर देता है। तो इस तरह बच्चों, कौन जाने आप रेडियो सुन रहे कोई बच्चा कल वैज्ञानिक बने, अंतरिक्ष में जाए और भारत के नए अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बने। तो आज रेडियो की पाठशाला यहीं तक, समय हो गया है बाल सभा संपन्न करने का। तो आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने से बड़ों का सम्मान करते रहें। दीजिए अपनी रानी दीदी को अनुमति। जय हिंद।

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 9 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बातें जंगल से।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व।
2: बातें जंगल से।
1: आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे चीतल जी से। आइए चीतल जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। अपना परिचय दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए।
3: नमस्कार साथियों, मैं चीतल हूँ, जिसे आप चित्तेदार हिरण भी कहते हैं। मेरी हल्की भूरी खाल पर सफेद रंग की सुंदर चित्तियाँ बनी होती हैं, जो मुझे जंगल में धूप और छाया के बीच छिपने में मदद करती हैं। नर चीतल के सिर पर सुंदर लंबी और शाखाओं वाले सिंह होते हैं, जो हर साल गिरते हैं, उनकी जगह पर नए सिंह उगाते हैं। मैं एक शाकाहारी शांत स्वभाव बहुत ही सतर्क जानवर हूँ। मैं अकेले रहने की बजाय अपने झुंड में रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि झुंड में रहने से हम एक दूसरे की खतरे से बचाने में मदद करते हैं। मेरी बड़ी बड़ी आँखें, तेज सुनने की क्षमता, सूंघने की शक्ति मुझे दूर से ही खतरे का एहसास करा देती है। मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, एक ही छलांग में कई मीटर की दूरी तय कर सकता हूँ। मुझे खुले जंगल, घास के मैदान, पानी के आसपास के क्षेत्र बहुत पसंद हैं। मैं बहुत घने और अंधेरे जंगल में कम ही रहता हूँ, क्योंकि खुले क्षेत्र में मुझे अपने शिकारियों पर नजर रखना आसान होता है। साथियों, जब कभी आप जंगल जाएं, तो ध्यान दीजिएगा, मैं हमेशा अपने आसपास की हर हलचल पर नजर रखता हूँ। मेरी फुर्ती, सतर्कता और तेज दौड़ने की क्षमता ही मुझे जंगल में सुरक्षित रखती है।

0: जी हाँ चीतल जी, अब जानना ये चाहते हैं कि ये जो प्रकृति जिसमें आप रहते हैं, इस प्रकृति में आपकी भूमिका क्या है?
1: साथियों, प्रकृति में मेरी भूमिका भोजन चक्की एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं घास, पौधे,

गिरे हुए फल फूल और पेड़ों की कमल पत्तियां खाता हूँ। जब मैं चढ़ता हूँ तो घास और झाड़ियों की प्राकृतिक छटाई होती है, जिससे नए पौधों को उगने का अवसर मिलता है। कई पौधों के बीज मेरे मल के माध्यम से दूर दूर तक फैल जाते हैं, जिससे जंगल में नई वनस्पतियां उगती हैं। मैं बाघ तेंदुआ और जंगली कुत्ते जैसे बड़े शिकारियों का प्रमुख भोजन भी हूँ। यदि हम जैसे शाकाहारी जीव ना हो तो इन शिकारियों के लिए भोजन की कमी हो जाएगी, जिससे पूरे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसके अलावा बंदरों से मेरी दोस्ती बहुत प्रसिद्ध है। बंदर पेड़ पर बैठकर फल और पत्तियां गिराते हैं, जिन्हें मैं खा लेता हूँ। बदले में जब बंदर ऊंचाई से किसी शिकारी को देखते हैं तो तेज आवाज करते हैं। इस प्रकार हम दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और जंगल में सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

0: तो अब ये और बताइए शीतल जी कि आप जंगल में या प्रकृति में कहाँ रहना पसंद करते हैं?
1: मुझे ऐसे खुले जंगल और घास के मैदान पसंद हैं, जहाँ आसपास साफ पीने को पानी, चरने को घास तथा छिपने को झाड़ियाँ हो। नदी, तालाब और छोटे जल स्रोतों के आसपास की हरियाली मेरे लिए सबसे अच्छी जगह होती है। मुझे घने जंगल और अंधेरे वाले जंगल उतने पसंद नहीं आते, क्योंकि वहाँ दूर तक देख पाना मुश्किल होता है और शिकारियों का भी अधिक होता है। खुले जंगल में मैं अपने झुंड के साथ सुरक्षित महसूस करता हूँ। साथियों, जिस प्रकार आपको खुली हवा और मैदान में खेलना अच्छा लगता है, वैसे ही मुझे जंगलों में चढ़ना और अपने साथियों के साथ घूमना अच्छा लगता है।

0: तो ये बताइए कि ये जंगल में या प्रकृति में आज आपके सामने सबसे बड़े खतरे क्या हैं?
1: आज हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा हमारे प्राकृतिक घर यानी जंगल का लगातार छोटा होना और उनका अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाना है। जब जंगल के बीच सड़कें, रेल पटरियां और नई बस्तियां बनती हैं, तो हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कठिन हो जाता है। सड़क पार करते समय हमारे कई साथी तेज वाहनों की चपेट में आकर घायल हो जाते हैं। दूसरा बड़ा खतरा अवैध शिकार और गांव के आसपास घूमने वाले आवारा कुत्ते हैं। कई बार कुत्तों के झुंड हम पर हमला कर देते हैं, विशेषकर छोटे बच्चे और कमजोर चेतलों पर। इसके अलावा जंगल में आग लग जाना, प्राकृतिक जल स्रोत का सूखना तथा जलवायु परिवर्तन भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है।

0: अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर चीतल प्रकृति से समाप्त हो जाएं तो असर क्या पड़ेगा?
1: यदि हम चीतल जंगल से गायब हो जाएं तो बड़े शिकारी जैसे बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ते, इनके लिए भोजनों की कमी हो जाएगी। इनको भोजन एवं पानी की तलाश में गांव एवं मानव बस्तियों की ओर जाना पड़ेगा, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ सकता है। दूसरी ओर जंगल की घास और झाड़ियों का प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ जाएगा। कई पौधों के बीजों का फैलाव कम हो जाएगा। पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा। प्रकृति में हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है। चीतल के बिना जंगल की खाद्य श्रृंखला कमजोर हो जाएगी। इसलिए हमारा संरक्षण यानी कि एक हिरण का संरक्षण नहीं है, बल्कि पूरे जंगल का, उसके शिकारियों का और प्रकृति का संतुलन करना है।

0: अरे शीतल जी, आप तो बहुत तेज गति से दौड़ रहे हैं, जरा ठहरिए, कोई संदेश तो देते जाइए।
1: मेरा संदेश साफ है कि जब कभी भी आप जंगल अभयारण्य या मेरे टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व घूमने आए, तब शांति बनाए रखें, वन्य जीवों से सुरक्षित दूरी रखें, हमें प्लास्टिक चिप्स के पैकेट तथा घर से बना हुआ खाना खाने को ना दें, इससे हमारी ताकतें बिगड़ सकती हैं और हम बीमार हो सकते हैं। इसके अलावा जब कभी आप जंगल से गुजरें तो अपने गाड़ियों की आवाज धीमी रखें, जिससे हम दुर्घटना का शिकार ना हो। जंगल, जल स्रोतों और घास के मैदानों की रक्षा करें, क्योंकि यही हमारा घर है। साथियों, आप अपने जीवन में सहयोग, सतर्कता और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना विकसित करें। जैसे मैं और बंदर एक दूसरे की मदद करते हैं, वैसे ही हमें मिलकर प्रकृति और जीवों की रक्षा करनी चाहिए। याद रखिए, यदि जंगल सुरक्षित रहेंगे तभी हम जैसे वन्य जीव सुरक्षित रहेंगे।

0: मंगल की भूमिका में आज हमारे साथ रहे
1: मैं दिनेश पाठक वन रक्षक बिरंग नाम दुर्गावती टाइगर रिजर्व से।
0: और अब साहिबा को अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम से। बातें
2: जंगल से।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व।
3: अभी आप सुन रहे थे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम बातें जंगल से। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 9:10 हुए हैं। थोड़ी ही देर में विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे।

मुबारका फिल्म का गीत सुनिए मीका सिंह और प्रकृति कक्कर की आवाजों में। इसे लिखा है कुमार ने, गौरव रोशनी का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं वार। इस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाजें हैं। कुमार ने इसे लिखा है, विशाल शेखर का संगीत।

लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सूर्यवंशी फिल्म का गीत। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में तनिष्क बागची आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और तनिष्क बागची और वीजू शाह का संगीत।

प्रशांत कपूर की आवाज में तो ये था हमारा आज का खास संगीत सफर, जहां अलग अलग धुनों या फिर एक ही धुनों वाले गीत आपको सुनवाए गए, और कभी धुनें अलग थीं, कभी शब्द अलग थे। इस तरह के गीतों का ये सफ़र था। फिर होगी मुलाकात फिर किसी कार्यक्रम में। फिलहाल चित्रलोक कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ,

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
3: आज के फनकार।

जी हाँ दोस्तों, कमसीन तो वो थी ही और है भी। इसी मारूफ कमसीनियत की बदौलत उन्हें कई फिल्मों का ऑफर मिला। सारा बानो की माता जी उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री थी नसीम बानो। उनके पिता प्रोड्यूसर थे एहसान उल हक साहब। उनकी दादी भी नामचीन थी छमियाबाई, जो कि शमशाद बेगम ऑफ दिल्ली के नाम से मशहूर थी। उत्तर प्रदेश के हसनपुर से ये परिवार था। सायरा बानू को अदाकारी जैसे विरासत में ही मिली थी। पहली ही फिल्म जंगली में उन्हें काफी सराहना मिली और फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला।

फिल्म जंगली के कहानीकार और संवाद लेखक थे मशहूर उर्दू राइटर आगा जानी कश्मीरी। लंदन से तालीम याफ्ता सायरा बानू को उर्दू की डायलॉग डिलीवरी की सलाहियत आगा जानी कश्मीरी ने ही सिखाई, वो उनके लिए काफी मददगार साबित हुई। शम्मी कपूर के साथ उनकी पहली फिल्म जो जंगली बनी, इसके बाद उन्हें काफी मकबूलियत हासिल हुई। इसी वजह से वो उस जमाने की लव स्टोरीज की जैसे रोमांटिक हीरोइन बन गई।

0: दोस्तों, उस जमाने के चार्मिंग चॉकलेट हीरो जुबली कुमार राजेंद्र कुमार के साथ उनकी 1964 में आई थी फिल्म आई मिलन की बेला, और इसके बाद झुक गया आसमान।
1: उनसे

0: जमाने के रोमांटिक हीरो विश्वजीत के साथ भी उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अप्रैल फूल।
1: उनकी पहली नजर क्या असर कर गई।

0: दोस्तों, सायरा बानू जो 1966 तक एक एस्टैब्लिश्ड अदाकारा बन चुकी थी, उनके शादी के लिए किसी नवाब, शहंशाह, बादशाह सी आन बान वाला राजकुमार उनकी नजरों में रहा होगा और वो ख्वाब जो उन्होंने देखा होगा सच हुआ जब उनकी शादी मुगल आजम के शहजादा सलीम यानी दिलीप कुमार अर्थात यूसुफ खान साहब के साथ तय हुई और 11 अक्टूबर 1966 में उनका निकाह हुआ।
1: अरे गोपी, क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो? हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
2: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम।
1: हाँ।
2: ताली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो।

0: प्यार मोहब्बत क्या समझाए इसको राम और श्याम के तेरी मेरी नई निभनी के तेरी मेरी नई निभनी नई नई के तेरी मेरी नई निभनी।
1: इसी दौरान उन्होंने राजेंद्र कुमार अभिनीत फिल्म अमन में एक रोमांटिक रोल किया और उनके चाहने वालों को ये संदेश भी दिया कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम करना बंद नहीं करेगी।

0: कि आज तुम्हें क्या हो गया है। उफ, तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: दोस्तों, फिल्म पड़ोसन जो 1968 में आई थी, सायरा बानू के लिए उनके करियर की एक जबरदस्त मोड़ देने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें दिलाया उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम।

1968 में उनकी एक फिल्म आई दीवाना, जिसमें उनके साथ दीवाना के मुख्य किरदार में थे राज कपूर। महेश कौल निर्देशित इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन का था और बड़ा ही कर्णप्रिय और लोकप्रिय बन पड़ा था। दोस्तों, दिलीप कुमार के साथ उनकी 3 फिल्में आई हैं, सगीना, बैराग और गोपी। इसमें सिर्फ गोपी को ही कमर्शियल सक्सेस मिली थी।

0: लिखा हुआ है।
1: नवीन निश्चल के साथ भी दो हिट फिल्में उन्होंने दी, पहली थी पैसे की गुड़िया और दूसरी विक्टोरिया नंबर 203।
2: ना ना ना ना ना ना ना ना।

धर्मेंद्र के साथ उनकी कुल 6 फिल्में आई थी, आदमी और इंसान, रेशम की डोरी, पॉकेट मार, इंटरनेशनल क्रूक, चैताली और ज्वारभाटा।

सुनील दत्त के साथ एक और सफल फिल्म उनकी आई थी नहले पे दहला। और जैसा कि आप जानते हैं उनकी सुनील दत्त साहब के साथ पहली फिल्म थी पड़ोसन। दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म दुनिया में जो आई थी 1984 में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था। दोस्तों उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी फैसला। इस फिल्म में उनके हीरो थे विनोद मेहरा। हालांकि फिल्म 1976 में पूरी हो चुकी थी पर यह फिल्म रिलीज हुई थी 1988 में। दोस्तों सायरा बानो एक सफल अभिनेत्री रही हैं और साथ ही साथ एक जिम्मेदार पत्नी का रोल भी वो बखूबी निभा रही हैं। तो आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर और मारूफ अदाकारा सायरा बानो पर।

0: और स्वर अशोक सोनावणे का कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर कर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

0: अभी आप सुन रहे थे सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाड़। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सावन के पावन महीने में पूरे दमोह जिले में भक्ति और उत्साह का माहौल बना हुआ है। सावन के प्रत्येक सोमवार को बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थस्थल जागेश्वर धाम बांदकपुर में श्रद्धालुओं का भारी तांता लगा हुआ है। कांवड़ यात्रा निकालते हुए हजारों श्रद्धालु लगातार भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं नागपंचमी के अवसर पर बीते दिनों जिले भर में पारंपरिक कुश्ती और दंगल प्रतियोगिताओं का शानदार आयोजन भी देखा गया। धार्मिक आयोजनों के साथ साथ जिले में देशभक्ति का रंग भी जमकर बरसा। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की 195वीं जयंती पर जिले भर में धूमधाम से आयोजन किए गए। इस अवसर पर दमोह शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी और राज्य मंत्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ने हिस्सा लिया। इस दौरान सांसद और राज्य मंत्री ने आकाशवाणी के माध्यम से जनता को संदेश भी दिया। स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में दमोह जिले के लिए यह महीना अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। वरपाटी पहाड़ी पर मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण पूरा होने के बाद अब परिसर में 500 बिस्तर वाले सर्व सुविधायुक्त अस्पताल के निर्माण की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव मांगा गया है, जिस पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। राज्य मंत्री लखन पटेल के प्रयासों से पथरिया क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा पथरिया में नवीन स्वास्थ्य केंद्र भवन की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा भवन के साथ साथ दो दो एफ टाइप, जी टाइप और एच टाइप आवासीय गृहों का निर्माण भी किया जाएगा। वहीं टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिला जेल दमोह में बंदियों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस शिविर में बंदियों को टीबी के लक्षण, बचाव और निशुल्क उपचार की जानकारी दी गई। शिविर की मुख्य विशेषता एआई तकनीक से युक्त हैंडहेल्ड एक्सरे मशीन का उपयोग रहा, जिससे 93 बंदियों का चेस्ट एक्सरे किया गया। इसके साथ ही प्राथमिक आशंका वाले 92 व्यक्तियों के स्पूटम सैंपल विस्तृत जांच के लिए एकत्रित किए गए। जिले के अधोसंरचनात्मक और औद्योगिक विकास के दिशा में भी तेज प्रगति हो रही है। कलेक्ट्रेट में बीते दिनों आयोजित जिला विकास समन्वय समिति की बैठक में सांसद राहुल सिंह लोधी ने बताया कि दमोह जबलपुर मार्ग को 4 लेन में बदला जा चुका है और एक उत्पाद एक जिला योजना के तहत दमयंती चना प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने तथा टमाटर प्रसंस्करण और सॉस निर्माण को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। वहीं करैया रेलवे स्टेशन पर 800 मीटर लंबा नया रैंप पॉइंट तैयार कर लिया गया है। शहर की अग्निशमन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हटानाका के पास जिले के पहले स्थायी फायर स्टेशन का निर्माण शुरू हो गया है। लगभग 1 से 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस स्टेशन में दमकल वाहनों की पार्किंग, पर्याप्त जल भंडारण और दमकल कर्मियों के लिए विश्राम कक्ष जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ग्रामीण विकास और कृषि के क्षेत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने बीते दिनों बटियागढ़ के प्रसिद्ध जरीधाम गौ अभयारण्य का भ्रमण कर गौ सेवा की। उन्होंने परिसर में जैविक डीएपी खाद प्लांट का उद्घाटन किया। मंत्री पटेल ने कहा कि इससे गोबर का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित होगा, किसानों को जैविक खाद मिलेगी।

0: की ओर गौशाला प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। वहीं दूसरी ओर पथरिया के बारातघर में आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के चौथे दिवस संवाद समाधान शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया। राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा कि जनविश्वास अभियान का मूल उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ सीधे आमजनों तक पहुंचाना और पात्र हितग्राही को उसका अधिकार दिलाना है। और अंत में बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की। तहसील मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में राज्य मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने ध्वजारोहण किया और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के संदेश का वाचन किया। उन्होंने बताया कि मड़ियादो बंधा किशनगढ़ मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 74 करोड़ 44 लाख रूपये की स्वीकृति मिली है और 147 करोड़ 52 लाख की लागत से 21 सड़कों का निर्माण कार्य जिले में जारी है। उन्होंने आगे बताया कि 355 करोड़ 34 लाख की लागत से नवीन मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके साथ ही 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 29 उप स्वास्थ्य केंद्र, 4 BPHU भवन और जिला अस्पताल के 50 बिस्तरी क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण कराया गया है। दमोह पटेरा और जबेरा तेंदुखेड़ा समूह जल प्रदाय योजनाओं से 657 गांवों में पानी पहुंचाया जा रहा है। वहीं सतधारू परियोजना में बांध का काम 100% और नहर का काम 95% पूरा हो चुका है, जबकि पारना जलाशय का काम 87% तथा दादूपुर स्टॉप डैम का काम 50% पूर्ण हो चुका है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो जिले में 6 सांदीपनी स्कूलों का फिनिशिंग कार्य 9 दिसंबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। 18 PMC स्कूलों में अटल लैब बन रही हैं और 12 स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष व विज्ञान प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं। समारोह में उत्कृष्ट सेवा देने वाले कर्मियों और लोकतंत्र सेनानियों को भी सम्मानित किया गया तथा 1500 स्कूली बच्चों ने सामूहिक पीटी प्रदर्शन व सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। दमोह जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 MHz पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के ठीक 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुनें।

0: नमस्कार श्रोताओं, हम हाजिर हैं आपका चहेता और पसंदीदा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने लेकर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर, और आइए लेते हैं ये पहला कॉल। नमस्कार।
1: नमस्कार, हम बोला सड़ेरी से।
0: नाम बताएं अपना।
1: हम सुनील सिंह लोधी बोल रहे हैं।
0: सड़ेरी कहाँ पे है आपका ये गांव?
1: यहाँ है भाई, जगह डर बच्चे हमको 8 किलोमीटर।
0: अच्छा अच्छा, क्या करते हैं सुनील भाई आप?
1: हम खेती किसानी करते हैं।
0: सुनील भाई, अंगदान के बारे में कुछ जानते हैं आप?
1: ये हम नहीं जानते।
0: भारत सरकार ने जीवन संजीवनी अभियान चलाया है। ये अभियान ऐसा है कि इसमें हमें अपने गांव में लोगों को शहरों में जागरूक करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा अंगदान देने का प्रयास करें। अंगदान कर देने से कई लोगों को फायदा होता है, तो अपने गांव में भी लोगों से कहें कि अंगदान के प्रति जागरूक रहें। जैसे कि नेत्र दान हो जाता है और शरीर के ऊतक दान कर दिए जाते हैं, ऐसी कई चीजें होती हैं जो दान कर दी जाती हैं। तो बताएं, गाना कौन सा सुनवाएं हम आपको?
1: मेगा मेगा।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हेलो,
5: नमस्कार।
4: नमस्कार सर,
5: अपना नाम बताएं।
4: शेर सिंह यादव, पटरा पठारी के पास।
5: अच्छा, क्या करते हैं शेर सिंह जी?
4: किसानी करते हैं सर।
5: तो शेर सिंह, हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हमारी सरकार लोगों में जागरूकता फैला रही है कि वो अंगदान करने को प्रेरित हों। अगर व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो फिर उसके साथ अंगदान कर देते हैं तो कई दूसरे व्यक्तियों को जीवन दान मिल जाता है।
4: जी।
5: आपके आसपास जो भी लोग हैं, अंगदान करने को प्रेरित करें, और अगर कोई व्यक्ति अंगदान करता है तो हमें उसका हौसला बढ़ाना चाहिए।
4: जी सर, सही बात सर।
5: तो बताएं, गाना कौन सा सुनवाएं?
4: सावन का महीना पवन करे सूर।
5: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म मिलन का ये गीत।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन

0: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: हेलो सर, नमस्कार।
4: नमस्कार, फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
3: हम निरपत बोल रहे हैं सर।
4: निरपत? कौन से रेंजा से बोल रहे?
3: जो ढाना के पास में है, थोड़ो राहली रोड पे।
4: अच्छा, रेंजा में क्या करते हैं निरपत भाई?
3: मजदूरी करते हैं सर।
4: अच्छा अच्छा, किस प्रकार की मजदूरी करते हैं आप?
3: बस यही किसानी में लग जाती, किसान भाई के।
4: अच्छा, तो आपकी खुद की खेती नहीं है?
3: नहीं है सर।
4: निरपत भाई, हम आपको बताना चाहेंगे कि व्यक्ति जब इस दुनिया से जाता है तो वो उसके पहले अंगदान करने का प्रण कर सकता है, और कहा जाता है कि एक अंगदान कई जीवन दान।
3: हाँ जी सर, आपका कहने का सही है, लेकिन व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम पहले अच्छा कर्म करें तो सबके लिए अच्छा लगे।
4: हाँ, और जाने के बाद कई लोगों को जीवन दान दे सकता है वो।
3: हाँ दे सकता है सर, क्योंकि कम से कम वो तो चले गए, कम से कम अच्छा तो काम कर गए सर।
4: हाँ चलिए, तो आप प्रयास करें अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें इसके प्रति।
3: जी सर।
4: बताएं गाना कौन सा सुनवाएं?
3: गाना सुनना है सर मुस्कान फिल्म को, मैंने जिसको दिल दिया है।
4: आइए सुनते हैं निर्बल भाई, आपकी फरमाइश पर फिल्म मुस्कान का ये गीत।

0: पांच महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
0: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
1: mmsky.mp.gov.in पर। MMSKY, सीखो भी कमाओ भी।
2: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
3: सच?
2: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
3: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
2: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
3: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
2: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: हेलो, फोन करें गीशन है सर।
6: जी बिल्कुल सही जगह पर और सही वक्त पे फोन लगाया है।
5: जी सर नमस्कार।
6: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
5: जी लक्ष्मण सिंह बात कर रहे सर, ग्राम बोतराई तहसील पसरिया जिला जम्मू।
6: ये अपने गांव के बारे में कुछ बताइए, कहां पर है गांव आपका और कैसा लगता है वहां पे?
5: सर गांव आप स्टेशन पसरिया आएंगे तो वहां से 6 किलोमीटर की दूरी है सर हमारे गांव की।
6: मात्र 6 किलोमीटर?
5: मात्र 6 किलोमीटर सर।
6: अच्छा अच्छा, तो क्या क्या है आपके गाँव में?
5: सर स्कूल भी है 12वीं तक है।
6: अस्पताल
5: भी है सर, 5-6 आंगनबाड़ी भी है सर।
6: जी अच्छा लक्ष्मण भाई, अंगदान के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें जानकारी दें आप।
5: अंगदान जैसे सर अपनी नेत्र है, जैसे कोई नेत्रहीन है सर।
6: हाँ हाँ,
5: तो यदि भाई उनके लिए अंकों की व्यवस्था में तो भैया नेत्र दान करो चाहिए सर।
6: हाँ, और ये दुनिया से जाने के बाद होता है तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है और ना किसी प्रकार की परेशानी है, और हमें लगता है इतना ज्यादा पुण्य कमा के जाते हैं फिर वो
5: दूसरों के काम में अगर जिंदगी को भी पड़ गई सर तो सबसे बड़ी बात है सर।
6: बहुत ही बढ़िया विचार है आपके
5: जी,
6: और अंगदान जरूर करना चाहिए।
5: बिल्कुल सर।
6: बताएं गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
5: सर हमें सुनने वो गीत लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है,
6: चांदनी फिल्म का।
5: जी जी सर।
6: आइए सुनते हैं लक्ष्मण भाई आपकी फरमाइश पर फिल्म चांदनी का ये गीत।

0: हमने लगाया है, फोन करें जिस समय।
1: जी बिल्कुल सही जगह पे फोन लगाया, अपना नाम बताएं।
0: कल्याण सिंह राजपूत, ग्राम घर तहसील बंडा, जिला सागर।
1: क्या करते हैं आप?
0: हम खेती किसानी करते हैं सर।
1: तो अभी क्या चल रहा खेतों में आपके?
0: खेतों में अभी बस वो इल्ली की दवाई चल रही है सर।
1: तो आप कोशिश करें कि जैविक कृषि की ओर जाएं आप और जैविक दवाइयों का इस्तेमाल करें।
0: हाँ।
1: अच्छा, हम आपको बताना चाहेंगे कल्याण भाई कि एक अंगदान कई जीवनदान कर जाता है।
0: हाँ।
1: तो व्यक्तियों को अपने जाने के बाद अंगदान हाँ। करने की जो औपचारिकता है वो पहले से ही कर देना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अगर नया जीवन मिल जाता है तो हाँ। वो ये दुनिया देख सकते हैं, इस दुनिया में रह सकते हैं। तो अंगदान करने वालों का हौसला भी बढ़ाना चाहिए हमें, और खुद को भी अंगदान के प्रति संकल्प लेना चाहिए। तो बता दें गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
0: हमको गाना सुनना है, फिल्म है सौतन, कोई भी सुना देना सर।
1: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: हेलो। हाँ सर नमस्ते।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका फोन करेंगी सुने में।
0: हाँ हम दीपक उर्मी बोल रहे हैं मड़िया से।
1: मड़िया में क्या करती हैं आप और कौन सी मड़िया है ये?
0: ये श्रीवास मड़िया है, गड़ाकोटा के पास पड़ती है, रोन कुमराई के पास।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो हम हैं मड़िया के लेकिन सागर में रहते हैं बच्ची को पढ़ाने के लिए।
1: ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो कौन सी क्लास में पढ़ रही बिटिया आपकी?
0: बिटिया 11वीं में है।
1: अच्छी बात है, खूब पढ़ाइए लिखाइए।
0: हाँ एक ही लड़की है हमारी।
1: चलिए बहुत ही अच्छी बात है।
0: हाँ और उसके पापा खेती किसानी करते हैं।
1: तो वो मड़िया में करते होंगे?
0: हाँ वो मड़िया में करते आते जाते रहते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ, चलिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं वो भी और आप भी मिलके।
0: हाँ हाँ सर।
1: अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई। अच्छा दीपक उर्मी, हम आपको बताना चाहेंगे कि व्यक्ति अपने जाने के बाद अगर अंगदान करता है तो वो कई लोगों को जीवन दान दे देता है।
0: हाँ वो तो है सर।
1: जैसे नेत्रदान भी हो गया और कई प्रकार के अंगदान और होते हैं। इनके बारे में सरकार भी हौसला बढ़ाती है और बताती है कि लोगों को जो गलतफहमियां हैं उनसे हमें दूर रहना है और अंगदान करने का फैसला कर लेना चाहिए।
0: हाँ हाँ, हम लोगों ने तो सोचा है सर कि हम लोगों को भी करना है अपना
1: अंगदान
0: करना है।
1: बहुत ही बढ़िया। तो आपने और आपके पति दोनों ने सोचा है?
0: हाँ हम लोगों ने दोनों ने सोचा है। वही तो हमने सोचा कि बच्चे सीखते भी हैं और कुछ अपना अपना कुछ योगदान हो जाए तो इससे अच्छा क्या है।
1: क्या बात है, आप तो दीपा जी बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके।
0: हाँ
1: वहाँ तो गुड़ खूब बनता है।
0: हाँ हमारे यहाँ खुद बनता सर।
1: अच्छा अच्छा, तो गुड़ कैसे बनाया जाता थोड़ा सा बताएं।
0: गुड़ अपना जो गन्ना रहता है तो उसको वो क्रेशर आता है।
1: हाँ हाँ,
0: तो उस मशीन में पिरता है, फिर उसका रस निकलता है, फिर भट्टी चालू होती है तो कढ़ाई रखते हैं, फिर उसको आग से बनाते हैं।
1: अच्छा चलाते रहते हैं और उसके ऊपर जो झाग सफेद निकलती है उसको हटाते जाते हैं।
0: हाँ हाँ
1: दीपा बताएं।

0: हमें कौन सा गाना सुनवा है हम आपको?
1: भैया का सुनवा दीजिए, चंबल की कसम का गाना सुना दो सर आप। हाँ भैया वाला।
0: दीपा बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, तो आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म चंबल की कसम का ये गीत।

0: हेलो भैया नमस्ते।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका। फोन करेंगे सुने मैं।
0: जैसे कर भैया बोल रहे
1: हैं। हाँ
0: हाँ भैया, डालचंद पटेलपुर से बरकुमान से।
1: ये कहाँ पे है आपका गांव?
0: भाई हिन्नौल के पास है सर, 3 किलोमीटर का कल में।
1: बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी पानी और नदी के क्या हाल चाल है और राजघाट डैम के?
0: पानी तो सर कम गिर रहा है।
1: अच्छा डालचंद भाई, आप अंगदान के बारे में कुछ जानते हैं?
0: नहीं सर।
1: तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एक अंगदान कई जीवन दान देता है।
0: जी सर।
1: कई बार व्यक्ति क्या होता है कि अपने जाने के बाद
0: जी
1: जो आदमी पहले से सोच लेता है
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: उनके अंगदान ये चीजें आदमी दान करता है तो कई लोगों को जीवन दान मिल जाता है।
0: जी सर।
1: और ये बहुत ही पुण्य का काम है और कई लोग तो अपनी पूरा देह दान दे देते हैं अस्पतालों को। तो ऐसे मुहिम से हमें जुड़ना चाहिए और जो व्यक्ति अंगदान करता है हमें उनका हौसला जरूर बढ़ाना चाहिए।
0: करना चाहिए सर अंगदान।
1: बिल्कुल। बताएं गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
0: सर हमें वो फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है।
1: चलिए बहुत ही अच्छी बात है और हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

और श्रोताओं, अब आपको इंतजार है मुद्दे की बात का। मुद्दे की बात है, बारिश के इस मौसम में अपने स्वास्थ्य का रखें विशेष ख्याल। इसी मुद्दे पर हमें रहेगा आपके फोन कॉल्स का इंतजार। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी थे हरगोविंद विश्वकर्मा, और इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपके इस दोस्त जय शेखर ने। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है।

0: का व्यापार आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770442297। आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवे शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है 11:30 से 11:30 बजे तक।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को है, थोड़ी ही देर में विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाश

0: ಭಾರತಿ
1: ವಿವಿಧ ವಿವಿಧ ಭಾರತಿ ಕೆ ವಿವಿಧ ರಂಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೋ ಕಿ ವಿವಿಧ

0: विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का नमस्कार। श्रोताओ, एक गीत हमारे आसपास गूंजने लगता है जो कहता है, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ।
0: आवारगी का ये अंदाज लेकर के अपनी कलम के सहारे जिन्होंने इस फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाई, वो अमर नाम है कवि शैलेंद्र का।
1: जी हाँ, शैलेंद्र साहब की ये जन्मतिथि 30 अगस्त बहुत सी स्मृतियों के द्वार खोल देती है। शैलेंद्र जी के गीत वो गीत हैं श्रोताओं, जो हमारे आसपास की जिंदगी को बयान करते हैं, जिन्होंने जीवन का जो गहरा दर्शन है उसे बहुत सरल शब्दों में हम तक पहुंचाया है। बल्कि जयंती जी, मैं तो ये कहूंगी कि उनके लिखे जो गीत हैं उसकी कई बार तो पंक्तियां जैसे हमारे लिए रोजमर्रा में लोकोक्तियां या मुहावरे तक बन चुके हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी, मानवीय संबंधों में जो क्लिष्टता होती है, कई बार जो जज्बाती मुश्किलें देखने को मिलती है और उनकी वजह से जितने अवसाद इंसानों को झेलने पड़ते हैं, उन सभी को बड़ी सहजता से अपने कलम के सहारे उन्होंने अपनी रचनाओं में उंडेला था और हम सबके दिल को छू लिया था।
1: बिल्कुल, और शैलेंद्र जी की स्मृति को हम आज नमन करते हैं, जिन्होंने लिखा था, किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार।
0: जीना इसी का नाम है।

0: जयंत जी
1: जी,
0: जिस फलसफे की बात हमने की वो इस गीत में जैसे उभर कर आ रहा था, और कोई श्रोता, कोई दर्शक, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इस गीत से प्रभावित हुए बिना रहा हो। ऐसी ही बहुत सी यादें हैं शैलेंद्र साहब की, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि जब इस प्रोग्राम को हम बना रहे हैं, हमें हमारी खुशकिस्मती से मिले दिनेश शैलेंद्र जी, जो

0: महेंद्र जी के छोटे बेटे हैं
1: जी।
0: और उनसे हमने टेलीफोन पर बात की और उन्होंने हमसे यादें साझा की कि किस तरह से पिता शैलेंद्र उन्हें लगते थे, कैसे उन्होंने देखा और एक गीतकार फिल्मकार शैलेंद्र दिनेश जी की नजरों में कैसे थे। आइए सुने उनकी इन स्मृतियों को, हमने उनसे टेलीफोन पर बात की। नमस्कार दिनेश जी, मैं विविध भारती की ओर से आपका स्वागत करती हूं और आपके पिता महान गीतकार श्री शैलेंद्र जी की स्मृतियों को नमन करती हूं। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका।
2: नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दिनेश जी, एक पुत्र से पूछूंगी कि आपने अपने पिता को किस तरह से देखा।
2: मनीषा जी, सच पूछिए तो बाबा जिस दिन गुजरे
0: जी,
2: उसी दिन हमें पता चला कि शायद वो कुछ बड़ा काम करते होंगे कि इतने सारे लोग, इतनी भीड़, अगले दिन पेपर में उनकी फोटो और उनका न्यूज, ये सब हमारे को टोका सा दिया था इन सब चीजों ने
0: जी।
2: क्योंकि हम लोग उनके घर पे माहौल जो था वो ऐसा था कि बहुत ही नॉर्मल, तो हमें तो ऐसा लगता था कि शायद शंकर जयकिशन, राज कपूर, सलील चौधरी, एसडी बर्मन, ये सभी के घर जाते आते रहते होंगे और कोई खास बात नहीं है। क्योंकि बाबा का भी रहन सहन और घर पे जो हम लोगों के साथ उनका वो था बिहेवियर, वो एकदम ही नॉर्मल था। हम सबसे छोटे थे तो जब भी घर आते थे तो हमें कोई वो फिक्र नहीं होती थी कि वो थके होंगे या काम करके आए या दिमागी तौर से आदमी थक जाते।
0: जी जी जी।
2: लेकिन हम बोलते थे घोड़ा बनो तो वो घोड़ा बन जाते थे, हमारे साथ म्यूजिक के गेम्स खेलते थे, हम लोग सब बच्चों के साथ, वो बहुत ही घुल मिल के और बहुत ही आइडियल फादर। और एक बात हम जरूर बताना चाहेंगे कि वो कार में हम जब उन्होंने बंगला ले लिया था
0: जी जी।
2: तो जो भी सुविधाएं होती हैं वो सभी थी हमारे घर में, लेकिन बाबा बहुत कम डाइनिंग टेबल पे बैठ के हम लोगों के साथ खाते थे।
0: अच्छा।
2: वो अक्सर जमीन पर ही बैठ के खाया करते थे और हम लोगों को वो उन्होंने यही समझाया था कि यही हमारी जगह है, यहीं से हम शुरू हुए हैं, और बार बार वो अपने बचपन की कहानियां हम लोगों को सुनाते थे कि कितनी गरीबी में वो पले बड़े थे
0: जी,
2: वो चाहते थे कि हम लोग भी वैसे ही बने।
0: आपने जो ये बात बताई कि वो जमीन पर बैठकर खाते थे, एकदम जिसको कहते हैं ना कि मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान जो होता है, वो थे शैलेंद्र जी, और ये उनकी हर गीत में दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके गीतों ने, मैंने जो पहले भी बात कही थी कि उनके गीतों में जीवन दर्शन इतना गहरा और इतनी सरल भाषा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, ये इतनी बड़ी बात बहुत सरल शब्दों में। वहीं आपको तो खैर मैं क्या बताऊं, हम तो सुबह शाम रात दिन, जैसे उनके गीतों ने हम लोगों के जीवन को, हमारे श्रोताओं के जीवन को प्रेरित भी बहुत किया। अब मैं दिनेश शैलेंद्र जी से जानना चाहूंगी कि गीतकार शैलेंद्र अपने पिता को जब आप याद करते हैं तो उनके गीतों को लेकर आपको कैसा लगता है? अभी भी जब आप सुनते होंगे तो कई बार तो आंखें भरती होंगी आपकी, क्योंकि हम लोगों की भी भर आती हैं, तो हमसे वो आपकी जो फीलिंग्स हैं उसे शेयर कीजिए ना।
2: देखिए, हम तो जब वो गुजरे थे तो 10 साल के ही थे
0: जी,
2: तो उनके गाने सुनते तो रहते थे, हमारे घर में म्यूजिक तो बजता ही रहता था, हर तरह के गाने बजते थे, लेकिन एक्चुअली जब बड़े हुए तब उनके गानों का मतलब समझ में आया, और फिर और जब हमारे एक्सपीरियंसेस हुए तो ये समझ में आया कि वो बहुत ही एक अलग ही किस्म से लिखते थे, जो बहुत कम राइटरों में एक टैलेंट है
0: जी, जी।
2: कि जो भी गाना उनका ले लें आप, वो एक परत अगर उठा दें
0: जी, जी।
2: जो नॉर्मल वर्ड से
0: जी।
2: तो आपको एक अलग मीनिंग अंदर दिखाई देगा और पता चलेगा। हम आज तक उनके गानों के बारे में लिखते हैं और हमें भी सीखने को मिलता है और समझ में आता है कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं, मतलब उनके गानों में इतनी गहराई होती थी कि एक आम आदमी तो अपने तौर पे गा लेता था। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं कि गुलजार साहब के साथ एक दिन हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि होंगे राजे राजकुमार, एक श्री 420 का गाना है, मेरा जूता है जापानी, तो उसके एक अंतरा है कि होंगे राजे राजकुमार हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे।
0: क्या बात है।
2: उन्होंने बताया कि ये आप उसके मीनिंग ऐसे ही ऑर्डिनरीली आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप एक परत हटाओ तो शैलेंद्र इज टॉकिंग अबाउट द न्यू इंडिया। मोनार्की खत्म हो गई है और डेमोक्रेसी आ गई है, तो राजे राजकुमार तो हैं, होंगे, अब सिंहासन वो कोई भी आम आदमी जाके बैठ सकता है, ये बोलना चाह रहे हैं वो।
0: उनके अंदर की जो ये आग थी ना, ये उनकी हर रचना में दिखती है। एक फिल्म भुलाए नहीं भूलती, और वो है फिल्म तीसरी कसम, जिसको आपके पिताजी ने बहुत दिल से बनाया था, और आज तक वो फिल्म हमारे जहन में बिल्कुल तरोताजा है। वही हीरा मन और वही सारी चीजें, वही राज कपूर साहब और वही गीत, उसको लेकर के कुछ बातें हम जरूर आपसे करना चाहेंगे दिनेश जी।
2: मनीषा जी, एक शॉर्ट स्टोरी थी फणीश्वरनाथ रेणु जी की
0: जी,
2: तो जिस दिन उन्होंने पढ़ी, छोटी सी किताब थी,
0: मारे गए गुलफाम,
2: मारे गए गुलफाम नाम की कहानी थी, उन्होंने जब पढ़ी तो वो शुरू से आखिर तक एक ही उसमें पढ़ी, फ्लो में, और जैसे ही पढ़ी उन्होंने किताब साइड में रखी और एक चिट्ठी लिख दी रेणु जी को
0: जी।
2: तो एक अजीब सा, मतलब उनको कोई जरूरत नहीं थी फिल्म प्रोड्यूस करने की, वो सबसे हाईएस्ट पेड राइटर भी थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में और सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर वो एक कहानी इतनी पसंद आई जो हमारे रूट्स हैं वो बिहार के हैं
0: जी, जी जी,
2: तो उनको लगा कि वो कहीं अपने रूट्स के साथ जुड़ने में ये कहानी बहुत हेल्प कर रही थी उनको। तो एक जुनून सा सवार था कि मैं इस फिल्म को तो प्रोड्यूस करूंगा ही। फिर शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बीच में वो फिल्म में कुछ ज्यादा समय लग गया, जो एक साल में बननी चाहिए थी फिल्म, इनफैक्ट कुछ महीनों में बननी चाहिए
0: जी,
2: उस फिल्म को 5 साल लग गए, और जब तक फिल्म कम्प्लीट होने लगी थी तब तक सभी लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था, पर वो अकेले, मतलब उनके दिमाग में बस यही था कि ये मेरा सपना है और मैं इस सपने को पूरा करके ही छोड़ूंगा, और जो भी था उनके पास वो सारा कुछ उन्होंने झोंक दिया उस फिल्म में, और फिल्म कंप्लीट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिल्म शुरू में चली नहीं, तो कई लोगों का ये मानना है शायद फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से उनकी डेथ हो गई, या वो बिल्कुल बात नहीं थी, जितना पैसा वो उस वक्त ले रहे थे ये 3-4 महीने में वो इजिली कवर अप कर सकते थे सारे लॉसेस, और ये कुछ महीनों की ही बात है कि सितंबर में फिल्म रिलीज हुई, दिसंबर में वो गुजरे, और मार्च या अप्रैल में नेशनल अवार्ड अनाउंस हुए, तब लोगों की आंखें खुली कि भाई ये इसमें कुछ तो होगा, और उसके बाद वो फिल्म जहां भी लगी है बहुत अच्छा बिजनेस किया है और लोगों को सारे गाने भी पसंद आए हैं और बहुत चली।
1: अपने बाबा शैलेंद्र की स्मृतियां बांट रहे थे उनके सुपुत्र दिनेश शैलेंद्र। मनीषा जी, हम इस बातचीत को सुन रहे थे और उस दौरान फिल्म तीसरी कसम का एक गीत बार बार मन में कौंध रहा है, क्यों ना अपने श्रोताओं को सुनवाया जाए।
0: गीतकार शैलेंद्र की अनुपम कृति सेल्यूलॉइड पर लिखी एक कविता, तीसरी कसम।

0: तो श्रोताओ, आज हमने स्मरण किया महान गीतकार शैलेंद्र को, और अब एक ऐसी संगीतकार जोड़ी की बातें जिनके गीत एक जमाने में लोगों को दीवाना बना दिया करते थे, और आज भी जब रेडियो से ये गीत बजते हैं तो उस जोड़ी की स्मृति को भी हम नमन करते हैं। और जयंत जी,
1: जी।
0: हुस्नलाल जी और भगत राम जी संगीतकार खयाम के गुरु थे, जिन्हें अभी कुछ ही दिनों पहले हमने खो दिया। और इसके अलावा नौशाद साहब के भी गुरु थे हुस्नलाल जी और भगत राम जी,
1: जिनके गीतों का हुस्न देखते ही बनता था,
0: क्या बात
1: और
0: है?
1: जिनके गीतों को सुन करके उनके संगीत के सब भगत हो जाया करते थे,
0: क्या बात है। तो आइए इस कार्यक्रम को सुनते हैं श्रोताओं, सरगम के सितारे। हमारा एक ये बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम होता था, इसके कुछ संपादित अंश आज की विविधा में हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वर निम्मी मिश्रा का है, तो आइए सुनते हैं विविध भारती के संग्रहालय से चुनी गई ये रिकॉर्डिंग।

1944 में फिल्म चांद से सिने संगीत जगत में कदम रखा इस जोड़ी यानी हुसनलाल भगतराम ने। इस फिल्म का गीत दो दिलों को ये दुनिया मिलने नहीं देती बहुत ही लोकप्रिय हुआ।

0: वरिष्ठ फिल्म संगीतकार खय्याम, जो स्वयं संगीतकार हुसन लाल भगत राम जी के शिष्य हैं, अपने गुरु की सुरीली यादों में खो से जाते हैं और बताते हैं,
1: फिल्मी संगीत की दुनिया में पहली जोड़ी ये थी। तो दोनों मतलब शास्त्रीय संगीत के बहुत ही बड़े गुरु, और एज वेल एज उतनी ही महारत उनको लाइट म्यूजिक में, जिसमें वो ठुमरी हो, दादरा हो, गजल हो, गीत हो, तो ये मतलब बहुत बड़ी दोनों हस्तियां थे ये लोग। तो भाई मेरी खुश नसीबी ये कि मेरे गुरु थे, और मैं जो सरगम और स्वर और ताल का जो ज्ञान मुझे मिला उन्हीं से मिला। पहले स्वर सा जिसे कहते हैं उन्हीं से मिला, सरगम और सुर और सुर और ताल का, तो उन्हीं से ज्ञान मिला। दिल्ली में मुझे ये शिक्षा मेरी हुई, तो मैं बहुत ही मतलब भाग्यशाली हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ कि ऐसे गुरु मुझे मिले, और जिनसे मतलब गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो तो सबको मालूम है, बहुत ही उत्तम होता है, लेकिन उन्होंने तो मुझे जैसे अपनी औलाद की तरह प्यार दिया। तो ये उनका, और फिर धुने उन्होंने क्या सुरीली, क्या अच्छी और कैची और आसान धुने बनाई उन्होंने हर एक फिल्म में। आप उनकी कोई भी फिल्म आप बजाएंगे, आप देखिए कितना आसान और उम्दा और अच्छा संगीत,
0: मतलब सुरीले होने के साथ साथ वो बहुत सरल भी होता था।
1: जी हाँ, बहुत सरल होता था,
0: और फिर जब सरल हो सुरीला हो तो असर की तो क्या,
1: यकीनन वो मकबूल होता है और आम लोगों तक, यानी हर खासो आम तक वो पहुंच जाता है।

0: फिल्म प्यार की जीत ने युगल जोड़ी को अपार सफलता दिलाई। यूं तो संगीत का गहरा ताल्लुक होता है दिल से, और फिल्म संगीत वो तो हर आम और खास की रग रग में बसता है, क्योंकि उसे सुनते सुनते ही हम बचपन से किशोर और किशोर से फिर युवा और फिर प्रौढ़ कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। पर हुसनलाल भगतराम जैसे संगीतकारों का उम्दा संगीत हमेशा वैसा ही असरदार ताजा रहता है। योग्य पिता संगीतकार हुसनलाल की सुयोग्य संतान दिनेश प्रभाकर ने संगीत को ही अपनाया बतौर संगीतकार। पिता और गुरु की मीठी सुरीली यादें आज भी वैसी ही ताजा हो जाती हैं।
1: इस जोड़ी ने पंजाब की मिट्टी की सौंधी खुशबू एवं पंजाबी फोक को इस तरह से फिल्म संगीत में ढाला, और एक जो खास बात थी कि पंजाबी ठेका, इसको शंकर जयकिशन ने भी अडॉप्ट किया, उसके बाद में ओपी नैयर जी ने भी अडॉप्ट किया, और इस तरह से कई संगीतकार हैं जो कि उनके संगीत के इन्फ्लुएंस में आए। अपने जमाने के बहुत ही बिजी संगीतकार थे, धुने तो वो दोनों भाई इकट्ठे एक साथ ही बैठ के बनाते थे, और इतने अनुबंध थे उनके कि उनको कई बार ये भी याद नहीं रहता कि हमने कौन सी फिल्म की धुन किस तरह से बनाई, पर इतने माहिर थे कि सेट पर जाते ही जब वो ये फील करते थे कि ये धुन हम पहले भी कहीं दे चुके हैं, सेट पर ही उस धुन को एकदम चेंज कर देते थे। मैंने एक्चुअली वायलिन की ट्रेनिंग ली फादर से, और उनका हमेशा यही रहा कि पहले स्टडी करो, संगीत तो तुम्हें आ जाएगा। संगीतकार होने के साथ साथ वो एक बहुत बड़े गायक भी थे और वायलिन वादक भी। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, जालंधर में शायद हरिवल्लभ संगीत सभा में गा रहे थे वो, तो उस समय काफी बारिश हो रही थी और सामने बड़े गुलाम अली खान साहब और कई कई लोग बैठे थे, उन्होंने राग गाया मियां मल्हार। तो जब फंक्शन खत्म हुआ, गुलाम अली खान साहब स्टेज पर आए और उनको गले मिले और बोले कि उनका नाम जैसे आप जानते हो हुसन लाल था ना
0: जी हाँ,
1: तो कि जैसा तुम्हारा हुस्न है वैसा ही तुम्हारा गाने में हुस्न,
0: वैसा ही गायन का हुस्न भी लाजवाब है।

फिल्म बड़ी बहन के साथ हुसनलाल भगतराम के संगीत का जादू चला, जो सिलसिला बना तो कई बार एक साल में ही इस जोड़ी की 8-8 फिल्में भी आईं। सन 1950 में

निर्मित सावन भादो, आधी रात, मीना बाजार और गौना तो विशेष रूप से लोकप्रिय रहीं। सन 1951 की फिल्मों में अफसाना और सनम बहुत ही उल्लेखनीय हैं।

0: संगीत के क्षेत्र में पिता श्री भगत राम की ताल से ताल मिलाने की कोशिश में बेटे अशोक शर्मा।
1: वो सिर्फ मेरे पिता ही नहीं, मेरे गुरु भी हैं, उन्हीं से मैंने सब शिक्षा हासिल की है। मैं तो काफी छोटा था, पर फिर भी उनके जो पीक टाइम था उस वक्त तो मैं नहीं था, पर फिर भी मैंने उन्हें स्टूडियो में अक्सर देखा है। मैं उनके साथ जाया करता था, तो उनकी जो लगन थी काम करने की वो बहुत देखने लायक थी। और बहुत ही, वैसे तो बहुत ही सरल लोग थे, पर उनके काम में उनका अलग ही ढंग था काम करने का, जो खुद ही सब इवन वो अरेंजमेंट में भी इन्वॉल्व होते थे। सिर्फ गाने पे ही नहीं, धुन तो थी उनकी, प्लस वो म्यूजिक पे भी अपना बहुत ध्यान देते थे। कभी जब वो दोनों बैठे रहते थे तब वो बैठ के ही धुन बनाया करते थे। कभी जैसे कभी मेरे पिता पंडित भगतराम जी बैठे रहते थे, उन्हें कुछ सोचता था तो वो अलग बैठ के धुन बना लेते थे
0: जी,
1: और फिर उन्हें बता देते थे कि भी ये हो गया है। और कई बार प्रोड्यूसर बैठ जाते थे, उनके सामने भी वो इमीडिएट धुन बना देते थे। राइटर लिखते थे, तो पहले तो ऐसे नहीं था कि आपने ट्यून दे दी और उस पे लिख दिया, इतना नहीं हुआ करता था। पहले राइटर को फ्रीडम दी जाती थी और वो अपना लिख के तभी म्यूजिक डायरेक्टर को देते थे और वो उसी पे धुन बनाया करते थे। तो वो हर तरह से ही धुन बनाया करते थे। धुने काफी हैं, जैसे वो गाना है छुप छुप खड़े हो जरूर की बात है, इस तरह की जो है वो धुने बस जैसे आई बैठे गए दिमाग में, तो उन्होंने इमीडिएट कंपोज कर दी फिर। और उसके म्यूजिक भी देखिए, हारमोनियम का बहुत छोटा सा पीच, बहुत बहुत खूबसूरत बनाया है भगत राम जी ने उसमें।
0: कुछ कोई बात खास आप अपने पिताजी के बारे में बताना चाहेंगे हम लोगों को, श्रोताओं को?
1: जी, पिताजी के बारे में यही कहना चाहूंगा कि बहुत सरल भाव के थे, बहुत सीधे थे, और हमेशा संगीत में ही उनका दिमाग रहता था। और एक बात बताना चाहूंगा कि वो सिर्फ लाइट म्यूजिक के ही नहीं थे
0: जी,
1: बल्कि मतलब कहने का कि सिर्फ फिल्मों के संगीतकार नहीं थे, बल्कि वो बहुत विद्वान शास्त्रीय संगीत के भी कलाकार थे। वो
0: हुसनलाल जी के साथ भगत राम जी भी हारमोनियम पर शास्त्रीय रागों को बखूबी प्रस्तुत करते थे, यानी सही मायने में थी ये जोड़ी एक दूसरे की पूरक, या यूं कहे कि एक दूसरे के लिए ही बनी थी।

0: शास्त्रीय संगीत में महारत बनाती है सिनी संगीतकार की धुनों को और भी कामयाब और भी असरदार। संगीतकार हुसनलाल भगतराम जो थे सगे भाई और दोनों ही शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता। हुसनलाल जी की वायलिन की धुन स्वर कुछ अनूठे ही लगते थे जिनकी प्रशंसा में संगीतकार खयाम यूं कहते हैं।
1: देखिए उनकी खास बात ये थी कि पंडित हुसनलाल जी शास्त्रीय संगीत में वायलिन पर
0: जी
1: इतना अच्छा शास्त्रीय संगीत उसमें वायलिन में बजाते थे
0: जी।
1: तो मतलब एक रागा को पौना घंटा आधा घंटा पौना घंटा एक घंटा वो बजाते थे किसी भी एक रागा को वायलिन के ऊपर।
0: अच्छा,
1: और ऐसी टोन वायलिन की बहुत कम सुनने में मिली पूरी दुनिया में। ऐसी टोन वायलिन की कि क्या कहने है ये, क्या मतलब कोई दूसरा विदेशी इंसान भी अगर सब सुन लेता था पंडित जी का वायलिन तो वो बहुत सराहना करते थे।
0: अच्छा,
1: कि वाह वाह ऐसा ऐसी टोन हमने नहीं सुनी। पंडित सुलाल जी वायलिन बजाते थे और पंडित भक्तराम जी हारमोनियम उसी तरह शास्त्रीय संगीत वो इसी तरह राग रागनिया हारमोनियम पे बजाते थे
0: जी। हाँ।
1: वो भी आधा घंटा पौना घंटा किसी राग को हारमोनियम पर बजाते
0: थे। और उसमें हारमोनियम और वायलिन की जुगलबंदी भी होती थी।
1: खैर उन्होंने दोनों भाइयों ने तो नहीं की
0: जी।
1: लेकिन जाहिर है जब काम करते थे दोनों दो दो हारमोनियम मैंने देखा कि भाई दो हारमोनियम होते थे। एक हारमोनियम पंडित जी पंडित सुलाल जी के पास होता था एक भक्तराम जी के पास होता था। दोनों भाई मिलकर काम करते बहुत कोई चहिता शागिर्द हो तो मेरी खुशनसीबी के मुझे कभी जब वो काम करते थे अदरवाइज जब इंसान काम करता है किसी थर्ड पर्सन को रिदमिस के सिवाय किसी को पसंद नहीं करता कि उनके पास कोई बैठे क्योंकि एक तख्लीक करना होता है एक क्रिएटिव काम करना होता है। तो मगर मुझे अलाउड था मैं मुझे कहते थे तू आ जा पुत्र पुत्र आ जा तू आ जा काका आ जा तू इधर। तो हमारे जालंधर में ना तो वो भी जालंधर के थे मैं भी जालंधर का सब तो वो कहते तू तू बैठ तू ना जावा। तो मैं मुझे मतलब मुझे मौका मिलता कि मैं देखता पंडित जी किस बारीकी से किस तरह सजा रहे हैं।
0: वो आपके गुरु थे तो ये तो आप जानते होंगे तो कैसे उन्होंने ऐसा सोचा कि उससे पहले तो कभी दो एक साथ संगीतकार हुए नहीं थे उन्हीं की ये जोड़ी थी तो उन्होंने कैसे ऐसे सोचा कि दो लोग मिलके और ये संगीतकार हम बने एक साथ।
1: देखिए ये इसके लिए तो मैं मेरी मतलब बहुत ही मैं छोटा इंसान हूँ उनके सामने
0: जी,
1: वो
0: हाँ।
1: बड़े मैं कैसे पूछ सकता था कि
0: नहीं, वो... नहीं, मैं पूछ मैं अपनी जानकारी
1: मैं तो उनके सामने मैं तो कुछ मैं तो हमेशा आपने सुना भी होगा मैं कहता हूँ कि मैं जो खयाम है उनके पांव की धूल भी नहीं है।
0: अरे क्या
1: इतने बड़े वो थे।
2: ओ, तो...

0: गुणी कल्पनाशील संगीतकार के साथ साथ एक हंसमुख खुश मिजाज सरल इंसान भी थे हुसनलाल जी और भगत राम जी। पार्श्व गायक महेंद्र कपूर जो इनके शिष्य भी थे गुरु की यादों को ताजा करते हुए।
1: पंडित हुसनलाल जी को मैं जब मिला गुरु जी के पास इतनी पिक्चरें नहीं थी लेकिन म्यूजिशियन आला ग्रैंड और टीचर आला ग्रैंड भगत राम जी भी और हुसनलाल जी भी। हुसनलाल गुरु जी और भगत राम गुरु जी इतने लायक थे और इतने डाउन टू दी अर्थ और एक तो कंपोजर इतने एक्सीलेंट थे और फिर उसके बाद जो मैंने इनसे सीखा वो ये है कि हार्ड वर्क और रियाज बहुत जरूरी है और रियाज बहुत करवाते थे और रियाज खुद बहुत करते थे गुरुजी।
0: मतलब अभी मतलब जब वो गुरु थे सिखाते थे तो भी रियाज करते थे लगातार
1: बहुत बहुत जबरदस्त 24 घंटे। मैं जब भी गया हूँ इनके यहाँ तो मैंने इनको या गाते हुए देखा है या वायलिन बजाते हुए देखा है।
0: अच्छा।
1: गुरु जी को
0: पूरी तरह संगीत में डूबे हुए थे
1: बिल्कुल।
0: अच्छा आपने उनकी बनाई किसी धुन पे कोई गाया गीत
1: है जी?
0: आपने उनकी किसी तर्ज पे कोई गीत गाया हो?
1: मैंने गाए थे।
0: हाँ, कोई खास
1: है जी?
0: कोई खास गीत जो आपको याद हो?
1: अभी फिलहाल तो मेरे को ऐसी याद नहीं। पहाड़ी में इनके दो तीन गाने थे
0: जी।
1: इन्होंने फिल्म में गवाए थे मुझे।
0: अच्छा।
1: और वो इनकी लास्ट फिल्म थी। हाँ जी। हाँ जी।
0: अच्छा लास्ट।
1: लेकिन यू सी क्या है कि कॉम्पोजिशन के साथ साथ जो मैंने इनसे विद्या ली है ना वो बहुत वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी। इन्होंने जो विद्या दी मुझे वो बहुत मेरे काम आई।
0: अच्छा।
1: हाँ जी। हाँ जी।
0: और कोई खास बात?
1: और इतने अच्छे जेंटलमैन मैं आपको बयान नहीं कर सकता। दोनों भाई इतने अच्छे जेंटलमैन थे कि इतना अच्छा स्वभाव इतने बड़े टॉप मोस्ट म्यूजिक डायरेक्टर होने के बावजूद ये लोग हमेशा हंसते रहते थे। अच्छा। हमेशा खुश रहते थे और कहा करते थे कि भी खुश रहना चाहिए। ठीक है जो अगर भगवान जिस स्थिति में रखे उसी में रहना चाहिए लेकिन रहना चाहिए लेकिन अपना रियाज नहीं छोड़ना चाहिए।
0: हाँ,
1: सरस्वती माँ की पूरी सेवा इन्होंने की है। देखिए मैं आपको बताऊं कि रेडियो प्रोग्राम पे गुरुजी का मुझे फोन आया दिल्ली से कि मैं नेशनल प्रोग्राम पे गा रहा हूँ। है जी?
0: जी।
1: इन्होंने गाया ऐसा गाया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यहाँ तक कि सुनने वालों ने ये समझा जो लिसनर्स थे बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने इंक्वायरीज की कि सिंगर कौन थे जिन्होंने गाया। मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मेरे को यहाँ तक गुरुजी ने बताया था यहूदी मैनियन
0: जी
1: जब आए थे यहाँ उन्होंने इनकी वायलिन सुन के उन्होंने कहा इतना बड़ा आर्टिस्ट ये कैसा आर्टिस्ट है ये हमारे हिंदुस्तान में ऐसा आर्टिस्ट और हमारे वर्ल्ड में ऐसा आर्टिस्ट मैंने कभी ऐसी वायलिन सुनी नहीं। इतनी अच्छी वायलिन बजाते हैं
0: ये तो मतलब खूबी है कि गाते भी थे और वायलिन भी बजाते
1: वायलिन भी बजाते थे
0: और दोनों बराबर दर्जे की उच्च दर उच्च कोटि की।
1: और देखिए कि 6 घंटे रियाज करते थे गाने का इन्होंने कभी टाइम देखा ही नहीं था। मुझे लगता है 8 घंटे फिर वायलिन का करते थे इतना मतलब लगे हुए थे म्यूजिक में
0: जी। हाँ।
1: कि इनको कुछ होश नहीं रहती थी।
0: अच्छा। हाँ जी। आप कोई उनका गीत गुनगुना पाएंगे उनकी बनाई तर्ज कुछ याद आ रहा है क्या?
1: उनके गीत पुराने जो थे बहुत जो पॉपुलर हुए
0: जी। हाँ।
1: बड़े अच्छे अच्छे गीत थे हालांकि वो फिल्मी गीत थे।
0: आप कुछ गुनगुना सकते हैं कोई बिगड़ी बनाने वाले चुप चुप खड़े वो दूर जाने वाले कितने सारे?
1: मुझे याद है मैं तो बचपन में गाता था वो बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी

0: ये जो मुखड़ा है
1: जी,
0: ये बड़े गुलाम अली खान साहब बड़े खुश होते थे सुन के।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने खान साहब ने ठुमरी में इस मुखड़े को ले लिया था।
1: अच्छा।
0: मतलब इतने इंस्पायर हुए थे खान साहब।
1: अच्छा।
0: गुलाम अली खान साहब, उन्होंने पंडित जी को कहा, गुरु जी को, कि वाह हुसैन लाल जी क्या बनाई आपने तर्ज।
2: प्रसिद्ध सरोदवादिका जरीन शर्मा जो भगत राम जी की बहू हैं, उनके संगीत से बहुत प्रभावित हैं।
3: संगीतकारों में वो तो फिल्म इंडस्ट्री के पिलर थे
1: जी,
3: जिन्होंने आने वाली पीढ़ी को ये मार्गदर्शन दिया कि संगीत को कैसे बनाना चाहिए, फिल्म संगीत क्या है, किस दर्जे का होना चाहिए, जिसमें अमर धुने दी है, मेलेडी कभी मरती नहीं है
1: जी।
3: वो उन्होंने अपने संगीत के द्वारा साबित कर दिया है। और केवल फिल्म म्यूजिक में ही नहीं, शास्त्रीय संगीत में भी वो बहुत विद्वान थे। उन्होंने पंडित दिलीप चंद्र बेदी जैसे शास्त्रीय संगीत की तालीम हासिल की, कई शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम दिए, और शास्त्रीय संगीत में उनका फाउंडेशन इतना अच्छा था, इसीलिए वो फिल्म म्यूजिक में भी बहुत उम्दा संगीत दे पाए। उनका हर जो भी गाना देखिए, ऐसा नहीं एक दूसरे से मिलता रहता था, हर एक का अपना अंदाज होता है ना, हद के गाना होता था, मेलेडी होती थी। आज भी, आज सालों साल हो गए पर आज भी एवर ग्रीन है, जब भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है बस सुनते रहो। तो ये तो जब तक आपके अंदर मेरिट नहीं हो ये बात कभी नहीं आ सकती
1: जी,
3: क्योंकि एक आपके पास इतनी विद्वत्ता है कि आप उसको अलग अलग अंदाज में पेश कर सकते हैं।
1: हाँ।
3: जब आप किसी चीज से सीमित रहते हैं तो आप उस काबिल नहीं बनते कि आप अलग अलग चीजों का प्रयोग करें
1: जी।
3: अब जिनको राग की जानकारी हो तो वो हर अलग अलग रागों के आधारित गाना बना के, तो ये सब जानकारी होने की वजह से वो सब कर सकते हैं
1: जी। हाँ।
3: और उन्होंने हर तरह से नई नई चीजों को प्रयोग में लाया है, जैसे चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है ये देखिए, तो उसमें रिदम का पैटर्न देखिए, हारमोनियम का पीस देखिए, मटके का प्रयोग उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया
1: जी।
3: तो ये जो बातें होती है वो हमेशा सोचते थे कि आज ये गाने में हम नया क्या चीज बनाएं। उनको अपने काम से बेहद लगन थी, ये भी बहुत जरूरी है, सिर्फ आपको नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है
1: जी, हाँ, जी।
3: आपको अपने में कितनी लगन है वो लगन काम करती है
1: जी।
3: हर तरह से हर नए नए चीजों को प्रयोग में लाना और खूबसूरत अंदाज में लोगों के सामने लाना
1: जी, हाँ।
3: ताकि लोग उसको तारीफ करें और लोगों को भी अच्छा लगे। जितने महान थे उतना ही वो नम्र थे।
1: हाँ जी।
3: मतलब मैं तो ये को कभी मानना ही मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता था कि इतना विद्वान हो के इतनी नम्रता से वो बात करते थे, अपने से छोटे कलाकार को भी इतना मान देते थे जैसे उसको लगे अरे बाप रे क्या बात है।
2: सिने संगीत के पुराने सुनहरे दौर में रविवार की रात रेडियो सिलोन से एक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था, हमेशा जवां रहने वाले गीतों का कार्यक्रम। उसका शीर्षक गीत भी हुसैनलाल भगत राम जी की ही तर्ज है। सन 1944 से 1954 तक के दशक में इस सफल संगीत जोड़ी हुसैनलाल भगत राम का ही एक छत्र राज्य था। सन 1955 में बनी फिल्म अदले जहांगीर के संगीत की चमक की तो क्या बात थी। यूं भी कहें कि ये संगीत उनका अंतिम

फिल्म प्यार की जीत का वो गीत जो अमर गायक मोहम्मद रफी के यादगार गीतों में गिना जाता है, इस दिल के टुकड़े हजार हुए कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा संगीतकार हुसनलाल भगतराम की धुन का ही कमाल है।

हुसनलाल भगतराम सिने संगीत आकाश की धूम केतु के समान अपनी रोशनी चमक बिखराकर थोड़े से समय में ही चल दिए, पर दे गए ऐसी नायाब धुनी कि सिने संगीत के खजाने को जिन्होंने मालामाल कर रखा है, जिनमें से कुछ मधुर धुने गुनगुना कर हम किसी भी पल कर लेते हैं खुद को ताजा और याद कर लेते हैं ऐसी दुर्लभ धुनों के सर्जक को।

0: संगीतकार जोड़ी हुसनीलाल भगतराम पर केंद्रित ये सरगम की सितारे कार्यक्रम था जयंत जी, और इसकी हमने संपादित रिकॉर्डिंग आज श्रोताओं को सुनवाई।
1: अब और कुछ कहने को बचा नहीं है, समय भी बचा नहीं है, और अगली विविधा के लिए अपने श्रोताओं से वादा करते हैं कि कुछ और बेशकीमती रिकॉर्डिंग्स हम उनके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए श्रोताओं दीजिए आज्ञा, जयंत पात्रीकर
0: और मनीषा जैन हम दोनों ही का
1: आपको नमस्कार।
0: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता और द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में यह क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, फिर चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों के रक्तपात को रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर यह दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया गया है। दक्षिणी ट्यूनीशिया में प्रवासियों को ले जा रही एक नौका पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य लापता है। एक व्यक्ति को बचा लिया गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 88 रन बना लिए हैं। मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा।

मुकेश के आवाज में शैलेंद्र के बोल आप सुन रहे थे। आवारा फिल्म के इस गीत में संगीत शंकर जयकिशन का। कार्यक्रम यादों की महफिल आप सुन रहे हैं और आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर आसमान की सैर कराते गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस।

0: हसर जयपुरी के शब्द आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, शंकर जयकिशन की तर्ज एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के इस गीत में आपने सुनी।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।
3: कौन है जो

झुक गया आसमान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर वो गीत सुनवा रहे हैं जो करवाते हैं आसमान की सैर।

0: साधना सरगम की आवाज में आप सुन रहे थे कलाकार फिल्म से गीत इंदिवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: कुछ दिल ने कहा
2: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
3: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
3: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
1: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
3: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो रोकना ही नहीं आता है।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
3: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार
1: सुंदर सपना।

जानी मानी गायिका दीपाली सहाय बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ

लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजें सितारा फिल्म के इस गीत में आपने सुनी और इसे लिखा गुलजार ने, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: द बर्निंग ट्रेन फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप, जिसे लिखा साहिल ध्यानवी ने, राहुल देव बर्मन का संगीत, आवाजें सुषमा श्रेष्ठा और पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ साथियों की।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।

0: सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
1: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

रोजा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। या रहमान का संगीत, बीके मिश्रा के बोल, एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजें। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: कहो ना प्यार है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, सावन कुमार टांक के बोल और राजेश रोशन का संगीत।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुझे बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर ऐसे गीत आपको सुनवा रहे हैं जिनमें बातें हैं आसमान की।

कोई मिल गया। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण और चित्रा के साथ साथियों की आवाजें, इब्राहिम अश्क के बोल, राजेश रोशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल आप विविध भारती पर सुन रहे हैं।

स्वदेश फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, ए आर रहमान का संगीत। इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बता देते हैं आज की इबारत, जिसमें छुपे हैं वो शब्द जिनसे आज के इस कार्यक्रम में गीत शामिल होने वाले हैं। तो आज की इबारत है, माँ ने कहा था चंदा में रहती हैं लाखों परियां, उन परियों के बीच कभी खुद को भी देखा करते थे। सपनों की वो दुनिया जिसमें आसमान के बादल पल में मौसम बदल देते और चांद सितारे अपनी चमक से आंखों को रोशन कर देते। कभी देखी चंदा पर बैठी चरखा कातती एक बुढ़िया माई, तो कभी चंदा ने आप थाली में खाकर हमें प्याले में ही दे दी मिठाई। जितना अनोखा बचपन उतना ही अनोखा हमारा खामू का संसार, पर बड़े होकर भी कहां बदला चांद से हमारा ये प्यार। रॉकेट छोड़े यान उतारे नाप लिया जग सारा, पर चंदा की सपनीली बातों ने ही मन को संभाला। तो आप किस तरह से देखते हैं चांद को, ये हमें बताइए और साथ ही ये भी बताइए कि बचपन में कौन सी वो लोरी थी आपको जो सुनाई जाती थी सुलाने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ फिल्मी गीतों को भी लोरी के रूप में सुनाया जाता है। वहीं चांद से जुड़ी वो कौन सी बातें हैं जो आपको सबसे अच्छी लगती है, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको जाना है चांद की सैर पर, हमें बताइए। तब तक सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत और इस गीत को किस फिल्म से हमने लिया ये बताइएगा।

0: मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे
1: जाएंगे।
0: अरे मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे, वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे
1: खाएंगे।
0: दीदी को भी ले जाएंगे दूध मलाई खाएंगे।
1: अरे दीदी बच्चा थोड़ी है।
0: मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को

hello.

0: मुश्किल है हम खुद ही बन जाएंगे, लोरी के रिकॉर्ड होते बाजे पर बजवाएंगे
1: बजवाएंगे।
0: मामा जी के रॉकेट पर हम चांद के शहर को जाएंगे, वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर धूम मलाई खाएंगे। कपड़ों पर गिर जाएगा सालन, खाना कैसे खाओगे? गीत साथ न हो तो सुन लो कुछ भी मजा न पाओगे।
1: ले चलो ना दीदी को साथ।
0: मामा जी का रॉकेट है, मामा जी

0: पर हम चांद की तल को जाएंगे, वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर धूप मलाई खाएंगे।
1: दीदी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। साहिल उद्यानवी के बोल एन दत्ता का संगीत। हमने आपसे पूछा कि बचपन में कौन सी लोरी है जो आपके लिए गाई जाती थी, और चांद से जुड़ी वो कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगती है, और साथ ही ये भी पूछा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आप चांद की सैर पर जाएंगे, और बचपन का वो कौन सा सपना है जो अब भी आपकी आंखों में बसता है, ये भी हमें बताइएगा। लेकिन हमारे एक साथी ने कहा कि चांद आदिकाल से ही मानव के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इंसान ने चांद को निहारा नहीं बल्कि कविता और गीतों में भी उतारा है। चांद को देखने का सबका अपना नजरिया है। बच्चों को चांद में चरखा चलाती बुढ़िया नजर आती है तो नौजवानों को अपनी महबूबा का चेहरा नजर आता है, और तो और भूखे को चांद में नजर आती है रोटियां। एक ओर चांद को स्त्री पुरुष के प्रेम का साक्षी स्वरूप भी माना जाता है, और दूसरी ओर चांद संदेश वाहक भी बनता है। चांद को लेकर हमारी हिंदी फिल्में दूरदर्शी रही हैं। अंतरिक्ष में पहला मानव 1960 में गया था, लेकिन उससे पहले ही 1959 की फिल्म दीदी में मामा जी की रॉकेट में हम चांद को सैर तो जाएंगे ये गीत लिखा गया था। इसी तरह चांद पर मानव 1969 में पहुंचा, मगर उससे पहले 1968 में अंतरिक्ष के वासियों की कल्पना को लेकर वहां के लोग फिल्म का निर्माण किया गया था। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चंदा मामा दूर के ये गीत बचपन में बहुत बार सुन चुके हैं, और चांद पर बैठी चरखा काटती बुढ़िया माई की कहानी भी सुन चुके हैं। किसी सुंदर स्त्री के गोरे गोरे मुख को भी चांद की उपमा दी जाती है, और चांद कितना सुंदर या खूबसूरत है। ये साल 1969 से में 20 जुलाई के दिन अपोलो 11 चंद्रयान ने चांद की धरती पर उतरकर गलत साबित कर दिया कि वहां की जमीन सुंदर रहे या उबड़ खाबड़। दूर से ली गई तस्वीर देखकर महसूस हो रहा है कि जैसे किसी स्त्री के चेहरे पर निकले हुए शीतला के दाग हुए, यानी चीचक के दाग हुए, ऐसा वो कह रहे हैं। हालांकि सुंदरता को इस तरह से आंकना तो हमारी नजर में बिल्कुल सही नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ख्वाब कहें या सपना, इनकी दुनिया ही अलग होती है। ये चांद के भी कई रूप होते हैं, कभी उसमें दाग तो कभी सूत काटती बुढ़िया परियां। क्या क्या कल्पना कर लेते हैं हम चंदा मामा दूर के बचपन से आज तक सुनते हैं। पूर्णिमा का चांद तो बेहद खूबसूरत होता है, वो अपनी धवल चांदनी से हमें आह्लादित करता है। और हमारे आप जिस तरह से बातें करें कि चांद पर हमने देखा है, तो सिर्फ सूत काटती बुढ़िया माई को ही हमने चांद पर नहीं देखा, बल्कि और भी अलग अलग आकृतियां हम अक्सर देखते हैं चांद पर भी, सितारों के साथ भी। तो आपने अंतरिक्ष में या कहें आसमान में कौन कौन सी ऐसी आकृतियां देखी हैं चांद और तारों को मिलाकर, हमें बताइए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चांद बचपन और यादों के हंसी सपनों को समेटे हुए गद्यांश आज अंतरिक्ष का रुख करवाएगा। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि वो उन्होंने अलग अलग गीत लिख भेजे हैं। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि माँ ने अपने बच्चों को चंदा मामा परियां चांद सितारों की कहानियां सुनाकर बचपन में सपनों की दुनिया सजाई जो हकीकत लगी। आज भी चांद में वही सब दिखता है। ऐसा कोई नहीं जिसने चंदा मामा दूर के लोरी माँ से न सुनी हो। आज भी प्लेन आकाश में उड़ता दिखाई देने पर ऊपर देखे बिना नहीं रह पाते। शरद पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के खूबसूरत चंद्रमा को देखने की आदत है, शायद बचपन फिर याद आ जाता है। तो हम बड़े होकर भी तो इन चीजों को देख सकते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में हमें बताइए, क्योंकि बातें तो बचपन की, चांद की, सितारों की और परियों की होने वाली है, साथ ही साथ सपनों की दुनिया में भी हम खोने वाले हैं। हमारे साथी क्या लिखते हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन आप हमें ये भी बता सकते हैं कि क्या तारों की पहचान करने के लिए आपने आसमान में कभी ताक झांक की है, और क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप चांद पर जाएं। इस गीत को किस फिल्म से लिया है हमें बताइएगा।

0: बचपन हर गम से।
1: गीत गाता चल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, रविंद्र जैन की बोल, उन्हीं का संगीत। हमारे एक साथी ने लिखा कि आसमान पर चंद्रमा के साथ तारों के समूह जैसे काल पुरुष, तारामंडल, सप्तर्षि मंडल, आकाश गंगा जिसमें अनगिनत तारे हैं, आप टेलीस्कोप या साधारण आंखों से भी देख सकते हैं। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चांद पर जाना अब मुश्किल नहीं, लेकिन जाने का तो नहीं सोचा है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमारे राजस्थान में तो चांद को देखकर व्रत भी खोलती हैं सुहागन औरतें। फिल्म गीत गाता चल का ये गीत आपने सुनवाया। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की टॉर्च हूँ, ऐसा हमारे एक साथी ने लिखा। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि मलयालम में चंदा मामा दूर के जैसे ही गाना है, अंबिली अंबावा तमारा कुंबिलील इन थोड़ू, ऐसा गाना है, मेरी माँ सुनाती थी, ऐसा उनका कहना है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बचपन में हम उसे मामा कहकर पुकारते थे और फिर जब बड़े होते गए तो चांद के प्रति जो महसूस करते थे वही अक्स उसमें नजर आने लगा। फिल्मों में और कवियों ने चांद को लेकर कितना सुंदर सुंदर लिखा है। इसकी बानगी वे गीत है जिनकी ठंडक में हम अपना गम बिसरा देते हैं। चांद आसमान में टंगा सबसे सुंदर आभूषण है, समय की खाली आंखों में तैरते आकाश के तारे चांद के पैरों की पाजेब है, उसके घुंघरू हैं, इसको जिस चाहे उस नजर से देखो, ये पल में बच्चों का मामा बन जाता है, किसी बहन को उसमें अपना भाई नजर आता है, तो किसी को दूर देश में बैठा अपना प्रियतम भी नजर आता है। तो जिस तरह से अलग अलग रिश्ते होते हैं एक ही व्यक्ति के जीवन में, कुछ उसी तरह से चांद को भी हमने अलग अलग रिश्तों में बांध रखा है और अलग अलग नजरिए से उसे देखते हैं। वहीं हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि भले ही विज्ञान ने चंद्र का असली स्वरूप हमें समझा दिया है, चांद तो आज भी हमारे लिए मनोरम परिकथाओं का जनक है। बचपन का पुए पकाने वाला चंदा मामा, अपने अंक पर खरगोश, हिरण की गाड़ी और सूत कताई करती दादी माँ को संभालने वाला प्यारा इंसान है। सजा के तौर पर रोज खुद का आकार बदलने वाला नटखट बेटा है। प्रभु रामचंद्र जी ने भी बचपन में उसे पाने के लिए आतंक मचाया था। सभी के मन पर वो राज करता है। जवां दिलों के सपनों का सौदागर है। करवा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, कोजागरी पूर्णिमा, नारियली पूर्णिमा को पूजनीय आराध्य देव भी वो कहलाता है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि दादी कहती थी तारों की महफिल में सजता है एक जादुई नगर, जहां जुगनू बनकर हम भी रोज करते थे सफर। कागज की वो नावें जो बारिश के पानी में समंदर पार कर जाती, और वो कागज के हवाई जहाज जो बादलों को छूकर वापस आ जाते। कभी धूप की छांव में परछाइयों से राजा रानी की कहानी बुनते, तो

कभी रात को छत पर लेटकर हवाओं की सरसराहट में परियों के गीत सुनते। जितना मासूम वो लड़कपन, उतनी ही जादुई हमारा वो गुजरा जमाना। पर वक्त के इस दौर में भी कहां कम हुआ बचपन का वो फसाना। डिग्रियां ली, दफ्तर संभाले, नाप ले दुनिया के हर डगर, पर बचपने की उन मासूम यादों ने आज भी जिंदा रखा है दिल के अंदर का वो बेफिक्र सफर। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने लिखा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सबसे प्यारी बात इबारत की आखिरी पंक्ति है, रॉकेट और यान से चांद तक पहुंच गए मगर मन आज भी उसी चंदा में अपने बचपन वाली परियों को ढूंढता है। यही तो संगीत भी करता है, हमें बड़ा होने के बाद भी थोड़ी देर के लिए हमारा बचपन लौटा देता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि माँ परियां सपने चंदा दुनिया आसमान बादल मौसम सितारे बचपन, इन वर्ड से आज के गीत हो सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज का अगला गीत, और एक ऐसा गीत है जिससे सभी का बचपन कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। तो बताइए किसकी आवाज में है और संगीतकार कौन है।

वचन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आशा भोसले की आवाज, रवि का संगीत। यही हमने सवाल आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी ने तो ये भी बताया कि ये गीत गीता बाली पर फिल्माया गया है, और हमारे साथी ने आशा भोसले की आवाज को भी सही पहचाना। चांद वही है, आसमान भी वही है, बस उसे देखने का वो बचपन कहीं खो गया है। पहले वो दूर होकर भी अपना सा लगता है, अब पास होकर भी दिल तन्हा सा हो गया है, ऐसा हमारे एक साथी ने लिख भेजा है। हमारे एक और साथी हैं, बहुत सी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। तो एक साथी लिखते हैं कि आज विज्ञान चांद तक पहुंच गया, रॉकेट और यान उसकी सतह को छू रहे हैं, लेकिन हमारे मन का चांद आज भी उतना ही रहस्यमय और प्यारा है। शायद इसलिए चांद आसमान में जितना दूर है, हमारे दिल और हमारी यादों में उतना ही करीब है। वहीं मेरे साथी लिखते हैं कि भारत में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अंतरिक्ष दिवस का महत्व है कि इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता की याद दिलाता है। इसी दिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी

पर सुरक्षित उतरा था और इस उपलब्धि के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन की रातें जब अम्मा लोरी गाती थी, चांद के उस आंगन में परियां रोज ही आती थीं। कागज की वो कश्ती लेकर तारों पार पहुंचते थे, चंदा मामा के संग संग हम भी आसमान चढ़ जाते। कभी धूप की चादर ओढ़े, कभी छांव से आंख मिचौली, सपनों के उस मेले में थी मन की कितनी भोली झोली। आज उम्र के इस मोड़ पर भले चांद को हमने पा लिया, पर बचपन वाला जादू हमने दिल में आज भी जिंदा रख लिया। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि वो बचपन के दिन बड़ा सा खुला आंगन, खेल खिलौने और चांद, रात खुले आसमान के नीचे बिछी खाट और दादा दादी माँ की कहानियां, तब सिर्फ कुछ मांगना नहीं था, टूटते तारों से बस चांद की चमक और उसे निहारते हुए उसकी कहानियां सुनना। कोई बोल रहा वहां परियां रहती हैं तो कोई उसकी छवि में सिमटकर बैठी बूढ़ी महिला। बस हमारी कल्पनाओं के घोड़े तभी तो दौड़ लगाते थे कि सवालों का उत्तर जो भी मिलता था सच ही लगता था। आज भी चांद हमारे जीवन की यात्राएं श्रद्धा के साथ शामिल है, व्रत त्योहार उसके बिना अधूरे। पूर्णिमा के दिन दूध में भिगोए पोहे खाने का रिवाज है, आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन, जिसे उस रात चांद की चमक में रखकर ठंडा करके खाते हैं। और माँ कहती थी उस रात में जो सुई में धागा पिरो सकता है उसकी दृष्टि उतनी ही तेज होती थी। और हमने तरक्की कर ली, इस सुहाने सफर को कितना आसान बना दिया। हम उसकी जमीन पर जाने लगे, पर वो बच्चों को सुनाई गई कहानियों ने असर ऐसा छोड़ा कि आज भी धरती से चांद उतना ही हसीन लगता है। बचपन के वो दिन अब नहीं रहे, लेकिन गांव छूटा, गली मोहल्ले और खुले आसमान में सोते हुए तारों को देखना और चांद की कहानियां सुनना, अब सब बदल गया है। ऐसा हमारे साथी का कहना है कि अब सब बदलता जा रहा है। तो क्यों बदल रहा है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि अब वो सारी चीजें नहीं है जिसके बारे में हम बचपन में सोचा करते थे, क्यों? और हमारे एक और साथी ने लिख भेजा है कि गीत लिखते साथी कि बचपन की रातें ना बिजली से रोशन थी ना मोबाइल से, वो माँ की गोद और चंदा मामा की रोशनी से उजली थी। माँ लोरी गाते गाते जब परियों की कहानी सुनाती थी तो लगता था जैसे चांद पर सच में एक मामा रहता है जो बादलों की रुई से हमारे लिए खिलौने बनाता है, रात को चुपके से आंगन में रख जाता है। हम आंखें बंद करके कल्पना करते थे कि परी आएगी, उड़ते घोड़े पर बिठा कर चंदा मामा के घर ले जाएगी और माँ की लोरी और चंदा मामा की ठंडी रोशनी मिलकर हमारे लिए एक ऐसी दुनिया बना देती थी जहां न डर था न उदासी, बस परियों की हंसी और सपनों की उड़ान थी। आज बड़े होकर समझ आता है कि वो परियां कहीं और नहीं थी, वो माँ के हाथों में थी जो लोरी गाते हुए थपकी देती थी। कितनी सुंदर बात हमारे साथी ने लिखी। और हमारे एक और साथी बचपन के सुहाने दिन को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब माँ और दादी खाना खिलाते समय सुलाते समय चंदा मामा की कहानी सुनाती थी, वो बचपन का दौर हम सभी के जीवन का अनमोल दौर होता है जो कभी भी लौट कर नहीं आता, और इस कार्यक्रम के माध्यम से सुहाने दौर की यादों में खो जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें याद की। एक साथी कह रहे हैं कि चंदा मामा आरे आवा पारे आवा, दूध के कटोरी में दूध भात लेते आवा सुना करते थे हम बचपन में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं चंदा बचपन के हमारे मामा, सच चरखे वाली बुढ़िया को हम सचमुच का समझ जाते थे। और एक और साथी भी कह रहे हैं कि चांद बचपन से एक नाता है, चांद से मामा है, लेकिन चांद सिर्फ बचपन का मामा ही नहीं रहा, अपने भाई के लिए दूर देश या बॉर्डर पर बहना उसके लिए खुशी की प्रार्थना करती है। कभी करवा चौथ पर पत्नी अपने पति की लंबी आयु या प्रेम की बातें प्रेमिका अपने चांद के साथ साझा करती है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि चंदा के लिए गाना वो अलग अलग सुनते हैं। एक साथी कह रहे हैं कि आज के दिन 3 साल पहले चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुई थी और ये हमारे लिए गर्व का दिन था, हमारे देश भारत किसी से पीछे नहीं है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि चांद यूनिवर्स का एक बहुत ही खास हिस्सा है और बहुत ही खूबसूरत भी उन्हें लगता है, बहुत ही रोशन है और वो अक्सर से शाम को देखा करते हैं और सोचते हैं कि कितना खूबसूरत ये नज़र आता है, उसे एक अपना अच्छा चहेता दोस्त ये मानते हैं, ऐसा अंग्रेजी में इन्होंने लिखा जिसका हिंदी अनुवाद हमने करके आपको सुनवाया। हमारे एक और साथी ने लिखा निम्बुणिया चाम झाड़ा मागे चंद्र झोपला गबाई आज माझा पाड़साला झोप का ग येत नाही, ये मराठी लोरी हम बच्चों को सुनाते थे। और ऐसा ही हमारी और साथी ने भी इसी लोरी को याद किया है, लेकिन हमने याद क्या किया है, किसी की याद कब आती है चांद को देखकर, वो गीत आपको सुनवाते हैं। आपको पहचानना है आवाज किसकी है और फिल्म का नाम।

जख्म फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी लिख रहे हैं कि सच, बचपन में कितनी देर खुले आसमान के तले चंद्रमा को टकटकी लगा के देखना और कल्पना की दुनिया में खो जाना कितने नजदीक थे प्रकृति के, हम कितने खुशहाल थे हम। स्मार्टफोन की आज स्क्रीन में हम गिरफ्त हो चुके हैं। थोड़ी देर के लिए फोन लेकर बैठते हैं, फिर ध्यान आता है कि सिर्फ 10 मिनट्स के लिए काम था, इस फोन से 2-3 घंटे कैसे बीत गए। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में हमारी नानी हमें कहती थी कि देखो चांद के पास खरगोश है, उसके

दो बड़े बड़े कान है, कुछ समझ में नहीं आता था फिर भी ऊपर देखकर हाँ बोलते थे। वहीं हमारे एक साथी हैं, वो कह रही हैं कि मेरी उन्होंने अपनी माँ की बात याद की और लोरी बताई, लिंबची छाया ज्यादा जड़ा मधे चंद्रा झोपले, ये जो हमने एक मराठी गीत लोरी के बारे में कहा, माफ कीजिएगा उच्चारण के दोष के लिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं, जब एक बार गाने में सुने थे तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तो चांद के लिए थोड़ा मन को अच्छा नहीं लगा था। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चांद पर जाना तो हम में से हर एक ने सोचा है, मैंने भी सोचा है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं मराठी मुलगी अभी तक समझ नहीं पाई कि पुए कौन सा पकवान है जो आप थाली में खाएं और मुन्ना प्याली में। भाई पुए तो एक बहुत ही अच्छी मिठाई होती है, अगर आप, अब तो गूगल सर्च का ज़माना है, अगर गूगल सर्च करें तो आपको नज़र आ जाएगी, वो बड़ा ही मीठा सा अच्छा पकवान होता है वो, जिसे कहीं कहीं मालपुए भी कहा जाता है, अगर आप ये सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज बातें चांद की हो रही, जिसमें कभी मामा दिखते हैं, कभी प्यारा प्रियतम, कभी कितनी गजल और लोरियां इस चांद को देखकर बनाई गई हैं। इतना तो याद नहीं, लेकिन दादी बचपन में मैं चंदा मामा दिखाकर खाना खिलाती थी और गाती थी, ए चंदा मामा आरे आवा बारे आवा नदिया किनारे आवा सोने के कटोरी में दूध भात लेके आवा। और हमारे एक और साथी वो ही आगे कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को लल्ला लल्ला लोरी गाना ही सुनाया है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन तो सभी का भूला होता है, बचपन में कृष्ण भी अपनी माँ से कहते हैं कि मैया मैं तो चांद खिलौना ले हूँ, तो माँ समझाती हुई कहती कि दूध पियो, जब तुम्हारी चोटी लंबी होगी तब चांद खिलौना मिलेगा। वहीं हमारे एक और साथी चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो इस गीत को याद कर रहे हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरी बेटी जब अमेरिका गई तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की क्लास लेने जाती थी, वहां से चांद की कलाओं का प्रोजेक्ट मिला जिसमें हर दिन चांद की कला कौन सी दिशा से उगेगी और कितना हो गई कब डूबेगा ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। उसने जब क्लास में बताया कि भारत में पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है और चांद को देखकर व्रत खोला जाता है, तो प्रोफेसर और क्लास मंत्रमुग्ध हो गए और इस बात पर लंबी चर्चा हुई। मेरी बेटी ने जब मुझे ये बताया तो वो बहुत खुश थी और कहने लगी भारत की परंपराएं बहुत अच्छी है। बाद में मैंने इस पर एक कहानी भी लिखी, करवा चौथ एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में वडोदरा में प्लेनेटोरियम में बैठकर आकाश दर्शन किया था, मानो हम आकाश में चांद सितारों के बीच घूम रहे थे। क्या आपने भी इस तरह से कोई सैर किया है, चंद्रमा को देखने वाला कोई टेलीस्कोप से देखा हो आपने, या आपने इस तरह से प्लेनेटोरियम में जाकर उसका आनंद लिया हो, या अपनी ही आंखों से कभी कभी चंद्रमा को हम देखते रहते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि चांद धरती के बिल्कुल निकट आ गया है, खासतौर से जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो ऐसा लगता है। क्या आपने ऐसा कभी महसूस किया है, क्या आपने चांदनी रात में किसी खुले आसमान के नीचे वो रात बिताई है, हमें बताइए। और ये भी बताइए कि क्या सपनों में कभी आपने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि सपनों की बातें भी हो रही हैं, और सपने में कभी किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिले हैं जिसे वास्तव में आप मिलना चाहते हैं या उनसे मिलना मुमकिन नहीं हो आपके लिए अब, और आप सपनों में उनसे मुलाकात किए हों, ये हमें बताइए। और अंतरिक्ष की वो कौन सी बातें हैं जो आपको आश्चर्य से भर जाती हैं, साथ ही ये भी बताइए कि कौन सी फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं।

0: डोंग टकाटा डोंग टकाटा।
1: सपने में देखा सपना, ओ सपने में देखा सपना।
2: गोलमाल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि बचपन की दुनिया भी कितनी सुंदर होती है, आसमान में चमकता चांद, टिमटिमाते सितारे, उड़ते बादल और परियों की कहानियां मन में एक अलग ही ख्वाबों की दुनिया बसा देती है। माँ जब चंदा को दिखाकर कोई कहानी सुनाती थी तो लगता था जैसे चांद सचमुच हमारा अपना साथी है। कभी उसमें चरखा काती बुढ़िया दिखाई देती तो कभी लगता चांद परियों का घर है। समय बीता, बचपन पीछे छूटा और हम बड़े हो गए, लेकिन चांद के प्रति वो प्यार आज भी वैसा ही है। इंसान ने रॉकेट से चांद तक पहुंचकर विज्ञान की नई ऊंचाइयां छू ली, फिर भी बचपन के उस चंदा में बसे सपनों और कल्पनाओं की चमक आज भी मन को सुकून देती है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि चांद पर परियों का निवास और बादलों से पल में मौसम बदलना कल्पना और सौंदर्य का प्रतीक है, जहां प्रकृति और मनुष्य का मन दोनों मिलकर एक दिव्य लोक की रचना रचते नजर आया करते हैं। ये वास्तविकता से दूर एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां जिज्ञासा और कौतूहल से एक अजीब सी खुशी उत्पन्न हो सकती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे, जब माँ बच्चे को चांद से बहलाया करती थी और बच्चों को लोरी सुनाया करती थी चंदा मामा दूर के। बच्चों को प्यार करती, कहती चंदा है तू मेरा सूरज है तू और आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं। बच्चा जब किशोर से युवा होता तो चांद की परिकल्पनाएं बदल जाती हैं, सौंदर्य की तुलना चांद से करता है। चांद से महबूबा हूँ मेरी तो आज बात होगी चांद की, चंदा हो चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया। वहीं हमारे और साथी कहते हैं कि किशोरावस्था के किस्सों कहानियों के स्वर्णिम कालक्रम की झांकी दिखाती भारत है, जहां काल्पनिक कथानक में ही संसार बसते थे। कभी विभिन्न चंद्रकलाओं में कल्पना नजर आती तो कभी टिमटिमाते सितारों में स्वयं को नियोजित कर स्वप्न संसार में विचरण करते थे। पता ही नहीं चला कि कभी चरखा तो कभी खरगोश की झांकी दिखाती वही चंद्रकलाएं पूर्ण व्यस्कता प्राप्ति पर महबूब के सौंदर्य की झांकी में कब तब्दील हो गई। वहीं हमारे और साथी कहते हैं कि बचपन की सुरीली यादें, माँ के आंचल में छुप जाना और माँ की गोद में सर रखकर सोना, उसकी ममता भरी आवाज में लोरी सुनना आज भी याद आता है तो आंखों से अश्क बहने लगते हैं। एक माँ ही तो थी जिसकी गोद जन्नत से कम नहीं थी। आज अपने प्रोग्राम से दिलों में दस्तक आप गीतों के जरिए दी जाएगी। हमारे और साथी कह रहे कि ममता माँ और बेटा बेटी का एक अजोड़ रिश्ता, सबको निछावर करने वाली माँ और उनका प्यार दुनिया में भगवान से उच्च दर्जे का माना जाता है और बच्चों को संभालना रूठना मनाना शायद यही गीतों की इबारत है। लोरी के बिना माँ का साथ प्रेम मरते दम तक उनकी लोरी याद रहती है। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि वो क्या कहते हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि ये गीत किसकी आवाज़ में है और किसने लिखा।

हरिहरन और साधना सरगम की आवाजों में सपने फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आप चांद को सितारों को देख सकते हैं, सूरज को नहीं, इसलिए मामा कहते हैं क्योंकि बहन भाई को बहुत लाड प्यार करती है लेकिन बार बार भाई का नाम नहीं ले सकती और अपने बच्चों को जरूर याद दिलाती है। लेकिन हमारे एक साथी ने कहा कि चंदा एक ऐसा

रिश्तेदार होता है जो सबसे अच्छा होता है। तो सूरज की बात अगर हो की गई है तो हम ये भी बताना चाहेंगे कि सूरज के लिए भी एक रिश्तेदारी रखी गई है। तो किस नाम से सूरज को बुलाया जाता है? अगर चंदा मामा है तो सूरज क्या है? एक गीत में भी इसका जिक्र आता है, आप बताइए। और हमारी एक और साथी कहते हैं कि बहने चांद को अपना भाई मानती है, अक्सर छोटे भाई को प्यार करती है। बहने चंदा ही कहती है, वे छोटे भाई के रूठने पर अक्सर कहती है कि अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं ऊपर वाले भाई के पास चले जाऊंगी, रूठ जाऊंगी तो फिर नहीं आऊंगी। ऐसे में कटोरे में दूध भात लेकर माताएं भी अपने लल्ला को समझाते हुए कहती कि तू जल्दी जल्दी खा, नहीं तो ऊपर से चंदा उतर के आएगा और तेरा दूध भात गटक जाएगा। माँ की बातों पर विश्वास करके बच्चे जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं और चांद कभी उतरता नहीं है। परियों की कहानी तो अलग ही मशहूर है कि चंदा के पास तमाम परियां हैं जो बच्चों को सुलाने के काम आती हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज हम लोग भले ही फ्लैट संस्कृति में जीवन जी रहे हैं जिसके फलस्वरूप चांद तारे हमारे लिए दुर्लभ है, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए भरी दोपहरी में ही केवल चांद तारों के सफर में रहेंगे, बल्कि अपने बचपन से यौवन तक की उपलब्धियों को नाना नानी दादा दादी की कहानियों के माध्यम से परियों द्वारा भी मुखातिब होंगे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आसमान चांद सितारों का नजारा, बचपन में चांद को देखकर सपनों की दुनिया में खो जाना, आप माँ से सुनी थी कहानियां, लाखों परियां रहती थी, कई आकृतियां दिखाई देती थी, चरखा काटती बुढ़िया, चंदा ने थाली में खाई मिठाई और हमें दी प्याली में अनोखा बचपन, बड़े होकर भी चंदा से प्यार कम नहीं हुआ। और हमारे एक और साथी कहने के बचपन में चांद से लेकर मन में एक अनोखी और जादुई दुनिया बसी होती थी, तब लगता था चांद पर परियों का बसेरा, एक बुढ़िया माई चरखा काटती, समय के साथ बड़े हो गए और अंतरिक्ष में विज्ञान ने तरक्की कर ली, रॉकेट यान भी पहुंच गए, लेकिन चांद से हमारा वो पुराना और प्यारा रिश्ता आज भी वैसा ही है। चांद और बचपन, कल्पनाओं में चांद कोई दूर का ग्रह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह लगता है, बच्चे उसे खिलौना मानते हैं और उससे जुड़ी सारी कहानियों को सच मानते हैं। वाकई जब चंदा की बातें होती हैं तो आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है बच्चों की और चेहरा कितना रोशन नजर आता है। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवाते हैं हम और आप हमें ये बताइए कि इस गीत में आवाज किसकी है, फिल्म का नाम क्या है और ये आपने बताया नहीं कि सपने में आप किसी व्यक्ति से मिलना चाहते थे क्या। गोलमाल फिल्म के उस गीत की तरह ही हमने आपसे ये पूछा कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आप मुलाकात करना चाहते हैं पर वास्तविक जीवन में मुलाकात नहीं हो पाई लेकिन सपने में हुई है, वो सपने हमसे साझा कीजिए और सुनिए ये गीत।

पारसमणि फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे। हमने पूछा था कि चांद को यदि मामा कहा जाता है तो सूरज को क्या कहा जाता है। वहीं हमने तो सुना है चाचू, जिसके बारे में हमारे बहुत से साथियों ने कहा। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि सूरज संग अक्सर बेटे की तुलना या उपमा की जाती है, वंश का नाम सूरज की तरह रोशन करेगा। हमारे एक और साथी कहते हैं हम तो अपनी नन्ही परी को चांद की बहुत बातें बताते हैं, चांद दिखाते भी हैं, क्योंकि हमें तो चांद बहुत अच्छा लगता है और हमने अपनी परी से कई बार पूछा कि चांद अच्छा लगता है कि सूरज, कि दोनों, पर उसने सदा ही चांद को अच्छा कहा। हमने उसे समझाया कि सूरज भी बहुत अच्छा है, तो लगता है आपको सूरज की कहानियां भी उन्हें सुनानी पड़ेंगी, क्योंकि चांद इस तरह से सुकून देता है रातों में कि सभी को वो ज्यादा प्यारा लगने लगता है। वहीं हमारे साथी कह रहे कि बचपन और चांद का अटूट रिश्ता रहा है। श्री कृष्ण ने भी तो चांद के लिए हट किया था, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। प्राइमरी कक्षा में चांद पर कविता पाठ्यक्रम में हुआ करती थी, जिसे आज भी पोते पोती को सुनाता हूं। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। वाकई ये कविता हमें भी याद आ गई। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन की कहानियों में चांद एक आसमानी गोला नहीं था, उसकी गोद में परियां रहती थी, बुढ़िया चरखा काती थी, कभी कभी हमारे थाली में चुपके से खीर पूड़ी भी रख देता था। बड़े हुए तो रॉकेट ने चांद की दूरी नाप ली, मगर बचपन की वो दूरी आज भी वही है, जहां ख्वाब हाथ बढ़ाने से पहले ही आंखों में उतर आते थे। चांद से मोहब्बत उसकी रोशनी से कम और उन कहानियों से ज्यादा है जो माँ ने उसकी चांदनी में हमारे भीतर रख दी थी। उम्र गुजर गई, चांद वही रहा, बस हम कहानी से निकलकर जिंदगी में आ गए। हमारे एक साथी ने कहा कि सपने में वो श्रीदेवी और राहुल द्रविड़ से मिलना चाहते थे, अभी तक मिल नहीं पाए हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि सूरज को दादा भी कहते हैं, और हमारे एक साथी ने कहा कि सूरज को चाचा चाचू मुन्ना भाई MBBS में कहा गया था इस गीत में। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भौतिक प्रगति और तार्किकता के बावजूद इंसान को अब मानसिक सुकून और ठहराव अपनी कल्पनाओं, जड़ों और बचपन की मासूम भावनाओं में ही मिलता है। विज्ञान ने चांद पर रॉकेट और यान भले उतार दिए, लेकिन इंसान के भीतर का वो भावुक बच्चा आज भी चांद की सपनीली कहानियों में ही सुकून तलाशता है। लोक कथाओं के जादू और आधुनिक वैज्ञानिक यथार्थ के बीच के भावनात्मक संतुलन को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। हमारे एक और साथी कहने की चंद्रमा ने सदियों से कवियों को शब्द दिए, प्रेमियों को सपने दिए और अकेले लोगों को एक मौन हमसफर दिया। उसकी शीतल रोशनी में जैसे हर दुख थोड़ा हल्का हो जाता है और हर याद थोड़ी और खूबसूरत लगने लगती है। वो दूर होकर भी अपना सा लगता है, शायद इसलिए कि चंद्रमा हमें सिखाता है अंधेरी रातों में भी उजाला बिखेरना संभव है। उसकी चांदनी उम्मीद का वो संदेश है जो हर रात हमें ये विश्वास दिलाती कि अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश का रास्ता हमेशा बना रहता है। तो ये सारी बातें आपने भेजी और हमें ये भी बताई कि क्या आपने कभी सफर किया है चांद के साथ। जब हम ट्रेन या बस ऐसे जाते हैं और रातों में जाते हैं तो कई बार हमारी नजर चांद पर पड़ जाती है और ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ ही सफर कर रहा है, तो वो याद भी हमसे साझा कीजिए और बताइए कि जो गीत सुनवा रहे हैं किस फिल्म का है और संगीत किसका है।

अब्दुल्ला फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, राहुल देव बर्मन की तर्ज और आनंद बख्शी के बोल। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। और हमारे साथ ही बार बार कह रहे हैं कि सूरज को चाचू नहीं बल्कि दादा या पिता की उपाधि मिली है, क्योंकि उसे सभी ग्रहों का पिता भी कहा जाता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि सूरज के लिए कौन सा ये रिश्ता तय किया गया है, एक तरह से हम कह सकते हैं। और इस तरह से चांद सितारों की जो बातें होती हैं, सपनीली दुनिया होती है, कभी कभी कल्पना लोक में जीना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है और एक तरह से मन को सुकून देता है ये। तो इस तरह से आप भी खुश रहें, आबाद रहें। और आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत बदलते रिश्ते फिल्म से लिया है। आवाज है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के। अनजान के बोलों को संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: बोल थे मजू सुल्तानपुरी के संगीत आर डी बर्मन का। किशोर कुमार का ये गाया गीत हमने लिया था मेरे जीवन साथी फिल्म से। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत।

0: बन सकता है।
1: बातचीत में देश की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उज्जैन के पवासा में आयोजित रक्षाबंधन महोत्सव में सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बहनों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में साख लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में आज ही के दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग हुई थी। उन्होंने देश के वैज्ञानिकों पर गर्व जताया। राजधानी भोपाल में कल यानी सोमवार से 10 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। इसके बाद शहर में कुल 30 ई बसें 3 रूट पर चलेंगी और यात्रियों को हर 10 से 15 मिनट में बस उपलब्ध होगी। इससे कोला रोड, बावड़ेगा कला, बैरागढ़, एमपीनगर और आईएसबीटी के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सभी बसें एमपीनगर से होकर गुजरेंगी। रोजाना करीब 12,000 यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा। प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ी सारांश जैन ने आज श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया है। डाक विभाग में कार्यरत सारांश के टेस्ट डेब्यू पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह टेस्ट कैप सारांश की कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम है। सिंधिया ने उनके सफल टेस्ट करियर के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को यह मैच जीतना होगा। पूल ई का यह मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। प्रदेश में बारिश का दौर फिर तेज होने वाला है। मौसम विभाग ने रविवार को 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पार्डोना, सिवनी, बालाघाट, डिंडौरी और सीधी में भारी बारिश के आसार हैं। भोपाल में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 23 से 26 अगस्त के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है। आगर मालवा में बाबा बैजनाथ महादेव की शाही सवारी कल निकाली जाएगी। श्रावण के अंतिम सोमवार को बाबा बैजनाथ चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा में खाद्य सुरक्षा टीम ने खाद्य प्रतिष्ठानों से घी, दूध, पनीर, रवा, चीज और मिठाइयों सहित 10 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भोपाल भेजा गया है। जबलपुर दमोह मार्ग पर बीती रात एक निजी बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज दो दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के

0: मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री चांदना ने बताया कि उनकी कंपनी ने 3 कारखाने स्थापित किए हैं। इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में 3rd राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक वीएन राव भी उपस्थित थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: देश आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। हर वर्ष 23 अगस्त को यह दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और साथ ही विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में अपनी जगह बनाई। संचार और मौसम पूर्वानुमान से लेकर नेविगेशन और आपदा प्रबंधन तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लोगों के दैनिक जीवन में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक इस समय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में चल रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों का स्वागत किया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच खेलों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। बैठक के अंत में साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है।

0: डॉक्टर मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की दो दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 27 अगस्त तक जापान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका का दौरा करेंगे। उनके साथ भारत का एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी जापान जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान के विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी संबंधों की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य बीमा जरूरी हैं। नौसेना का प्रशिक्षण जहाज सुदर्शनी और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य और प्रशिक्षु पुर्तगाल की नौसेना और भारतीय समुदाय के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। ये INS सुदर्शनी का 15वां पुर्तगाल दौरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में भी दिन में ऐसे ही मौसम की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार बारिश से प्रमुख नदियां उफान पर हैं।
1: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के नये क्षेत्र के कारण उड़ीसा के कई हिस्सों में फिर से भारी बारिश हो रही है। IMD ने आज केंदुझर, मयूरभंज, रायगढ़, कोरापुट और कलाहंडी में बारिश से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। कलाहंडी के थुआमूल रामपुर में पिछले 24 घंटे में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। लगातार बारिश के बीच बंसाधारा और सालंदी जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाके अभी भी जोखिम की स्थिति में है। 7 जिलों में हालिया बाढ़ से लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और राहत व बहाली का काम जारी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्धपोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। श्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार आंतरिक सुरक्षा के मामले में पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि GRSE ने हाल के समय में 100 से अधिक पोत उपलब्ध कराए हैं। GRSE की परियोजनाएं शिपयार्ड की विनिर्माण क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। इन परियोजनाओं से समुद्री बलों और अन्य रक्षा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यंत्र इंडिया लिमिटेड के मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर में 750 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 2 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे स्वदेशी धातुकर्म और रक्षा विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। चौथे चरण की औद्योगिक क्रांति और ऊर्जा कुशल तकनीकों से लैस ये दोनों केंद्र उच्च स्तर के विनिर्माण को बढ़ावा देंगे। आयात पर निर्भरता कम होगी और रक्षा, रेलवे तथा रणनीतिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमेरिका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर अमेरिकी इलाका बताए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमेरिका अपना रुख नहीं बदलता, हॉर्मुज बंद रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने हॉर्मुज पर अमरीकी दावों को

0: खारिज करते हुए श्री ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य और अमरीका के बीच की दूरी 7000 मील से भी अधिक है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारियां कर रहा है। ईरान ने कहा है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों तथा खासकर चीन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को स्थगित किए जाने और कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की इच्छा एक बार फिर व्यक्त करने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद और गहरा गया है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा पर आरोप लगाया कि वो अमेरिकी किसानों पर काफी अधिक शुल्क लगा रहा है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका की मांग को अनुचित और व्यापार समझौते की अनदेखी करने वाली है। श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा अपने कामगारों, किसानों, परिवारों और कारोबार की रक्षा के लिए अमेरिका जितना ही शुल्क लगाएगा। प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट किया कि कनाडा स्वतंत्र रूप से व्यापार समझौता वार्ता करेगा और इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से पानी की पाइप फट गई और कुछ इलाकों में यातायात सेवा पर भी असर पड़ा। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। और अब कुछ खेल खबरें। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 184 रन बना लिए हैं। इस मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। भारत ने पहला मुकाबला 165 रन से जीता था। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ है अर्जुन।
2: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी और 51 रन से हरा दिया है। दोनों टीम श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर रही। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर और भारत चौथे स्थान पर है। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का ये मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं।
1: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक प्रतिबंध अभियान में शामिल न हो। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

शागिर्द फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री सायरा बानो का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर हम उन्हीं की अभिनीत फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं। आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, झुक गया आसमां फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: सुनहरे खाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़ी पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के
0: संघर्ष की डाल।

जानी मानी गायिका दीपाली सहाय बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ

पड़ोसन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। राजेंद्र कृष्ण के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल आपने सुने तर्ज शंकर जयकिशन की फिल्म जंगली।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुझे बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, जिसमें आज अभिनेत्री सायरा बानो अभिनीत फिल्मों से गीत।

मंगेशकर की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, उषा खन्ना का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर सदाबहार नखमे। आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में ये गीत, दीवाना फिल्म का ये गीत हसरत जयपुरी ने लिखा, शंकर जयकिशन।

0: बनी चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम की शुरुआत में सुन लेते हैं कार्यक्रम में खत भेजने के नियम।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहेगी,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा और कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं मल्हार फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें इस गीत को सुन ले हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि किसने इसकी फरमाइश भेजी है। इस गीत को लिखा कैफ इरफानी ने, रोशन का संगीत। सुनिए मल्हार फिल्म से ये गीत।

मल्हार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, कैफ़ इरफानी की बोल, रोशन का संगीत। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता गुजरात से अनिल देसाई, परिमल, बिंदी दत्त और देसाई परिवार, मोरटक्का माफी, खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, शुभम, देवी, विशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिर और नूर, चलाला काठियाड़ से सुलेमान भाई दल, खलील दल, महबूब दल, इकबाल दल, कटारिया कच्छ से मंतिक राधाणी, डॉक्टर निशांत राधाणी, कबीर राधाणी और रमजान राधाणी। आप सभी की पसंद पर आपने सुना मल्हार फिल्म का ये गीत। और कार्यक्रम का अगला गीत है धर्मात्मा फिल्म से, और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हेवर खेड़ तेल्हारा अकोला महाराष्ट्र से आप हैं, विनोद कुमार अढ़िया, भारती अढ़िया, पारस पायल, श्वेता उर्वीबेन अढ़िया, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, गुमारेता नगर उपारे से अनिल कवलाले, सुषमा और सबीहा, छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर एस, अश्विन कुमार, गणेश राम, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र मखीजा, काफिर भाई, सविता मखीजा, बेबी स्वाति और इनका पूरा परिवार सुनना चाहता है धर्मात्मा फिल्म का ही गीत। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं मुकेश और कंचन की।

धर्मात्मा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे विविध भारती पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत और हम सुनवा रहे हैं आपकी ही पसंद पर आधारित गीत। और अगला गीत मेरा गांव मेरा देश फिल्म से और इस गीत की फरमाइश हमें आई है प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर से वी पूनम नायडू साजन के मास्टर शिवांशु ऋषु अक्षय और अभिषेक नायडू अगनपुर धर्मपुरा बस्तर से डी वनिता नायडू डी कृष्णराव नायडू अमृता और संतोष मालीवेस बीड़ शहर से किशोर उबाले मंगला उबाले कोरदा लदन से लवन से शिव कुमारी वर्मा हेमलता वर्मा वेद किरण वर्मा और जुनातार फैल अकोला से राजेश वाघमारे प्रिया वाघमारे रोहन वाघमारे और नेहा वाघमारे मराठवाड़ा नांदेड़ से वामन मगरे और उनका पूरा परिवार आप सभी के पसंद पर सुनवा रहे हैं मेरा गांव मेरा देश फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज और बोल आनंद बख्शी के। तो सुनिए आपकी ही पसंद पर ये गीत।

0: मुझे कहता है।
1: मेरा गांव मेरा देश, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और ये गीत हमने आपकी पसंद पर सुनवाया और आपको हमने ये बताया भी किन किन पसंद पर ये गीत सुनवाया जा रहा है। वैसे हमारे साथी मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए अपनी फरमाइशें भेजते रहते हैं।

और अब हम आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो है कि चंबल की कसम फिल्म से। और इस गीत को फरमाइश की है छत्तीसगढ़ दुर्ग शीतला नगर से अर्पा पैरी, पार्वती, राधा, शिवचंद्राकर, भगवान चंद्राकर, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मधु आयाम और प्रतीक कुमार, ग्राम खकल कोंच जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर और इनका परिवार, गर्ल्स रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू नीलू विशालराज और वंशराज, बर्गीनगर जबलपुर से रविन्द्र गड़े, सुभाष दिगंबर, राजेश गड़े, शिवम शुभांग और सृष्टि गड़े। आप सभी की पसंद पर सुनिए चंबल की कसम फिल्म से ये गीत।

चंबल की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, साहिल उद्यानवी के बोल खय्याम का संगीत। विविध भारती पर समय आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत कार्यक्रम, और अगला पसंदीदा गीत जो हम सुनवाने वाले हैं वो है फिल्म प्यार का मौसम। इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, और फरमाइश किसने की है ये आपको बताएंगे इस गीत के बाद।

प्यार का मौसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इसे पसंद किया था एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा, कार्तिक भाऊ, परी, संजना मराठा और मालती चौधरी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, ललिता नारायण खर्चे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू, सन्नी, कोमल यादव, सेक्टर 67 मोहाली छत्तीसगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एक एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले शेख, शमा परवीन, अल कमर बेगम, अफसाना बेगम, महजबीन शेख और मिर्जा नसरीन बेगम। आप सभी के पसंद पर ये गीत हमने आपको सुनवाया। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं शरीफ बदमाश फिल्म का। ये गीत पसंद किया है विट्ठल मंदिर चौक बीड़ शहर से प्रकाश पगारिया,

पराग पगारिया, संतोष पगारिया, केशव पटेल, सांगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हियांश कुमार चंदन, और साथ ही भर्री टोला डोंडी से नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू मुरली गौतम, और आप हैं इस्लामापुर से, इस्लामपुर से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर। आप सभी के पसंद पर सुनिए शरीफ बदमाश फिल्म का ये गीत।

नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कश्मीरी नाटक गिली तुरी का हिंदी रूपांतर दो फूल जूही के। लेखन एवं अनुवाद किया है हृदय कौल भारती ने। निर्देशन है दीनानाथ।

0: के मानी लड़का, वाई के मानी लड़का, वाई के मानी खिलौना, वाई के मानी, वाई के मानी।
1: अरे ये ट्रक तो हमारी सहन के सामने ही रुका।
0: बाप रे, कितना सामान भरा है इसमें। वाई के मानी खिलौना, वाई के मानी खिलौना, वाई के मानी।
1: कितना बड़ा है ये ट्रक, कैसी कैसी चीजें हैं इसमें।
0: संदूक, बिस्तर, सोफा, मेज
1: और वो साइकिल, कैसी प्यारी छोटी साइकिल। इसकी तो सवारी करनी चाहिए।
0: ट्रन ट्रन ट्रन, बच के जरा बच के भाई साहब।
1: मैं नीचे जाकर इसको दिखाता हूँ।
0: पर नहीं, फिर मम्मी डांटनी है तो कभी पड़ता भी है। टी ओ वाई टॉय,
1: तो क्या हुआ, मैं नीचे जाकर ही पढ़ूंगा।
0: बी ओ

0: boy, like a money cannot be a white boy.
1: अरे धीरे धीरे उतारो भाई, जरा सावधानी से, इसमें काकरी है।
2: अरे चिंता न करो साहब, हम तो फूल की तरह सामान उतारेंगे।
0: बी ओ वाई बॉय, बॉय के माने लड़का, लड़का।
1: अरे तो क्या करते हो भाई, जरा देखना छूट ना जाए हाथ से।
2: आहे को छूटेगा साहब, रस्सी से जो बंधा है।
0: बॉय के माने खिलौना, टॉय के माने लड़का, साइकिल तो नीचे उतार ही नहीं रहे हैं। B-O-Y toy, toy ke mani ladka, T-O-Y boy, boy ke mani khilona. Tu kis baat pe hansti hai re?
3: T-O-Y boy.
0: T-O-Y boy hota hai kya?
3: Nahi, par tum to yahi pad rahe the. T-O-Y
0: toy hota hai, toy ke mani khilona. Jaise mujhe nahi malum.
3: Phir kyun keh rahe the?
0: Main cycle ko dekh raha tha.
3: Cycle? कौन सी साइकिल?
0: जो इस ट्रक में रखी है, ये लोग उतार ही नहीं रहे हैं उसे।
3: ये किसकी साइकिल है?
0: पता नहीं।
3: तुम्हें चलानी आती है?
0: नहीं, मेरे पास साइकिल ही नहीं।
3: मुझे चलानी आती है?
0: मुझे सिखाएगी?
3: ये साइकिल मेरी ही है।
0: मुझे इस पर बैठने देगी?
3: तुम्हारा घर कहाँ है?
0: वो सामने। तुम्हारा?
3: वो वाला जहाँ ये सामान ले जाया जा रहा है ना, ये हमारा अपना घर नहीं है।
0: तो
3: पापा की बदली हुई है, तभी हम लोग यहाँ आए हैं। पापा वापस बदली करवा लेंगे तो हम फिर अपने घर वापस जाएंगे।
0: कब?
3: पता नहीं।
0: मुझे अपनी साइकिल पर बैठने देगी?
3: ना पापा ना, मुझे नहीं आता दूसरों को बिठाना। मैं गिर जाती हूँ ऐसे।
0: तो
3: मैं तुम्हें सिखा दूंगी, फिर हम दोनों सवारी किया करेंगे, है ना?
0: तब मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने हैं। टी ओ वाई टॉय,
3: बी

0: मैं तुम्हें ही देख रहा था।
1: झूठ।
0: और नहीं तो क्या, मैंने आज स्कूल से आते ही सारा होमवर्क कर लिया।
1: तो फिर बेल सुनते ही बाहर क्यों नहीं आए?
0: मम्मी होमवर्क क्यों देख रही थी, आता कैसे?
1: तुम्हारी मम्मी भी होमवर्क देखती है क्या?
0: हाँ, तुम्हारी?
1: मेरी मम्मी भी देखती है।
0: मेरी मम्मी को पढ़ना आता ही नहीं, पर होमवर्क फिर भी देखती है।
1: मेरी मम्मी तो फर फर फर फर सारा कुछ पढ़ लेती है। मैं झूठ कहती हूँ, उसे भी पढ़ना नहीं आता। सीखोगे साइकिल चलाना?
0: हाँ, मैं समझाता, तुम भूल ही गई होगी।
1: पापा की तरह, जैसे मैं भी कोई पापा हूँ।
0: वो क्या होता है?
1: जब मैं पापा से कुछ लाने के लिए कहती हूँ ना, शाम को आकर वो कहते हैं, अरे बेटा मैं तो भूल ही गया।
0: मेरी डैडी तो मेरी कोई चीज नहीं भूलते।
2: झूठ, वो भी इसी तरह भूलते हैं।
1: नहीं तो क्या पापा भूल जाते हैं? मम्मी की तो हर चीज उन्हें याद रहती है।
0: नहीं तो वो झगड़ा करेंगी ना।
1: तुम्हें कैसे मालूम?
0: मुझे मालूम है, मेरे मम्मी डैडी भी झगड़ते हैं ना।
1: हाँ, मेरे भी।
0: मैं उस समय नींद का बहाना करता हूँ
1: और मैं साइकिल लेके गली में निकल जाती हूँ।
0: मुझे सिखाएगी साइकिल चलाना?
1: तुम सीख ही नहीं रहे हो तो चलो उठो, पहले इस पर पैर रखो। ना ना, नहीं नहीं, ये पैर नहीं बाबा, वो पैर रखो।
0: अच्छा,
1: हाँ अब बैठो सीट पर। ओफो, नहीं, पहले एक हाथ से इस दीवार का सहारा लो।
0: अच्छा, ले लिया।
1: हाँ बस, अभी हाथ नहीं हटाना। अच्छा, जब मैं कहूंगी तब छोड़ना, ठीक है?
0: अच्छा अच्छा, छोड़ो।
1: नहीं नहीं, अभी नहीं, अब सामने देखो, ऐसे
0: ऐसे।
1: तुम क्या डरते हो, डरपोक कहीं के?
0: नहीं तो
2: मैं डरता हूँ, मुझे कहीं चोट लगी तो मम्मी मारेगी। वो इसकी मम्मी के साथ झगड़ा करेगी, इसको भी मारेगी, फिर ये मेरे साथ कभी नहीं खेलेगी।
0: अब धक्का दो ना।
1: हैंडल ठीक से थामना।
0: अच्छा,
1: देखो मैं अब धक्का देने जा रही हूँ, मैं तब कहूंगी गो, ठीक है?
0: हाँ।

0: लगी तो नहीं?
1: नहीं।
0: अब मैं एक बार चलाकर दिखा दूंगी, तुम ध्यान से देख लेना, ठीक है?
1: अच्छा।
0: देखो ऐसे, फिर घुमाओ ऐसे, फिर ऐसे, देखा?
1: हाँ, तुमने किससे सीखी?
0: खुद ही सीखी।
1: नहीं।
0: और नहीं तो क्या?
2: झूठ, मुझे तो मामा जी ने सिखाई।
0: मैं एक बार भी नहीं गिरी थी। जानते हो ये साइकिल मुझे किसने लाके दी है?
1: पापा ने।
0: नहीं।
1: तो फिर?
0: तुम ही बताओ।
1: मुझे क्या मालूम?
0: मामा जी ने।
1: पापा मम्मी ने चलाने दी।
0: और क्या, मैं इस पर बैठकर बाजार जाती हूँ, सब्जी लाती हूँ, पापा के लिए सिगरेट लाती हूँ, मम्मी पापा मुझे कुछ भी नहीं कहते।
1: एक दिन मैंने भी सिगरेट पी थी।
0: झूठ।
1: झूठ क्यों? चोरी चोरी पी थी।
0: फिर?
1: शाम को डैडी ने सिगरेट ढूंढी, मम्मी ने भी ढूंढी।
0: फिर क्या हुआ?
1: फिर मम्मी ने थक कर कहा, वो चूहे ले गए होंगे।
0: चूहे?
1: फिर उन्होंने झगड़ा किया। मैंने झूठ मूठ नींद का बहाना किया। अब डैडी सिगरेट अपनी अलमारी में बंद रखते हैं ताकि
0: चूहे न ले जाए। तुम चूहे।
1: जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, मैं भी सिगरेट पीऊंगा डैडी की तरह।
0: फिर तुम्हारी सिगरेट भी चूहा ले जाएगा।

0: मेरे पास भी ऐसी ही कार थी। उसमें जब चाबी भरते थे वो दीवार के पास पहुंचकर खुद ही मुड़ जाया करती थी।
1: झूठ कहा मैंने, पापा कहते हैं ऐसी चीजें लाने से पैसे बर्बाद हो जाते हैं।
0: मेरी एक सहेली ने उसे तोड़ दिया।
2: तुमने उसे कुछ नहीं कहा?
0: सहेली को क्या कहती?
2: मैं होता तो झगड़ा करता, काहे की तोड़ा मेरा
0: बियो
2: नहीं बियो भाई
0: बियो
2: बियो जानती हो हमारे यहाँ बुलबुले बच्चे दिए हैं।
0: है कहाँ?
2: बाग में पेड़ पर। चल दिखाता हूँ, चल
0: चल आ जा
3: जल्दी चलो
2: आ जाओ
0: अगर हमारे भी पंख होते
2: आहा तब हम भी उड़ते।
0: ना बस के लिए खड़ा रहना पड़ता, ना साइकिल सीखनी पड़ती,
2: ना एक ही उड़ान में स्कूल पहुंच जाता, फिर नाना जी के पास, फिर घर।
0: तब हम खिड़की से अंदर आते
2: चिड़ियों की तरह। मुझे स्कूल की बस बहुत बुरी लगती है।
0: क्यों?
2: और नहीं तो क्या, हम उसमें समा ही नहीं पाते। मैडम सीट पर बैठती है, हम खड़े रहते हैं। पीछे से कंडक्टर अंकल कहते हैं शाबाश आगे चलो आगे चलो, और आगे से मैडम डांटती है पीछे चलो पीछे चलो। परसों मुझे पीटी सर ने मारा।
0: क्यों, उसे क्या हुआ?
2: हम बस में बैठे थे, ड्राइवर ने एकदम से बस रोकी, मैडम सीट पर बैठी थी, मैं गिर पड़ा। मैडम के होठों का रंग मेरी कमीज पे लग गया।
0: फिर
2: स्कूल पहुंचकर पीटी सर ने पकड़ा और कहा शर्ट पर दाग क्यों है बैड बॉय, फिर मारा। ना मैडम को कुछ कहा ना ड्राइवर से।
0: तुमने पीटी सर से कहा नहीं?
2: मैं क्या कहता, वो उस मैडम को कुछ कहते ही नहीं, बस उसे ही देख कर हंसते। अरे तुम यहाँ बैठी हो, पता है क्या हुआ?
0: क्या?
2: वो थे ना हमारे पेड़ पर बुलबुल के दो बच्चे।
0: हाँ थे तो?
2: वो वहाँ है ही नहीं, जाने कहाँ भाग गए, वहाँ उनके मम्मी डैडी अब अकेले हैं।
0: उन्होंने शादी की होगी।
2: शादी? तुम्हें कैसे पता?
0: अरे तुम्हें नहीं मालूम, शादी के बाद ही अलग हो जाते हैं।
2: अलग? अलग क्या?

0: अलग भी नहीं मालूम, नहीं मालूम बी ओ आई टॉय अलग होता है दूसरे घर में रहना, अलग से खाना पकाना और और और बस।
1: तुम्हें कैसे पता?
0: बस है पता, मेरे अंकल भी तो शादी के बाद अलग रहने लगे। पहले उन्होंने पापा और मम्मी के साथ खूब झगड़ा किया, फिर अलग घर में रहने लगे। मम्मी बेचारी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, एक बार भी झगड़ा नहीं किया।
2: झूठ कहती हूँ मैं, मम्मी ने बहुत झगड़ा किया, गालियाँ दी, बहुत गालियाँ, फिर खींच कर माथे पर गड़वी मारी। आंटी बेचारी रो रही थी, मुझे तो अंकल बहुत अच्छे लगते हैं।
0: मेरी मम्मी बहुत अच्छी है।
1: तुम भी क्या शादी करने के बाद अलग रहोगी? हंसते किस बात पर हो?
0: तुम्हें इतना भी नहीं मालूम, अलग लड़कियां नहीं होती, लड़के हो जाते हैं। अंकल क्या कोई लड़के थे?
1: लड़कियां क्यों नहीं अलग होती?
0: पता नहीं, डरती होंगी शायद। नहीं नहीं, शर्माती होंगी। मम्मी भी कहती है ना, लड़कियों को शर्माना चाहिए।
1: तुम भी क्या शादी करने के बाद अलग रहोगी?
0: और तुम?
1: ना, नहीं, मुझे तो डर लगता है अकेले में।
0: डरपोक डरपोक
1: खचर मिली नहीं,
0: नहीं तुम तो

0: तुमने झूठ बोला होगा। मम्मी कहती हैं जो झूठ बोलता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता।
1: चल चल, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जानती भी हो झूठ बोलना पाप है।
0: तब तो तुम्हें पाप लग गया। कल तुमने झूठ बोला ना, कहा था मम्मी डैडी के साथ को घूमने जाना है, देर से लौटूंगा।
1: कहा था तो क्या हुआ, नहीं गया?
0: पाप लगा कि नहीं?
1: क्यों, मम्मी डैडी तो गए,
0: तुम क्यों नहीं गए?
1: मुझे उनके साथ घूमने में मजा नहीं आता। झूठ कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे अपने साथ लिया ही नहीं। पहले मम्मी ने डांटा, फिर डैडी ने चॉकलेट लाके दी, कहा हम अभी लौटेंगे। झूठ कहा डैडी ने, उन्हें भी तो पाप लगेगा झूठ बोलकर। वो रास्ते में चलते चलते जाने क्या बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं। डैडी को कोई दोस्त मिलते हैं तो ऑफिस की बातें करते हैं, बीमारियों की बातें करते हैं। मम्मी को कोई सहेली मिले तो बस वो यही पूछती है, बड़ी कमजोर लग रही हो, घर में सब ठीक ठाक है ना? मैं उनकी उंगली थामे खड़ा खड़ा थक जाता हूँ। उनका हाथ खींचता हूँ तो उंगली दबाकर तोड़ देती है। मम्मी बस चिल्लाती ही रहती है, किनारे किनारे बेटे, किनारे किनारे चल। जैसे मुझे नहीं मालूम, सड़क पर किनारे किनारे चलना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा अकेले घूमने जाया करूंगा।
0: मैं भी।
1: तुम कैसे जाओगी, लड़कियां थोड़ी ही घूमने जाती हैं।
0: तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगी।
1: हाँ, हम बहुत दूर घूमने जाया करेंगे, टैक्सी में।
0: हम रास्ते में किसी से बातें नहीं किया करेंगे।
1: हाँ, हम बस आपस में ही बातें करेंगे। मैं सिगरेट पीता रहूंगा जैसे डैडी पीते हैं।
0: जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं आया करूंगी।
1: क्यों,
0: और क्या, मुझे सिगरेट के धुएं से खांसी आती है।
1: अच्छा, मैं धुआं दूसरी ओर फेंक दिया करूंगा ऐसे।
0: फिर एक दिन तुम्हारी सिगरेट भी चुरा ले जाएगा।
1: खेलेंगे हमारे बाग में, वहाँ कोई नहीं है ना?
0: तुम्हारे सभी खिलौने तो अंदर कमरे में बंद होंगे।
1: नहीं तो, मैंने वो पहले ही निकाल रखे हैं।
0: मम्मी ने कुछ नहीं कहा?
1: जब उन्हें घूमने जाना होता है वो मुझे कुछ नहीं कहती।
0: तो चलो फिर।
1: चलो चलो। देखो ये मेरी कार है, गाड़ी है।
0: मुझे तुम्हारी ये कार बहुत अच्छी लगती है, ये चाबी के बिना ही चलती है ना, सचमुच की कार की तरह।
1: अगर ये सचमुच की कार ही होती
0: तब तुम्हारे मम्मी डैडी इसी में घूमने जाते।
1: जब मैं देता तभी ना, हम खुद इसमें घूमने जाते।
0: हाँ, कार मैं चलाती।
1: अरे, लड़कियाँ भी कभी कार चलाती है क्या?
0: क्यों नहीं चलाती, मैंने क्या पिक्चर में नहीं देखा है?
1: तब स्कूल की बस ड्राइवर क्यों चलाते हैं?
0: पता नहीं, बस बड़ी होती है ना

0: इसलिए
1: क्या दादू को सींचेंगे?
0: वो क्या होता है?
1: सींचना भी नहीं मालूम। इसे नहीं मालूम सींचना क्या होता है।
0: तो क्या हुआ, तुम्हें मालूम था क्या अलग होना क्या होता है?
1: सींचना होता है पानी पिलाना, पौधों को पानी पिलाना, समझी?
0: मुझे आएगा क्या पानी पिलाना?
1: क्यों नहीं आएगा, मैं सिखा दूंगा। चलो बाहर
0: चलो। अरे देखो तो, पानी किस तरह इस लकीर में से अंदर अंदर गायब हो जाता है।
1: इस पौधे को बहुत प्यास लगी होगी।
0: तुम्हें कैसे मालूम?
1: और क्या, हमें जब बहुत प्यास लगती है हम बहुत सारा पानी नहीं पीते क्या? अरे ये बुलबुल तो मर गई।
0: कहाँ?
1: यहाँ तो आओ।
0: अरे ये तो वही बुलबुल है।
1: हाँ वही, जिससे वो अलग हो गई थी अलग मकान में।
0: अगर वो किसी दिन लौट आएंगे, यहाँ तो ये होंगे ही नहीं, उन्हें कौन बताएगा?
1: अब क्या करें इसका?
0: मैं बताती हूँ, मुझे मालूम है।
1: तुम्हें कैसे मालूम? झूठी कही की।
0: सच, मुझे मालूम है। जब दादी माँ मरी थी, डैडी की मम्मी ना सब बहुत रोए थे, मम्मी भी रोई थी।
2: झूठ कहती हूँ मैं, वो तो बस ट्रंकों अलमारियों में कुछ ढूंढ रही थी। झूठ मूठी उस समय रोती थी जब बाहर से कोई आता था, फिर उसने अंकल के साथ बहुत झगड़ा किया।
0: मुझे दादी माँ के पास जाने ही नहीं दिया था किसी ने। मैंने दालान में से चोरी चोरी झांक कर देखा, उसे सफेद कपड़े में लपेटा था उन्होंने।
1: चल हम भी इसे सफेद कपड़े में लपेटेंगे।
0: कहाँ से लाएंगे कपड़ा?
1: हाँ वो लाएंगे कहाँ से? तुम ठहरो, मैं अभी आया।
0: तुम कहाँ जा रहे हो?
1: बस मैं अभी आया। ये रहा सफेद कपड़ा।
0: रुमाल?
1: हाँ डैडी का है, मम्मी ने सुखाने के लिए डाला था।
0: डैडी मारेंगे।
1: वो कुछ नहीं कहेंगे।
0: झूठ।
1: कहा ना, जिस दिन उन्हें घूमने जाना होता है उस दिन वो मुझे कुछ नहीं कहते। अगर मैं बरामदे का बल्ब भी तोड़ दूं, वो आज मुझे कुछ नहीं कहेंगे।
0: क्यों?
1: वो बहुत देर से लौटते हैं ना।
0: अच्छा लपेटो फिर।
1: ना तुम लपेटो।
0: क्यों, तुम क्यों नहीं लपेटोगे?
1: मुझे नहीं पता कैसे लपेटते हैं, मैंने नहीं देखा ना, तुमने देखा है।
3: नहीं मैं डरता हूँ इसे हाथ लगाने से।
0: अच्छा ला रुमाल, मैं ही लपेटती हूँ।
1: लो।
0: मुझे बहुत दुख हो रहा है इसका।
1: मुझे भी।

0: पहले ही आ गई?
1: मैं आज स्कूल गई ही नहीं।
0: तुम्हें मजा आ गया होगा घर में बैठे। डैडी मुझे एक दिन भी घर में नहीं बैठने देते, कदाच इससे छुट्टी लेते हैं। बड़ों की तो मजे होते हैं।
1: खाक मजे होते हैं। मुझे नहीं लगता अच्छा घर में बैठना।
0: क्यों?
1: वो हर छुट्टी के दिन झगड़ते हैं।
0: हाँ ये तो है।
1: कल पापा और मम्मी ने इतना झगड़ा किया।
0: तुम्हें साइकिल लेके निकल जाना चाहिए था।
1: आग लगा दूंगी उस साइकिल को। मैं अब उस पर कभी भी नहीं बैठूंगी। लाए पापा अपने लिए खुद ही सिगरेट, मैं क्यों लाऊंगी? मैं तो उस साइकिल को हाथ भी नहीं लगाऊंगी।
0: क्यों?
1: वो साइकिल मामा जी लाए है ना,
0: उससे क्या होता है?
1: मामा जी की शादी है।
0: तब तो वो भी अलग हो जाएंगे।
1: पता नहीं, मम्मी ने कहा उनके लिए सूट और घड़ी होनी चाहिए।
0: क्यों?
1: अफो, तुम तो कुछ भी नहीं समझते। शादी पर देते हैं ना घड़ी और सूट। पापा को आ गया गुस्सा, कहने लगे मैं कहां से लाऊंगा, है इतने फालतू के पैसे मेरे पास। मम्मी ने कहा वो भी तो बेबी के बर्थडे पर साइकिल लाया था।
0: फिर?
1: बस फिर क्या, दोनों ने बहुत झगड़ा किया। मम्मी बहुत रोई, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। मुझे पापा अच्छे नहीं लगते जब वो मम्मी के साथ झगड़ते हैं। तुम्हें?
0: मुझे भी नहीं।
1: मेरी मम्मी तो यूं ही पापा से डरती हैं। मैं नहीं डरती वरती पापा से।
2: झूठ कहा मैंने, मैं मम्मी से भी ज्यादा डरती हूँ उनसे।
1: तुम डैडी से डरते हो?
0: मैं क्यों डरूंगा? झूठ, मैं उसे बहुत डरता हूँ, वो मारते हैं ना।
1: चल आज पौधों को फिर सींचेंगे।
0: नहीं।

0: क्यों?
1: क्या पता आज और कोई बुलबुल मरी हो। खिलौनों से खेलेंगे। टी ओ वाई।

0: मुझे ये वाली बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें?
1: मुझे नहीं लगती।
0: क्यों?
1: मम्मी कहीं जाने ही नहीं देती, कहती है बीमार हो जाओगी।
2: छू, वो कहती है कपड़े भीग जाएंगे। रोज रोज ना कपड़े धुल सकते हैं, ना प्रेस हो सकते हैं। अपने पापा से कहो नौकरानी रखे।
1: तुम्हारी मम्मी तुम्हें कुछ नहीं कहती?
0: कहती तो है, फिर?
1: अरे देखो बैलगाड़ी।
0: कहाँ?
1: वो नहीं देखते, उस मोड़ के पास।
0: अरे हाँ, इधर ही आ रही है।
3: तुमने कभी बैलों को लड़ते देखा है?
0: नहीं। तुमने?
1: मैंने भी नहीं देखा।
0: एक बात कहूँ?
1: क्या?
0: ये लड़ ही नहीं सकते।
1: क्यों?
0: क्यों क्या, इतना भी नहीं समझती? ये बैलगाड़ी में बंधे हैं, लड़ेंगे कैसे?
1: अरे हाँ।
0: अरे इसमें भी बहुत सारा सामान भरा है, जैसे उस दिन तुम्हारी चक में भरा था।
1: वो मैं तो भूल ही गई तुम्हें बताना।
0: क्या?
1: पापा मम्मी से कह रहे थे हमारी वापस बदली हो गई है।
0: सच?
1: और नहीं तो क्या, अब हम अपने घर जाएंगे।
0: कब?
1: पता नहीं।
0: अगर मेरे पास भी बैलगाड़ी होती, मैं भी कहीं दूर चला जाता।

0: नहीं बोलता, कुट्टी है तुम्हारी मेरे साथ।
1: क्यों?
0: मैं यहाँ कब से बैठा हूँ, आई क्यों नहीं? मम्मी मुझे हर रोज डांटती है, आया ना काज कपड़ों का सत्यानाश करके।
1: मुझे मम्मी आने ही नहीं देती थी, कहती है इस बारिश में आदमी बीमार हो जाता है।
0: झूठ कहती है, मैं क्यों नहीं हुआ?
1: जानते हो हम जा रहे हैं।
0: कहाँ?
1: वापस अपने घर।
0: कब?
1: अभी, पापा ट्रक में सामान भरवा रहे हैं।
0: तुम भी जाओगी?
1: और नहीं तो क्या।
0: जाने दो उन्हें, तुम यही रहो, वो झगड़ा करते हैं ना।
1: लेकिन पापा मम्मी के बिना कैसे रहूं?
0: तुम अलग हो जाओ।
1: कह तो दिया कि लड़कियां अलग नहीं होती।
0: हाँ, लड़कियां अलग नहीं होती।
1: तू किसके साथ खेला करेगा?
0: पता नहीं। और तू?
1: किसके साथ खेलूं? अपने साथ।
0: एक बात बोलूं?
1: क्या?
0: हम शादी करेंगे।
1: क्या?
0: शादी करेंगे। क्यों?
1: हम छोटे हैं ना।
0: है तो क्या हुआ?
1: हमारी शादी करेगा कौन?
0: हम खुद करेंगे, फिर अलग रहेंगे। जाने दो जिसको जहाँ जाना है, हम यही रहेंगे।
1: मम्मी डैडी के बगैर ही?
0: हाँ, जैसे बुलबुल के बच्चे अलग हुए। पर वो बुट्टी बुलबुल जो मर गई, नहीं होगी।
1: आ गई टैक्सी, पापा हॉर्न बजा रहे हैं, मैं जाती हूँ।
0: जाओगी तुम? तुम ठहरो, मैं भी आया। तुम्हें ये कार अच्छी लगती है ना? ये तुम रखो।
1: कुछ कहेंगे तो नहीं?
0: क्यों कहेंगे, मैं किसी से नहीं डरता, मैं वही करूँगा जो मेरा मन चाहे। तुम इस कार के संग रोज खेलना, खूब

सुना। लेखक और अनुवादकर्ता थे हृदय कौल भारती, निर्देशन दीनानाथ का था। यह हमारे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति थी। कुछ

जानी मानी गायिका दीपाली सहाय बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तकरीबन 50 दशक तक रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका दूसरा भाग।
1: वामन केंद्र जी, जो ये पूरा ब्यौरा मैं जिस तरह से सुन रहा हूँ तो आंखों के आगे पूरे दृश्य चल रहे हैं। एक चीज जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो है आगे बढ़ने की और अपनी मंजिल को पाने की जबरदस्त ललक, जबरदस्त ऊर्जा, क्योंकि 40 घरों के गांव से आप निकल के आते हैं और फिर एक एक कदम आगे बढ़ता जाता है और आपकी दृष्टि और आपका क्षितिज बड़ा हो रहा है और दिल्ली तक आप जिस तैयारी के साथ और जिस तेवर के साथ पहुंचे वो बहुत बेमिसाल है। ये ऊर्जा जो है जी, ये कहां से आ रही थी?
2: ये ऊर्जा मुझे लगता है कि आपके डिटर्मिनेशन से आती है
1: जी।
2: आपके सारा बैकग्राउंड ऑड है,
1: हाँ, आपके खिलाफ विरुद्ध है
2: और मुझे लगता है जीतने का एक ही जज्बा हो सकता है, जो होती है जिद।
1: वाह वाह,
2: क्योंकि कोई भी ऊर्जा आती है वो आपके जिद से निर्माण होती है कि मुझे तो जाना ही था, मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही पढ़ना था।
1: ये बात,
2: और वो मैं नहीं पढ़ता तब भी मैं और कुछ करता जो इससे बेहतर भी हो सकता था, पता नहीं
1: जी जी,
2: पर मुझे तो वहीं जाना था। तो इसीलिए वो जो तैयारी होती है, जो होमवर्क है, रिसर्च है, आपका प्रेपरेशन है, लक्ष्य अगर आपको मालूम है और जाने का तरीका अगर आपको मालूम है तो पूरी शक्तियों के साथ अपने आप को झोंक देने का आपका स्वभाव होना चाहिए।
1: वाह वाह वाह,
2: मैं स्टूडेंट मूवमेंट में भी था तो मैं इतना सा छोटा नाटा था तो 5000 लोगों के मोर्चा को कंट्रोल कर रहा हूँ और आप जवाबदेह है। उस सारे मोर्चा में किसी ने कुछ भी मिसबिहेव किया तो वो सारा का सारा ठिकरा तो आपके ऊपर फूटने वाला है।

0: है
1: जी,
0: तो ये सारी जिम्मेदारी का एहसास भी था और इसीलिए वो जिद और श्रम, मेहनत करने की ताकत, मुझे लगता है ये दोनों अगर आपके पास हो तो आपको कहीं भी जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। आप कहां से आए हो, कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो, कहां क्या कर रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, गरीब हो अमीर हो, आपको कोई मान्य नहीं रखता। आपका लक्ष्य सीधा आपके सामने होना चाहिए और वहां पहुंचने की ऊर्जा, पूरी ताकत के साथ पहुंचने की ख्वाहिश बहुत लंबी होनी चाहिए, पुख्ती होनी चाहिए और काम करने का मादा होना चाहिए।
1: क्या बात है, छोटे कद के हल्की सी दाढ़ी वाले दुबले पतले वामन केंद्रे जब दिल्ली पहुंचे तो वहां की शुरुआती दिन कैसे थे?
0: मैं जब दिल्ली पहुंचा तो मैं कुछ एक आप इमेजिन करते, मैं कभी दिल्ली गया नहीं था, पहली बार गया
1: जी।
0: तो एनएसडी में पहुंचते ही पहले तो ऐसा लगा, मुंबई देख के थोड़ा बहुत गया था तो ये बड़ी 10-12 मंजिला बिल्डिंग होगी, ये थिएटर बड़े बड़े, ये होगा वो होगा वो, वहां गया तो एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है, वन प्लस वन का कुछ एरिया है, बाकी तो सारा वन वन एरिया है ऐसा फैला हुआ 7-8 एकड़ में। और मैं जब जा रहा था तो बाहर कुछ वहां की विद्यार्थिनी आ रही थी, जुलाई का महीना था और जुलाई में बहुत गर्मी होती है दिल्ली में
1: जी,
0: तो जो कुछ लड़के लड़कियां वहां से बाहर निकल रहे थे, चाय का टाइम हुआ था 4:30-5 बजे का, और उसी समय मैं अपना रिक्शा लेके वहां उतरा हूँ और एक पायजामा पहना हुआ और एक 3 बटन का शर्ट, और पैंट और एक शर्ट, ऐसे दो ही पेयर थे मेरे पास
1: जी।
0: एक पैंट शर्ट सूटकेस में रखा था ताकि वो दूसरे दिन स्कूल में जाने के समय में पहन लूंगा, और ये पहन के ऐसे ही गया था तो देखा तो सामने से हाई फाई सारे लड़के लड़कियां आ रही कुछ, और हाथ में पैकेट है, सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा कि एनएसडी किधर है,
1: वाह,
0: तो मेरी तरफ देख के हंसे हो, बोले यही तो है एनएसडी सामने जहां से हम आए हैं। मैं उनके नाम नहीं लूंगा, वो शॉर्ट्स पहने हुए हैं और वो समय एक ये था फैशन का कि वो सारे धागे जो है वैसे छुटे हुए होते थे शॉर्ट्स के
1: जी,
0: लगभग इज्जत ढकने के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं उतनी ही थी, गर्मी बहुत थी। तो ऐसे देखने के बाद मुझे पहला तो शॉक लगा, कल्चरल शॉक, माय गॉड ये एनएसडी है और यहां पर मुझे 3 साल रहना है
1: जी।
0: तो अंदर ही अंदर ऐसा हो गया, वामन केंद्रे संभालो, अब कब वापस जाओगे तो ऐसे एक कुछ सोच मन में आई और धीरे धीरे अंदर गया और रिसेप्शन पे जाके बोला मेरा नाम फलाना है और मैं फर्स्ट ईयर के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ। एक साड़ी पहनी हुई औरत थी तो मुझे लगा ये टीचर होगी, तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा है, उधर बाहर जाना है आपको, तो वो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि यहाँ पर एक कमरा है, यहाँ पर आप अपना सूटकेस और वो जो भी रखना है रखो, और वहां पर एक फर्स्ट ईयर के साथ गैदरिंग होने वाला है सारे का स्वागत आगत, तो वहां रख के मैं चला गया। तो जिस महिला से मेरी बात हुई थी तो मुझे लगा वो टीचर होगी, कोई एक्टिंग पढ़ाती होगी या डायरेक्शन। वहां गया तो जब मैं बैठा फर्स्ट ईयर के लाइन में तो मेरे बगल में बैठी थी, मैंने कहा मैडम आप यहाँ क्यों तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं फर्स्ट ईयर में ही मेरा एडमिशन हुआ है।
1: ओके,
0: और उनका नाम था अनामिका हक सर।
1: घोड़े को जलेबी
0: जिन्होंने आगे चल के फिल्म, मेरी क्लासमेट जो पीएन अक्सर जो इंदिरा गांधी जी के एडवाइजर थे, लीगल एडवाइजर थे, तो उनकी वो बेटी।
1: वाह वाह,
0: तो फिर वहां से कारण जी आए, फिर माहौल बन गया, फिर क्या कहते हैं स्वागत हो गया, परिचय हो गया, कौन क्या कहां से आया है, तो एक आध दो गाना गाओ, ये करो वो करो, सब हो गया। तो लगा कि नहीं नहीं ठीक है, ये जो पहला शौक था उस शौक से उस सदमे से थोड़ा मैं बाहर आना शुरू हो गया कि नहीं नहीं यहाँ माहौल ठीक है।
1: वो पहले दृश्य में जो लोग थे उनकी कोई सुराग
0: नहीं, नहीं वो नहीं लगा उनका नाम बताऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी अभी भी अजीज दोस्त थे दोनों भी, दोनों तीनों भी।
1: अच्छा ठीक है,
0: और ये मुंबई में ही रहती है
1: चलिए हम लोग अंदाजा लगा लेंगे।
0: ठीक है,
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं।

0: फर्स्ट ईयर जो है वो बहुत तूफानी होता है?
1: नहीं, सारा ही तूफानी होता है एक्चुअली। पढ़ने वाले के लिए मैंने ये तय किया था कि कोई एक सेकंड मुझे फालतू में बर्बाद नहीं करना है।
0: जी जी,
1: मतलब कसम ये खाई थी कि जिस दिन मेरा कोर्स खत्म होगा उसके एक दिन पहले मैं दिल्ली से निकलूंगा।
0: अरे गजब,
1: मतलब मैं रहूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाना तो महाराष्ट्र है।
0: वाह वाह,
1: क्योंकि मेरी जो मातृभाषा है वो मराठी है और थिएटर की जो यहाँ की हालात है उससे बेहतर तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, खासकर हिंदुस्तान की कक्षा में तो कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में सबसे बेहतर थिएटर तो या तो बंगाली है या मराठी है, तो मैं वहां से क्यों हटूं?
0: जी,
1: तो इसीलिए मैंने, मेरा जो हर दिन था वहां का, मैंने कोई क्षण ये था कि शाम को अगर मेरी रिहर्सल नहीं है और वहां जो भावलपुर हाउस में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वहां कुछ देखने के लिए मेरे लिए नहीं है तो मैं भाग जाता था। हम दो तीन लड़के लड़कियां जो हमारी दोस्ती हो गई, तो ये तो कमानी ऑडिटोरियम में जाके कुछ किशोरी ताई अमोनकर के गाने सुन रहे, भीमसेन जोशी की महफिल अटेंड कर रहे हैं, या शिव कुमार शर्मा जी का संतूर अटेंड कर रहे हैं, या खान साहब का सरोद अटेंड कर रहे हैं, या श्रीराम सेंटर में जाके कोई और बाहर का नाटक देख रहे हैं, या बगल में रशियन सेंटर था वहां जाके कुछ फिल्म देख रहे हैं, या जापानी सेंटर था वहां जाके कोई उनका फोक आया है वो देख रहे हैं। नहीं तो यहां भी कुछ नहीं है तो सीधा कोई एक दूर दराज पे चाणक्यपुरी में थिएटर हॉल था, जो फिल्म समझ में नहीं आए ऐसी अंग्रेजी फिल्में जाके देखते थे।
0: वाह वाह वाह,
1: वो इसीलिए था कि शाम फालतू में बर्बाद नहीं करनी है।
0: क्या बात,
1: मेरी रिहर्सल है तो मैं रिहर्सल में रहूंगा, या मुझे किसी और को मदद करनी है तो उनके साथ रहूंगा, सीनियर्स के साथ। तो ये मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने का बहुत ही अच्छा खूबसूरत माहौल था वो। सुबह 8 बजे क्लासेस शुरू होती थी और रात को कितने बजे खत्म होगी इसका कोई अंदाजा नहीं था। सुबह 8 बजते ही आप योगा कर रहे हो, दो दिन हफ्ते में 2 दिन डांस कर रहे हो।

0: वो दो दिन ट्रेडिशनल डांस कर रहे हो, दो दिन मॉडर्न डांस कर रहे हो, इस तरीके से ये था। किसी दिन फिर मार्शल आर्ट के गुरु मणिपुर से आए हैं, वो अपने को तलवार चलाना सिखा रहे हैं। उसके बाद कोई छाऊ वाला आया है, वो पूरा आपकी बॉडी को तोड़ मरोड़ रहा है। एक महीना पहले जाते ही अस्ताद देबो का मॉडर्न डांस एंड मूवमेंट का वर्कशॉप लगा, एक महीना निरंतर उन्होंने हमारे साथ काम किया। तो उन्होंने हमारे शरीर को खड़े रहने की क्या कहते हैं एक तरीके से, चार पांच दिन के बाद इतना टर्न ट्विस्ट हो गया कि बॉडी इतना दर्द करती थी कि किसी के हाथ पे या पैर पे टिचकी मारो तो पूरा हाथ पूरा शरीर थरथराता था। तो इस तरीके से कौन जेंडर है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, ये सारा खत्म कर दिया एक महीने के अंदर। तो इस तरीके से फिर क्लासेस, थ्योरी क्लासेस होती थी, प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी। सौभाग्य से बेहतर एक टीचर मिले
1: जी,
0: और कारण जी जैसा आदमी हमारे डायरेक्टर थे वो भी पढ़ाते थे, और उन्होंने इतने सारे दुनिया भर के टीचर इकट्ठा करके लाए हम लोगों को पढ़ाने के लिए। और उसमें सौभाग्य से अलकनंदा समर
1: वाह
0: नाम की रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन में पढ़ी हुई और वहां कई सालों से पढ़ा रही थी एक्टिंग, वो फ्रेंच आदमी से शादी हुई थी उनकी, सौभाग्य से उनके हस्बैंड की ट्रांसफर दिल्ली में हुई एज एम्बेसेडर, फ्रांस के एम्बेसेडर दिल्ली में, तो उनका यहाँ आना हुआ। और सौभाग्य से कारण जी को जैसे पता चला कि अलकनंदा समर्थ यहाँ आए तो उनको उन्होंने दो साल निरंतर हमें पढ़ाने के लिए बुलाया, इनवाइट किया। तो हफ्ते में उनकी दो या तीन क्लासेस होती थी। तो इस तरीके का माहौल था, आप लाइटिंग भी पढ़ रहे हो, आप सेट डिजाइन भी पढ़ रहे हो, आप लिटरेचर भी पढ़ रहे हो, नाट्यशास्त्र भी पढ़ रहे हो, वेस्टर्न ड्रामा भी पढ़ रहे हो, क्लासिकल इंडियन ड्रामा भी पढ़ रहे हो, मॉडर्न इंडियन ड्रामा भी पढ़ रहे हो, और उस तरीके के प्रोडक्शन भी कर रहे हो, देख भी रहे हो। और पूरी दुनिया से जो थिएटर आता है, मतलब वो एक दिल्ली ऐसा शहर था, तब तो भारंगम वगैरह कुछ नहीं होता है, उस समय एक श्रीराम सेंटर का एक नेशनल फेस्टिवल हुआ करता था 6-7 दिन का, वहां जो भी नाटक आते थे वो तो हम जाके देखते ही थे। पर इस वजह से नाटक आया, कभी महाराष्ट्र से आया, कभी कर्नाटक से आया, कभी केरल से आ गया, अपने अपने, तो वो हमें पता चलता था तो हम जाके देखते थे। तो एक मुझे लगा कि ये अंदर चार दीवारों में हम जो पढ़ रहे थे उसके साथ साथ बाहर जो घटित हो रहा है उससे कनेक्शन हमारा निरंतर रहा, देश का और दुनिया का नाटक जो देखने का मौका मिला, और नाटक करने के तरीके कितने हो सकते हैं, संभावनाएं कितनी बनती हैं। फिर एक से बेहतर एक विद्वान, चाहे वो बादल सरकार है, उस समय के जो थियोरेटिशियन भी थे, प्रैक्टिशनर भी थे, सारे बंगाल के थे, कोई गुजरात का था, कर्नाटक का, गिरीश कारनाड जी से लेकर चंद्रकर कंबार जी से लेकर ये सारे लोग आ रहे थे। तो उधर रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता आके कुछ नाटक कर रहे फर्स्ट ईयर में हमारे साथ, तो दूसरा कोई आके रतन थियाम मार्शल आर्ट पढ़ा रहे, तो कावालम नारायण पनीकर नाटक लेके आए मध्यम व्यायोग, उनकी अपने तरीके का। हबीब साहब के नाटक पहले जाते ही पहले महीने में मुझे लगा कि 10 दिन उनके चरणदास चोर के शो मंजर थिएटर में प्रगति मैदान में लगे थे, 10 के 10 शो हमने उस नाटक के देखे।
1: वाह, एक ही नाटक के 10,
0: एक ही नाटक के 10। हर दिन शो कैसे बदलता है और क्या मैजिक है उस थिएटर का
1: जी।
0: ये सारा जो था, फिर एमके रैना थे, बंसी कौल थे, जो हिंदी में थिएटर करने वाले भी थे, और भी भाषाओं के आने वाले लोग थे, प्रसन्ना जी थे। तो ये मुझे लगा कि शांता गांधी का क्या कहते हैं रेपर्टरी कंपनी का नाटक देख रहे, जसमावडन, सैया भय कोतवाल भी देख रहे हैं, उसके बाद बर्नम वन भी देख रहे हो, तो एक इतना एक्सपोजर थिएटर करने की संभावनाएं, थिएटर कितने तरीके से आदमी इस समय सोच रहा है दुनिया में, वो सबका एक्सपोजर मिलने का एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि मेरे बनने में बहुत बड़ा उसका रोल है
1: जी।
0: फ्रिट्स बेनिविट्स भी वहां से ब्रेक की नाटक करने के लिए आ रहे हैं, फलाना कोई और भी ब्रेक के ऊपर नाटक कर रहा है, कोई स्टैनिस्लावस्की पे कर रहा है, कोई चेखव का नाटक कर रहा है, कोई इप्सेन कर रहा है, कोई शाकुंतल कर रहा है, कोई भास का नाटक कर रहा है, कारण जी खुद हमारे साथ विद्या सुंदर नाटक किए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। तो एक तरीके का ग्राइंडिंग जिसको कह सकते हैं, 3 साल में आपको एक ऐसे ग्राइंडर में डाल दिया है और आप उसके साथ घूमते जा रहे हो और देखते जा रहे हो, और फिर आपको बाहर फेंक दिया गया कि जाओ अब अपने तरीके का थिएटर देखो।
1: वाह,
0: तो ये मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला होता है वो वहां पर विजनरी डायरेक्टर, विजनरी फैकल्टी,

0: विजनरी, क्या कहते हैं, नेशनल इंटरनेशनल थिएटर थिंकर और प्रैक्टिशनर के साथ जब मुकाबला होता है आपका, जो पीटर ब्रुक को आप पहले साल ही समझ रहे हो,
1: बड़ी बात है।
0: सौभाग्य से उनका एम्प्टी स्पेस पहले ही पड़ा हुआ था, पीटर ब्रुक कौन है मालूम थे, तो उनके साथ आमना सामना होना और उनकी फिलॉसफी को और दोबारा उनके मुंह से सुनना, उन्होंने वो व्याख्यान दिए थे और जिसकी किताब छपी थी, उसके बाद उनकी जर्नी जो आगे बढ़ी है उसके बारे में समझना, महाभारत जो उन्होंने किया था उसका डॉक्यूमेंटेशन वो कर रहे थे उस समय, उसके लिए वो बार बार हिंदुस्तान आते थे, तो ये सारा का सारा मुझे लगता है कि जो आनंद का पढ़ाई लिखाई का माहौल होता है वो मुझे उस समय बहुत अच्छी तरीके से मिला, और इसीलिए फिर हर तरीके का नाटक।
1: बिल्कुल,
0: आप छोटे सैयद बड़े सैयद जैसा नाटक हो रहा है, आप सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक जैसा नाटक रेपर्टरी कर रही है, श्रीराम सेंटर की रेपर्टरी, क्या कहते हैं, अंजी तेंदुलकर का कर रही है, घाशीराम कोतवाल कर रही, फलाना कर रही, ये तो मैंने कई सारे मराठी नाटक पहले हिंदी में देखे और फिर वापस महाराष्ट्र में आने के बाद फिर यहाँ मूल रूप में घाशीराम देखा, वो भी 7-8 साल के बाद।
1: जी,
0: तब तक वो बंद हो चुका था, फिर वो 500 शो के लिए रिवाइव हो गया, वो देखने का मौका मिला यहाँ रविंद्र नाट्य मंदिर में। तो ये सारा जो होता है, मुझे लगता है कि आपको सैद्धांतिक पक्ष भी समझने की आवश्यकता है, प्रत्यक्ष रूपांतर कैसे होता है, प्रैक्टिकल में रूपांतर कैसे होता है, उसकी कड़ियों को जोड़ने, खुद के मन में जोड़ने की आदत हो जाती है, क्रिएटिव माइंड तभी पनपता है जब ये कड़ियां जोड़ने लगते हो। तो ये सोचना समझना, कहां पर आज भारत का थिएटर है, कहां पर दुनिया का थिएटर है, मतलब जितना भी एक्सपोजर, उससे आप ये संचित इकट्ठा करते हो, आप अपना एनालिसिस करते हो, पर मैंने ये तय किया था जो मुझे मिलेगा वो मैं सीखूं।
1: ये बहुत अद्भुत बात है कि
0: मुझे कोई ये रिजेक्ट नहीं करना है, ये मेरे काम का है क्या नहीं, मेरे काम का है क्या नहीं, वो नहीं, जो मिलेगा वो खाना है,
1: वाह वाह,
0: बचाना है, बाद में देखेंगे खून में किसको रखना है और खून से बाहर किसको उतारना है।
1: वाह, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
2: ए भाई दर देख के चलो।

हर कदम में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है ए भाई जरा देख के चलो आगे

गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों। ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा।

0: हाय क्या है करिश्मा कैसा खिलवाड़ है जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी फिर भी को मालिक पे करता नहीं वार है और इंसान ये माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है भीड़ जिसके खाता है उसके ही सीने में भौंकता कटार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है।
0: माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है भीड़ जिसके खाता है उसके ही सीने में भौंकता कटार है।

0: जिस समय आप एनएसडी में थे, आपके बैच और आपके सीनियर बैच के कुछ लोगों के नाम बताइए।
1: बहुत है, अभी सीनियर बैच में देखिए आलोकनाथ, नीना गुप्ता, सुरेश भारद्वाज, ये श्रीराम बड़े उसी बैच में थे। जो पॉपुलर है उनमें से तो यही है। उसके सेकंड बैच के बाद रत्ना पाठक शाह, दीपा सहाई, उसके बाद उस बैच के बहुत सारे लोग हैं, मतलब पूरे देश में। प्रांजल साई किया है, वहाँ आसाम में काम कर रहा है, वो सुपरस्टार है आसामीज फिल्म के, थिएटर के। उसके बाद मेरे बैच में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने अनामिका अक्सर का नाम लिया, वीरेंद्र सक्सेना का नाम लिया, अशोक मिश्रा जिनको इतने सारे नेशनल अवार्ड मिले हैं फिल्म लिखने के लिए, और कटल उन्होंने लिखी
0: नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म,
1: और उनके बेटे ने डायरेक्ट की हुई फिल्म है, वो क्लासमेट है। ब्रिज में होन व्यास है, उन्होंने बहुत सारी सीरियल्स लिखी है। वो हिमानी शिवपुरी है,
0: वाह,
1: जो मेरी क्लासमेट है, वो थिएटर और फिल्म और टेलीविजन तीनों मीडिया में काम कर रही है। हेमा सहाय, हेमा सिंह, हेमा सहाय जो रघुवीर सहाय की बेटी, वो दिल्ली में रेपर्टी के साथ काम कर रही थी, फिर एनएसडी में एक्टिंग पढ़ा रही थी, अभी मैं था तभी, अभी अभी रिटायर हो चुकी है। तो ये सारे हैं, सुंदरशी है वहां, एक पूर्णिमा साइकिया है आसाम में, गुलाम सरवर और बहारुद्दीन ये बांग्लादेश में है, राज किरण बम्मा है वो मॉरिशस में है। तो ये सारे भी, अशोक भाटिया है जो यहाँ मुंबई में काम कर रहे हैं, जो चाणक्य में सेकंड लीड में काम करते हैं। तो ये सारे के सारे इतने अच्छे क्लासमेट्स मुझे लगता है हमारे थे, कि जिनसे भी मुझे बहुत सारा सीखने को मिला। चिदंबरा राव जाम्बे हैं जो कर्नाटक में हैं, जिनको संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिल चुका है। नीनासम थिएटर का वो प्राचार्य रहे कई साल तक, और हमारा जो एनएसडी का सेंटर था उसके भी वो डायरेक्टर।

0: कर रहे हैं। तो ये इतने सारे, प्रताप सामल है वो ये सब छोड़ के यूनियन में चला गया, वो भोपाल में स्थित है, वह था उड़ीसा का, पर वो अभी भी वो लिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है, वो भोपाल में है। तो जो भी थे हमारे साथ, मुझे लगता है लगभग सारे उसमें से बहुत सारे लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतह पर आए हुई बहुत सक्सेसफुल बैच में मुझे रहने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला उन लोगों से। दीपम उत्सल है करके एक हमारा क्लासमेट है, वो लद्दाख में है, तो लद्दाख कल्चरल एकेडमी का वो डायरेक्टर भी रहा है और अभी वो अपने तरीके से अपना ग्रुप चला के थिएटर वहां भी कर रहा है।
1: क्या एनएसडी में रहते हुए ये आपके जहन में आया कि अभिनय पीछे जाएगा और निर्देशन आगे आएगा?
0: मैं तो गया था एक्टर होने के लिए
1: जी,
0: पर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक्टर तो ग्रो हो ही रहा है। मेरे सारे टीचर बहुत दुखी हो गए, उनको पता चला कि मैंने एक्टिंग से ज्यादा ऑप्ट आउट किया बाहर आने के बाद। सौभाग्य से मेरा कोर्स इंटीग्रेटेड था, मुझे एक्टिंग भी सीखना था, मुझे डायरेक्शन भी सीखना था, स्टेज क्राफ्ट भी सीखना था, स्क्रीन प्रिंटिंग भी सीखना था, फोटोग्राफी भी सीखना था, साउंड डिजाइन भी सीखना था। इस सौभाग्य से सब कुछ 3 साल में जितनी संभवता ट्रेनिंग की संभावनाएं थी वो सब सीखने का मौका मिला। आपको कारपेंट्री भी सीखना है, आपको कॉस्ट्यूम करना भी सीखना है, लाइटिंग भी सीखना है, इससे बड़ा मौका कुछ नहीं। क्योंकि कारण जी का यह कहना था कि भारत में अब स्पेशलाइज उस समय लोगों की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जाके वो थिएटर करे और सबको अपने साथ लेके चले, ऐसे लोगों की भारतीय थिएटर को आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने स्पेशलाइजेशन से कोर्स इंटीग्रेटेड कर दिया। वो 2 या 3 ही बैच के साथ रहा, सौभाग्य से मैं उसमें से एक बैच का हूं
1: जी।
0: तो मुझे पता चल रहा था कि मेरा एक्टर तो ग्रो हो रहा है, पर साथ साथ ये मेरा ऑब्जेक्टिव देखने का जो स्वभाव है चीजों को, वो ज्यादा ग्रो हो रहा है, मेरे विजुअल्स ज्यादा ग्रो हो रही है। ह्यूमन हैंडलिंग का तो मुझे अनुभव था ही
1: जी,
0: स्टूडेंट मूवमेंट की वजह से और लीडरशिप जो भी छोटी मोटी थी उसका अनुभव तो था ही कि चलो एक 10-20 लोगों को इकट्ठा करके कुछ हंगामा करते हैं, ये वाला माहौल तो था। पर ये मेरे अंदर का क्रिएटिव डायरेक्टर या क्रिएटिव डायरेक्टर्स माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग कल्टिवेट हो रहा है। डायरेक्शन चुनने के 2 वजह हैं। एक्टर होता मैं बेहतर एक्टर तो जरूर हो जाता, पर एक्टर होना ये पैरासाइट करियर है
1: जी।
0: इसी के ऊपर निर्भर हो आप। कोई नाटक लिखेगा, सिनेमा लिखेगा, सिनेमा तो मेरे फ्रेम में ही नहीं था, पर वो नाटक लिखेगा, वो आपको उसमें रोल होगा, फिर वो आपको अप्रोच होगा, फिर वो कोई प्रोड्यूसर मिलेगा, उसके बाद नाटक। मैं जिस कारण से स्टूडेंट मूवमेंट और ये सारा छोड़ के गया था कि ताकि मुझे अपनी कहानियां, अपने नैरेटिव्स, अपनी बातें, अपनी विवंचना, आपके आनंद, सो किसी ना किसी की मुझे आवाज बनना था। मेरा नाटक कुछ बात कहें, वो केवल मनोरंजन ना करे, मनोरंजन तो करना ही है, पर मनोरंजन से आगे प्रबोधन और अंतर्मुख और अस्वस्थ बनाना आपको, ये मेरा काम है मेरे नाटक का, जो मैं निरंतर करते आया हूं। आप जुलवा से देखिए, सैया भय कोतवाल से देखिए, उसके बाद जाने मन से देखिए, रणांगण देखिए, एक झुंझ वारे से, जितने भी मैंने मराठी हिंदी में नाटक किए, अब जो लास्ट नाटक किया गजब तेरी अदा
1: जी,
0: या गजब तिची अदा मराठी में
1: जी,
0: या मोहे पिया मध्यम व्यायोग जो है
1: जी,
0: इसका भास का नाटक, उसको भी मैंने आज के चश्मे से देखा है, हिडम्बा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डायरेक्ट किया हुआ है। तो ये सारा का सारा जो है, मुझे लगा कि ये अगर करना है तो मुझे पैरासाइट करियर चुनना नहीं चाहिए। मेरे सामने ये कि मुझे एम्प्टी स्पेस है और 2 लाइट है और 2 एक्टर है, मैं अपनी बात कह दूंगा।
1: वाह वाह, क्या बात।
0: तो यहां से मुझे वो भी मैंने सीखा, 300 लाइट इस्तेमाल करना, 3 मंजिला सेट लगाओ, क्योंकि आइडियल सिचुएशन में एनएसडी आपको नाटक पढ़ाता है। पर अंत में आते आते हमने अपने, तब वो डायरेक्टर थे बीएम शाह, कारण जी निकल गए थे भारत भवन के लिए, तो हमने उनको कहा कि अब हमने बहुत लग्जरी में नाटक करना तो बहुत सीखा, पर अब हमारे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है और हमें नाटक करना है, वो भी सीख।
1: ये बात
0: कि मैं जाऊंगा भीड़ जाऊंगा तो वहां 2 फ्लड लगी हुई है,
1: उसी में करना है,
0: उसी में। जयदत्त सिरसागर कॉलेज के वो केशर भाई काकू के बेटे हैं, तो जब वो इंजीनियरिंग कोर्स करके आए तो तब हमें 3 अंक की नाटक कर रहे थे, तो वो आए एक दिन, बताया कि वो इंजीनियर है, तो हमने कहा कि हमको ऐसा ऐसा कुछ करवा के दोगे, तो उन्होंने डाल्डे के डिब्बे मंगवा के उसको ट्विस्ट ट्राइन करके उसको बड़ा बल्ब लगा के उसको लटका के हमको उन्होंने 2 या 3 फ्लड लाइट बनवा दिए।
1: गजब।
0: तो ऐसे स्थिति में भी हमारे यहाँ सारे के सारे मुंबई या दिल्ली में रहेंगे नहीं, हम अपने अपने गांव में भी जाएंगे, तो वहां नाटक करने के लिए भी हमको मिनिमम रिसोर्सेस में नाटक करना है।

0: बोले क्या करना होगा, हमने कहा आप हमें नाटक करने का टाइम दो, हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, हम में से हर कोई एक नाटक डायरेक्ट करेगा।
1: अच्छा,
0: हमने अपने 24-25 लोग थे तो 8-8 के इसमें हमने 3 ग्रुप बांट लिए और 8 ग्रुप में हम नाटक करेंगे, एक डायरेक्टर होगा, बाकी एक्टर होंगे, कोई डिजाइनर होगा और बाकी दूसरे जो 2 ग्रुप थे उसमें से हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो उस एक साल में हमने 22 नाटक किए।
1: अरे बाप रे,
0: जो हमारे मेन नाटक का हिस्सा नहीं है,
1: एक्स्ट्रा थे,
0: एक्स्ट्रा थे ये। मैंने महेश एलकुंजवार जी का यातनागर हिंदी में की,
1: बहुत इंटेंस नाटक है
0: और वो जब मैं हैंडल कर रहा था तब मुझे लगा कि आई कैन हैंडल बेटर डायरेक्शन देन एक्टिंग।
1: ओके, ये वो
0: पॉइंट, ये अनुभव होता है ना आपको। और ये एक्टर ब्लॉक्ड हो गया, अब इसको क्या करना है, भले दूसरा डायरेक्ट कर रहा है तो सोल्यूशन आप देते हो, अरे इसको ना ऐसे करने से ना ये जो मेंटल ब्लॉक हो गया ना वो ब्लॉक टूटेगा, और वो जब करके देख रहा है तो आपकी आइडिया एग्जीक्यूट हो रही है। तो मुझे लगा कि नहीं है, मेरे पास लीडरशिप की क्वालिटी है और डायरेक्टर कैप्टन होता है तो उसके पास लीडरशिप तो होना जरूरी है। और कंफर्टेबल जोन में आप अपने टीम को कैसे ला सकते हो और उनसे काम कैसे निकलवा सकते हो, ये सारा मैंने फ्रिट्स बेनिविट्स, बीएम शाह, कारण जी, हबीब कन्वीर जी, रतन थियाम जी, कावलम नारायण पनीकर जी, इनसे सीखा। मतलब वो फ्रिट्स बेनिविट्स एक नाटक करने आए थे हमारे साथ, बैच के साथ, उन्होंने जानबूझकर ब्रेक तो नहीं किया हमारे साथ, वो मास्टर थे ब्रेक के, वो बर्निनारा और थिएटर अंसाम्बल जो है, जो बड़ी रेपर्टरी है, जिनने ब्रेक को पूरे दुनिया में पॉपुलर किया, उसके वो डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा एवरी टाइम आई कम एंड आई डायरेक्ट बर्टोल ब्रेक, सो दिस टाइम आई वॉन्ट टू डायरेक्ट शेक्सपियर विद दिस बैच,
1: क्या बात,
0: हमने करिए। और वो ऐसा होता था कि रोटेशन में आपको काम मिलता था, एक्टिंग, डायरेक्शन या बाकी सारा जो काम है, तो 3 साल के रोटेशन में जिनको कोई काम नहीं मिला था, जैसे मतलब मिनिमम काम मिला था, तो हमारे अशोक मिश्रा, ब्रिज मोहन व्यास, ऐसे सारे जो, उनको उन्होंने लीड रोल दिए।
1: वाह,
0: तो तब तक ये धारणा बन जाती है ना पहले दूसरे नाटक के बाद कि ये बड़ा अच्छा एक्टर है, ये बड़ा अच्छा एक्टर नहीं है वगैरह। उन्होंने उन सारे जिनको काम कम से कम मिला था उनसे वो इतना बेहतर नाटक निकलवाया। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर, आई ऑप्टेड आउट, मुझे काम नहीं करना, मुझे आपके साथ या तो सेट डिजाइन करूंगा या आपका असिस्टेंट बन के रहूंगा। तो देखा कि हाउ ही हैंडल्स मिरेक्युलसली एक्टर, इतने सहजता से उनसे परफॉर्मेंस कैसे निकलवा रहे हैं ये डायरेक्टर, और दैट वॉज द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ऑल 3 इयर्स टाइम।
1: वाह वाह वाह, अद्भुत अनुभव,
0: अद्भुत अनुभव। और कोई सेट नहीं, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो एक एक्टर के मन में घुसकर उससे आप उस कैरेक्टर तक कैसी जर्नी करवाते हो और उसके जो अर्थ के, भाव के, जो सच्चाई है, ट्रूथ जिसको कहते हैं, ट्रूथ इन एक्टिंग, उस ट्रूथ कर ले जाने की जो किमया है, वो जो जादू है, वो मैंने उनसे डायरेक्ट सीख ली और मुझे लगा कि क्या बात है, ओहो मजा आ गया। और उसके बाद एक्चुअली फिर मैंने सीरियसली लिया आई शुड बी द डायरेक्टर।
1: ये पॉइंट जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट रहा एनएसडी में, जहां आपने अपनी एक दिशा,
0: यस, मतलब 2-3 चीजें एक साथ हो गई कि एक रियलाइजेशन हो गया
1: जी,
0: दूसरा मेरा संस्कार था और तीसरा जिस बात के लिए मैं नाटक में आया था, मुझे अपनी बात कहनी है।
1: यस,
0: और मैं आज भी इतने सारे व्यावसायिक भी नाटक किए जहां मुझे अपनी बात नहीं कहनी थी, ऐसे कई सैकड़ों नाटक, कितने भी पैसे देने के लिए प्रोड्यूसर तैयार थे, मैंने आज तक एक भी ऐसा नाटक डायरेक्ट नहीं किया।
1: क्या बात है,
0: जो मुझे अंदर से नहीं लगा
1: जी। यहां एक गाना सुनते फिर आगे बहुत दिलचस्प सवाल,
0: बिल्कुल दिल की बात।

0: वामन केंद्र जी, ये जो एनएसडी का पूरा आपने खाका खींचा के इस तरह की इंटेंस गतिविधियां, लेजेंड लोग, सिखाने वाले, साथी, सब एक तरह से भरपूर, जो किसी भी रंगमंच के प्रशिक्षु का सपना हो सकता है, वो आप जी रहे थे। उस समय जब आप एनएसडी का कोर्स फिनिश कर रहे थे, केरल का रुख हो गया अचानक।
1: जी, वो इसलिए कि मेरा 3 साल पूरा हो गया
0: जी,
1: और मेरे सामने 2 चॉइस थे।
0: एक तो आपने कहा एक दिन पहले वापस लौटना है।
1: एक दिन पहले मैं वापस लौटा। फिर मुझे दिल्ली से फोन आ गया कि भाई आपका एज एन एक्टर अप्रेंटिसशिप मिलती थी
0: जी,
1: 8 लोगों को, 6 लोगों को एनएसडी रेपरेटरी के साथ 1 साल काम करने का मौका मिलता था, और 2 लोगों को एक्सटेंशन प्रोग्राम में मौका मिलता था। तो मुझे बीएम शाह, जो हमारे तब के डायरेक्टर थे और बहुत आदरणीय शिक्षक भी रहे और बहुत अच्छे डायरेक्टर भी रहे अपने आप में और नाटक के भी बाहर, तो उनका मुझे मैसेज आया, चिट्ठी आई कि आपको तुरंत दिल्ली आना है, आपका रेपर्टरी में भी अप्रेंटिस के हैसियत से सिलेक्शन हो गया है, और आपके लिए अगर आप एक्सटेंशन में जाना चाहते हो तो आपके लिए एक नया प्रोग्राम हम डिवाइस करना चाहते हैं।
0: वाह वाह, मतलब 2 अलग अलग रास्ते,
1: अलग दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हुआ है
0: जी,
1: और चॉइस मेरे ऊपर छोड़ा है। अब मैं दिल्ली पहुंचा तो उन्होंने मुझे बुलाया और ये सब एक्सप्लेन किया और बोले आपको रेपर्टरी में जाना है तो बिल्कुल जा सकते हो। और उस समय फॉर्चुनेटली फर्स्ट टाइम वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया इंग्लैंड में हो रहा था
0: जी,
1: और वहां पर एनएसडी रेपर्टरी के 6 नाटक जा रहे थे परफॉर्म करने के लिए, जिसमें अलकाजी साहब के 2 नाटक, तुगलक भी था, और बहुत सारे 5-6 नाटक थे। और वो केवल इंग्लैंड नहीं है, पोलैंड भी जाएंगे, और 6 यूरोप कंट्रीज का टूर लगा हुआ है आपके सामने टेम्पटेशन के लिए। मैंने कहा दूसरा क्या है? आपने कहा कि वी आर deriving something, तो बोले आपके लिए हम फेलोशिप देना चाह रहे हैं। तो किस बात की? बोले ड्रामा स्कूल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और ड्रामा स्कूल त्रिचूर, वहां के जो डायरेक्टर थे तब डॉक्टर जी शंकर पिल्ले
0: जी,
1: प्ले राइट एंड नॉवेलिस्ट और बहुत अच्छे टीचर भी, तो उन्होंने कहा कि वो उनके साथ मिलकर हम एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं रिसर्च के लिए, और उसका एम होगा टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर।
0: अरे गजब।
1: और हमने सब देख लिया है कि यू आर एन आइडियल स्टूडेंट और फेलो फॉर दैट, आप ही ये कर सकते हो और एक सिद्ध कर सकते हो कि वो किस तरीके का रिसर्च किया जा सकता है। तो बोले आपके साथ एक और स्टूडेंट को हम सेलेक्ट करेंगे एनएसडी के आप ही के क्लास में से, और वहां के 2-3 स्टूडेंट आपके साथ रहेंगे जो दे विल हेल्प यू एंड दे मे ऑल्सो डू द सेम टाइप ऑफ रिसर्च। तो बोलो आप कहां जाना है आपको? तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए।
0: अच्छा, एक तरफ इंग्लैंड की चमक दमक दिख रही है,
1: एक तरफ इंटरनेशनल। तो रात में मैंने सोचा कि एक तरफ मैं, मुझे लीड रोल तो कोई देगा नहीं 6 देश में जाने के लिए, पकड़ना तो भाला ही होगा किसी या एक या 2 डायलॉग की एंट्री का। ऑब्वियस है, इतने सारे बड़े बड़े एक्टर है, जहां पर पंकज कपूर जी है, जहां पर गोविंद नामदेव है, जहां पर आनंद देसाई है, ये सारे के सारे, राजेश विवेक जी है, कौन नहीं है, के रहना है, रघुवीर यादव जी है, ये सारे एक्टर है, डॉली आलूवालिया है, इनके सामने उत्तरा भावकर है, सुरेखा सीकरी है, मनोहर सिंह खुद है।
0: बाप रे,
1: तो ये सारा इतना, मतलब जो हमारे आइकॉनिक एक्टर्स थे, तो हाँ उनके साथ रहकर सीखने का मौका तो जरूर था उसमें। तो हिमानी शिवपुरी ऑप्टेड दैट, तो वो हेमा ये सब चले गए वहां। तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए, और मैं दूसरे दिन जाके बोला मैं केरल जाऊंगा, केरल में ही जाना था। तो बोले क्यों? मैंने कहा मैंने सोचा सर, क्योंकि ये तो मैं 5-6 देश जाके सीखूंगा तो डेफिनेटली वहां का थिएटर देखने का मौका मिलेगा, इंस्टीट्यूशंस वगैरह सब देखूंगा, पर मुझे गुजरात नहीं मालूम है, मुझे ढंग से कर्नाटक नहीं मालूम है, मुझे ढंग से बंगाल नहीं मालूम है, ढंग से यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड कुछ नहीं मालूम है मुझे, मुझे अपना देश ही नहीं मालूम है, तो मैं बाहर का देश को क्यों समझूं?
0: गजब।
1: मैंने कहा मुझे पहले एक मौका मिल रहा है कि मुझे अपने ही देश को समझने का मौका मिल रहा है, और वो भी केरल जैसा, जहां पर पूरा द्रविड डोमिनेशन है कल्चर में। तो एक आर्य कल्चर से तो मैं हूं, लेकिन मुझे द्रविड कल्चर का एक्सपोजर नहीं है, तो मैं वहां जाना चाहूंगा, और वो भी रिचुअलिस्टिक थिएटर।

0: फॉर्म से आपको ये सब्जेक्ट के क्या कहते हैं आत्मा तक पहुंचना है, भारतीय नाटक में भारतीयता। तो मैंने कहा इससे बेहतर चांस तो कुछ हो नहीं सकता। मैंने कहा मुझे रेपर्टी नहीं जाना है, मुझे केरल जाना है, और मेरा टिकट कर दिया और मैं सीधा केरल पहुंच गया। और वहां जाने के बाद जो दो साल मैंने बिताया वहां, वो इतना हिप्नोटिक था
1: जी,
0: वो 35-35, 40-40 फुट के हेडगेयर आप देख रहे हो,
1: हाँ,
0: उसके बाद इतने बड़े बड़े कॉस्ट्यूम देख रहे हो, प्रिमिटिव कलर से इतनी ब्यूटी क्रिएट की जा रही है, 100-100 चंडे बज रहे हैं, वो इतनी धारदार हथियार लेके वो उर्मी और ये मार्शल आर्ट कलरी पाइटू सब उसमें सम्मिलित है। तो वो देखने के बाद तो एक पहले दिन तो मैं 6 घंटा उसी को देखते ही रह गया
1: जी,
0: खाना पीना सब भूल गया, क्योंकि वो अप्लाइड थिएटर है।
1: हाँ,
0: वो रिचुअल को पॉपुलर करने के लिए थिएटर का यूज किया है। तैयम का मतलब होता है दैवम।
1: अच्छा,
0: दैवम मतलब देव
1: जी,
0: उसका वो मलयाली करप्ट प्रोनंसिएशन है, गलत, मतलब जो मलयाली के हिसाब से ठीक है
1: जी जी जी,
0: पर वो प्रोनंसिएशन है तैयम। तैयम का मतलब है देव।
1: देव
0: जो परफॉर्म कर रहा है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो देव बनकर आपके सामने नाच रहा है।
1: क्या अनुभूति है, वाह।
0: मतलब वहां कोई जो एक्टर है पीछे, उसकी आइडेंटिटी खत्म की जाती है मेकअप से, कॉस्ट्यूम से, और पता ही नहीं चलता
1: कि कौन है।
0: यूनुस जी परफॉर्म कर रहे हैं या वामन केंद्रे कर रहे हैं और कोई है। उसका एक एक मेकअप करने के लिए 4-4, 5-5 घंटा लगता है, उसकी आइडेंटिटी खत्म करने के लिए। और वो सारा का सारा जो करने वाले लोग है वो गांव के है, कम्युनिटी के सबसे निचले स्तर के लोग है। उसको एक दिन भगवान बनने का मौका मिल रहा है, पूरी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार है।
1: वाह, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: उसके नीचे से जर्नी हो नहीं सकती।
1: इतना बड़ा है वो,
0: इतना ऊंचा है और कुछ कुछ राउंड है। कुछ कुछ जो वॉरियर्स है वो और स्लीक है, उसके हाथ में वो जो लपलपाती तलवार होती है दूधारी, दोनों धाराएं काम करती है, ऐसे दो दो तलवार से वो लड़ता है, दिखाता है उसका कसब कौशल। तो वो सब करने के लिए उसका प्यूरिफिकेशन होता है।
1: ओके,
0: तीन तीन महीना, जैसे हमारे रामनगर में या रामलीला में होता है, वो बच्चे सेलेक्ट करते हैं तो उनका प्यूरिफिकेशन होता है, उसी तरीके से इस आदमी का भी प्यूरिफिकेशन होता है। वो दिसंबर से मई के बीच में तैयम होता है, तो तीन महीना पहले उसको अपने औरत के साथ से दूर रहना है, उसको ये नहीं खाना है, उसको ये खाना है, उतनी इतनी बार नहाना है, वगैरह वगैरह वगैरह जो भी उनकी रिचुअल्स है। और जब वो पूरा गांव उसके सामने नतमस्तक होता है, अब मान लो मैं एक उदाहरण देता हूं, ती चामुंडी, ती का मतलब होता है फायर, आग, उसकी देवता। अब जैसे हमारे यहां होली होती है, बड़े बड़े ट्रक के ट्रक लकड़ियां वहां लाई जाती हैं और जो मंदिर का परिसर है उसको कावो बोलते हैं, तो वो बहुत बड़ा होता है कावो, वो मंदिर छोटा है क्योंकि वो गांव का मंदिर है, पर उसके आंगन में और वहां पर जो कठड़ा होता है, जो बैरिकेड वाली दीवारें होती है, उसी के साथ बैठने की व्यवस्था है, काइंड ऑफ ऑडिटोरियम। और वो आग जलाई जाती है ती चामुंडी में, और रात भर वो आग जलने के बाद जब जलते कोयले में वो मेकअप कॉस्ट्यूम पहन के उसको 32 बार पेट पे जंप करना है,
1: अरे
0: और 32 बार पीठ के बल जंप करना है। वो जो नारियल के कॉस्ट्यूम बनाए जाते हैं नारियल के पत्तों से, जलकर जिसको बोलते हैं ना हम, जो खराटा हो जाना मराठी में बोलते हैं, वो जल के राख हो जाते हैं, ऐसा काम जो करता है। और वो देखने के लिए हजारों की तादाद में ऑडियंस है वहां, जो वो परफॉर्मेंस देखने नहीं आए, वो भगवान को देखने आए,
1: आस्था है,
0: आस्था है उसके पीछे, इसीलिए वो एक काइंड ऑफ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है।
1: जी,
0: जैसे अमेरिका में थैंक्स गिविंग है, तो भाई इतना सारा इस साल क्या धान आ गया, नारियल आ गया, फल आ गया, फूल आ गया, ये भगवान को ऑफर वापस करना तेरे हिस्से का, उसको धन्यवाद करने के लिए तैयम वो भगवान निकलता है।
1: अच्छा,
0: सो नोबडी परफॉर्म्स दैट, इट इज बिलीव्ड दैट दैट पर्सन इज गॉड हिमसेल्फ।
1: वाह,
0: अब ये सब देखने के बाद ऐसा लगा कि ये बनने के लिए पूरी कम्युनिटी वही करती है, दो तीन कम्युनिटी है जो वहां का वंचित कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी से ये लोग काम करते हैं। तो मैंने ऐसे ती चामुंडी करने वाले कुछ कलाकारों को मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा स्किलफुल वही है। तो 40-42 साल में वो सारे खटिया पे पड़े हैं अपने अपने गांव में, जल जाता है।
1: जी, जी, जी।
0: अंदर कितना जलता है किसको नहीं मालूम, वो सारे टीबी के इन्फेक्शन से पड़े हुए लोग हैं, उनके इंटरव्यू किए मैंने, और कोई एक पेपर में तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था गॉड ऑन फायर। तो ये सब देखने के बाद आपको वो सब समझ में आता है, जो इंडियननेस को हम ढूंढ रहे हैं वो कहां कहां है, कलर्स में है, साइज में है, शेप्स में है, आकारों में है, अनुभूति में है, वाद्यों में है, माहौल में है, और कुल मिलाकर आपको वो, मुझे लगता ही नहीं था ये मेरा माहौल है, मुझे लगता था ये मेरा है, पर मैंने कभी इसका अनुभव नहीं किया।
1: जी,
0: वो द्रविड़ी कल्चर का पूरा गढ़ है, ये चार राज्यों ने मुझे लगता है कि एक भारत की बहुत अलग अस्मिता को आज तक जिंदा बनाए रखा हुआ है। एंड आई एम कॉम्बिनेशन ऑफ दैट एक्सपोजर एंड नॉर्थ इंडियन एक्सपोजर,
1: एक संगम हो रहा है।
0: तो मेरे नाटकों में अगर आपको कुछ अलग दिखता है तो ऊर्जा वहां की, विजुअल्स वहां के, नो इमिटेशन, इट इज इवॉल्व्ड थिंग।
1: जी,
0: तो मुझे कभी भी ये मोह नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं नाटक में डायरेक्टर बनना चाहता था तो मेरे सामने मेरी फिलोसफी क्या होगी, मैं कौन से फिलोसफी के नाटक करूंगा, मतलब जिसको हम रंग भाषा बोलते हैं नाटक की भाषा में, वो कौन से करूंगा। वो सारा रिसर्च खत्म होने के बाद जब मैं वापस आया तो मेरे सामने सवाल था, लोक शैलियों में हमने चाहे भवाई में किया, तमाशा में किया, रामलीला में किया, रासलीला में किया, यक्षगान में किया, नौटंकी में किया या नाच में किया, सब हो गया। उसमें तो हमारे दो जो महाकाव्य है, रामायण है या महाभारत है, वो तो फिट हो ही जाते हैं, हमारी जो दंत कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, जो भी है वो सारी फिट हो जाती है। आप चरणदास चोर को कर सकते हो उसमें, क्योंकि वो भी एक कथा है, दंत कथा, ये जो भी कथा है। तो मेरे सामने सवाल था कि मैं हबीब साहब की तरह नाटक करूंगा, मैं कावालम नारायण पनीकर की तरह नाटक करूंगा, मैं जब्बार पटेल की तरह नाटक करूंगा, मैं विजया मेहता की तरह नाटक करूंगा, शांता गांधी की तरह नाटक करूंगा, या प्रसन्ना की तरह नाटक करूंगा, किसकी तरह का नाटक करूंगा।

मैंने पहले तय किया कि मुझे किसी भी तरीके का नाटक नहीं करना है। वो रतन थियाम मेरे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग डायरेक्टर रहे, उनका भी मैंने कुछ नहीं लिया, लेना ही नहीं, क्योंकि तब तक

0: अगर वो मुझे मेरी कहानी कहने के लिए उपयोग में आता है तो मैं इसके शरण जाऊंगा।
1: वाह वाह वाह।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 27 अगस्त तक जापान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। श्री गोयल इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक और उपभोक्ता क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के साथ बैठक करेंगे। उनके साथ विभिन्न क्षेत्रों के 200 से अधिक कारोबारियों का प्रतिनिधिमंडल भी जा रहा है। ब्रिक्स के खेल मंत्रियों की बैठक आज विशाखापत्तनम में आयोजित की जा रही है। बैठक में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों का स्वागत किया। बैठक के अंत में साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उज्जैन के पवासा में आयोजित रक्षाबंधन महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बहनों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एक पोस्ट में कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड में विकास की दृष्टि से न केवल आसपास के क्षेत्र का परिदृश्य बदलेगा, बल्कि मध्य प्रदेश में सिंचाई, पेयजल तथा ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। राजधानी भोपाल में कल से 10 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू हो रही हैं। इसके बाद शहर में कुल 30 ई बसें 3 रूट पर चलेंगी और यात्रियों को हर 10 से 15 मिनट में बस उपलब्ध होगी। सभी बसें एमपी नगर से होकर गुजरेंगी। और महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को यह मैच जीतना होगा। पूल ई का यह मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े पर। संदर्भ है 25 अगस्त से 8 सितंबर। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। दोस्तों, क्रम जीवनालोक में हम चर्चा करेंगे खेल संयम और जीतने की प्रेरणा देते हैं विषय पर, और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं क्रम आज की बात में हमारे विषय राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा पर। दोस्तों, राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा भारत में हर वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाना और अंधत्व से पीड़ित लोगों के जीवन में प्रकाश लाना है। दोस्तों, नेत्रदान एक महान सामाजिक और मानवीय कार्य है, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आंखों की कॉर्निया का उपयोग किसी जरूरतमंद व्यक्ति की दृष्टि लौटाने के लिए किया जाता है। साथियों, आंखें हमारे शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं। इनके माध्यम से हम संसार की सुंदरता को देख पाते हैं और अपने दैनिक कार्य आसानी से कर पाते हैं। लेकिन अनेक लोग जन्मजात समस्याओं, बीमारी या दुर्घटना के कारण दृष्टिहीन हो जाते हैं। कॉर्निया की खराबी से होने वाले अंधत्व के कुछ मामलों में मृत व्यक्ति की दान की गई कॉर्निया प्रत्यारोपित करके दृष्टि वापस लाने में सहायता मिल सकती है। इसलिए नेत्रदान को मानवता की सेवा का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। भारत में नेत्रदान के बारे में अभी भी अनेक भ्रांतियां और गलत धारणाएं मौजूद हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नेत्रदान करने से चेहरा खराब हो जाता है या इससे धार्मिक परंपराओं में बाधा आती है। वास्तव में नेत्रदान की प्रक्रिया सम्मान पूर्वक और प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों द्वारा की जाती है, इसलिए समाज में सही जानकारी पहुंचाना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के दौरान स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और सामाजिक संस्थानों द्वारा रैलियां, पोस्टर प्रतियोगिताएं, भाषण प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिताएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को समझाया जाता है कि मृत्यु के बाद आंखें दान करने का संकल्प किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में नई रोशनी ला सकता है। परिवार के सदस्यों को भी इस विषय में जानकारी देना आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु के बाद समय पर नेत्रदान की प्रक्रिया शुरू करना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, नेत्रदान केवल आंखों का दान नहीं बल्कि किसी के जीवन में प्रकाश देने का संकल्प है। एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी दान की गई कॉर्निया दो जरूरतमंद लोगों की दृष्टि बहाल करने में उपयोग हो सकती है। इस प्रकार एक व्यक्ति का छोटा सा निर्णय किसी दूसरे परिवार के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आज आवश्यकता है कि युवा पीढ़ी नेत्रदान के महत्व को समझे और समाज में जागरूकता फैलाए। हमें अंधविश्वास और भ्रांतियों को दूर करके लोगों को वैज्ञानिक एवं सही जानकारी देनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार नेत्रदान का संकल्प लेने और अपने परिवार को इसकी जानकारी देने के बारे में विचार करना चाहिए। दोस्तों, राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा हमें यह संदेश देता है कि मृत्यु के बाद भी हम किसी के जीवन में रोशनी छोड़ सकते हैं। यदि समाज का प्रत्येक जागरूक नागरिक नेत्रदान के महत्व को समझे तो अनेक दृष्टिहीन लोगों के जीवन में आशा की किरण जगाई जा सकती है। दोस्तों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर चर्चा करने का। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों और वैज्ञानिक प्रगति को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इस ऐतिहासिक उपलब्धि की स्मृति में भारत सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। दोस्तों भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम देश के महान वैज्ञानिकों और दूरदर्शी नेताओं के प्रयासों का परिणाम है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उनके नेतृत्व और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपनी यात्रा शुरू की। बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इस यात्रा को आगे बढ़ाया और अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। साथियों भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में कई उल्लेखनीय मिशन पूरे किए हैं। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की उपस्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। इसके बाद चंद्रयान 2 मिशन ने भारत की तकनीकी क्षमताओं को और मजबूत किया। चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत को चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों की सूची में शामिल कर दिया। यह उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों इंजीनियर

इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की मेहनत और प्रतिभा का परिणाम है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का उत्सव नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों और युवाओं को विज्ञान तथा तकनीकी के प्रति प्रेरित करने का अवसर भी है। इस दिन देश भर में विज्ञान प्रदर्शनियां, व्याख्यान, क्विज, मॉडल निर्माण, निबंध प्रतियोगिता, अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और नई खोज करने की इच्छा विकसित होती है। दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान का महत्व केवल चंद्रमा या मंगल की खोज तक सीमित नहीं है। आज अंतरिक्ष तकनीक हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। मौसम की जानकारी, दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण, जीपीएस, नेविगेशन, कृषि, आपदा प्रबंधन तथा प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी में उपग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के उपग्रह देश के विकास और सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में आत्मनिर्भरता पर भी विशेष ध्यान दिया है। कम लागत में सफल अंतरिक्ष मिशन पूरे करना भारत की विशेष उपलब्धि है। भविष्य में भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान, नए चंद्र मिशनों और अन्य ग्रहों के अध्ययन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। गगनयान जैसे मिशन भारत की अंतरिक्ष यात्रा के नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत की वैज्ञानिक शक्ति, प्रतिभा और उपलब्धियों का प्रतीक है। यह दिवस हमें अपने वैज्ञानिकों के योगदान को याद करने और नई पीढ़ियों को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर देश को ज्ञान, अनुसंधान और तकनीक के क्षेत्र में और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है जीवन आलोक में हमारे आज के विषय खेल संयम और जीतने की प्रेरणा देते हैं पर चर्चा करने का। दोस्तों खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि वे हमारे शरीर को स्वस्थ, मन को प्रसन्न और व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं। खेलों के माध्यम से हमें अनुशासन, संयम, धैर्य, परिश्रम, सहयोग जैसे अनेक गुण सीखने को मिलते हैं। खेल हमें कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना सिखाते हैं। इसलिए कहा जाता है खेल संयम और जीतने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों खेलों में सफलता प्राप्त करने के लिए नियमित अभ्यास और अनुशासन आवश्यक होता है। खिलाड़ी को समय पर उठना, व्यायाम करना, अभ्यास करना और अपने खान पान पर ध्यान रखना चाहिए। वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखता है। उसे कई बार आराम, मनोरंजन और अन्य सुख सुविधाओं का भी त्याग करना पड़ता है जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इस प्रकार खेल हमारे अंदर संयम और आत्मनियंत्रण की भावना विकसित करते हैं। दोस्तों खेल हमें हार और जीत दोनों को स्वीकार करना सिखाते हैं। हर खिलाड़ी हमेशा जीत नहीं सकता, कभी कभी पूरी मेहनत करने के बाद भी हार का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में निराश होने की बजाय खिलाड़ी अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। हार उसे दोबारा मेहनत करने और

0: बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, जीतने की इच्छा हर खिलाड़ी में होती है। प्रतियोगिता में भाग लेने से व्यक्ति अपने अंदर छिपी क्षमता को पहचानता है। वह अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करता है। जीत का लक्ष्य उसे कठिन परिश्रम करने और चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है। लेकिन खेल यह भी सिखाते हैं कि जीत केवल परिणाम का नाम नहीं है। ईमानदारी से प्रयास करना, नियमों का पालन करना और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना भी बड़ी सफलता है। दोस्तों, खेल टीम भावना भी सिखाती है। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी जैसे खेलों में सभी खिलाड़ी आपस में मिलकर काम करते हैं। एक खिलाड़ी अकेले पूरी टीम को नहीं जीत दिला सकता। सभी खिलाड़ियों का सहयोग, विश्वास और आपसी समझ आवश्यक होती है। इससे व्यक्ति दूसरों का सम्मान करना और सामूहिक लक्ष्य के लिए काम करना सीखता है। साथियों, विद्यार्थियों के जीवन में खेलों का विशेष महत्व होता है। पढ़ाई के साथ खेलों में भाग लेने से उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेल तनाव कम करते हैं और एकाग्रता बढ़ाने में सहायता करते हैं। खेलों से आत्मविश्वास बढ़ता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता विकसित होती है। खेलों में प्राप्त अनुशासन और धैर्य का लाभ विद्यार्थी अपने अध्ययन और भविष्य के जीवन में भी उठा सकते हैं। साथियों, खेल हमारे जीवन के शिक्षक की तरह होते हैं। वे हमें संयम रखना, हार से सीखना, जीत के लिए प्रयास करना और दूसरों का सम्मान करना सिखाते हैं। खेलों से मिलने वाली प्रेरणा केवल मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। इसलिए कहा जाता है, खेल संयम और जीतने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा ये गीत।
1: सावन का महीना

0: का शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: बाबा।

0: यह है आकाशवाणी का सागर केंद्र, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूं।
1: नगर निगम सागर प्रस्तुत करता है
2: मैं सागर हूं।
1: सागर का चप्पा चप्पा अपने विकास की कहानी कह रहा है। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी सागर की पहचान।
3: सागर को बनाएं अपने सपनों का सागर।
1: अपने सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सागर नगर निगम का सहयोग करें।
4: नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी।
1: मैं सागर हूँ। इस प्रोग्राम में स्वीकार कीजिए साहिबा
5: और नासिर का
1: नमस्कार। सागर का हर चौराहा, हर गली अपने में कई कहानियाँ समेटे हुए है। ऐसी ही कुछ कहानियाँ हम आपसे साझा करेंगे इस प्रोग्राम में। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियाँ हैं, तो हमें लिखकर भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9302911960 पर। इस कार्यक्रम में शामिल हैं सागर वासियों की पुरानी यादें, आजकल के उनके अनुभव और सुझाव भी।
6: नमस्कार सागर वालों, राम राम। सागर मध्य प्रदेश में जुलाई 2026 की शुरुआत के साथ ही मानसून सक्रिय हो चुका है। इस मौसम में शहर को बीमारियों से बचाने के लिए, जलभराव रोकने के लिए नगर निगम सागर द्वारा स्वच्छ और जल निकासी के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। तेज बारिश के कारण ग्रामीण व निचले इलाकों के नाले और पुलिया में जल स्तर अचानक बढ़ जाता है। सभी नागरिकों से निवेदन है, उफनते नदी नालों के पार ना करें, जिससे कोई अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त हो। सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जरूरी सावधानी, अपने घरों के आसपास छतों पर, पुराने गमलों में, टायरों में पानी जमा ना होने दें। बारिश में पानी के स्रोत दूषित हो जाते हैं, इसीलिए पानी उबालकर या छानकर पिएं। साथ ही बारिश के समय अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। बच्चों को नदी नाले के पास अकेले ना जाने दें। धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना।
1: अपने नगर में स्वच्छता को बढ़ाना है, हमें बेहतर करके दिखाना है। इस उद्देश्य को साथ लेकर हम सब साथ चल रहे हैं नगर निगम सागर। अधिक जानकारी देते हुए ये हैं नगर निगम कमिश्नर श्री राजकुमार खत्री।
7: जहाँ तक स्वच्छता सर्वे के जो आयाम का जो एक मामला है, ये इसकी जो स्टार्टिंग इस बात से हुई थी कि जो है सबसे पहले हम लोग खुले में शौच से मुक्त रहें, तो उसको लेकर

0: सागर ऑलरेडी खुले में शौच से मुक्त है। इसके बाद इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण जो पड़ाव था वो ये था कि कचरा जो है हमारा डोर टू डोर कलेक्शन हो जाए, कचरे का प्रॉपर जो है सेग्रीगेशन हो जाए, प्रॉपर उसका साइंटिफिक डिस्पोजल हो जाए। इस दिशा में भी सागर नगर निगम लगभग 90% के आसपास पूरी तरीके से कामयाब तरीके से कार्य जो है कर रहा है। इसके बाद जो इसके जो आयाम आते हैं कि ये जो हमारे पब्लिक टॉयलेट्स हैं, जो घरों में जो लोगों के अपना सीवर है उसका प्रॉपर चैनलाइजेशन होना, उसको लेके सीवर प्लांट होना, वो भी उसको लेके भी सागर के पास प्रॉपर जो है प्लांट है उसको लेके प्रॉपर सागर नगर निगम में लोगों के द्वारा कनेक्शन दिए गए, कुछ छूटे हुए हैं उन पे भी काम जो है चल रहा है। इसके अलावा हमारे चौक चौराहे उनकी दृश्यमान स्वच्छता, स्कूल कॉलेजेस सरकारी ऑफिसेस सभी इसके एक हिस्सा होते हैं। बेसिकली इसमें कुछ भी जो सागर शहर के अंदर की जो भी सीमाएं हैं उसके अंदर जो जो चाहे वो हमारी बैक लेन हो, चाहे हमारे फ्रंट लेन हो, चाहे हमारे रोड्स हो, चाहे हमारे डिवाइडर्स हो, चाहे हमारे घाट हो, या हमारे बाजार क्षेत्र हो, या हमारा आवासीय क्षेत्र हो। जैसे कि देखिए हमारी मान्यता ऐसा है कि सामान्यतः कचरा कुछ भी नहीं होता है, बेसिकली जो भी चीजें होती हैं वो हमारे उपयोग की होती हैं, बाद में फिर उसका जो कुछ जिसको हमने बेस्ट नाम दे दिया है उसका एक निस्तारण हमारे पास एक बड़ा जो है टास्क होता है। तो इसमें हमारे घरों में गीली या सूखी तरह की दो तरह की चीजें आती हैं, उसके लिए हमारे लिए सभी से ये अपेक्षा की जाती है जो हमारे रहवासी हैं कि आप अपने घर में डस्टबिन का जो है उपयोग करें, गीला सूखा कचरा अलग रखें, और जब कचरा गाड़ी जो आए तो उसमें गीला कचरा गीले वाले ब्लॉक में, सूखा कचरा सूखे वाले ब्लॉक में, इसको लेके हमारे यहाँ जो नगर निगम की जो गाड़ियां जो चलती हैं उनको बात के लिए ट्रेंड किया गया कि गीला कचरा गीले में, सूखा कचरा सूखे में रखें, जिससे इसका कई बार पुनः उपयोग से करते हैं। देखिए इसका जो है हमारे पास जो है मसवासी जो प्लांट है वहां पर इसमें गीला कचरा सूखा कचरा के अलग अलग निस्तारण के लिए वहां पर वो प्लांट जो है लगा हुआ है, जहाँ सूखे कचरे से हमें कई तरह की ऐसी सामग्रियां जो है प्राप्त हो जाती है जिनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, और जो हमारा गीला कचरा होता है उसके माध्यम से खाद या कंपोस्ट बनाने में हमको जो है मदद मिलती है, जिसको कि बाद में किसानों और अन्य जहाँ जहाँ जरूरत होती है फर्टिलाइजर कंपनी वगैरह से भी हमारा टाई अप है, उनको वो बेचा जाता है। और यही बात प्लांट पे जाके होती है, यही वाला सारा काम आम आदमी अपने घर पे भी कर सकता है। जो गीला कचरा है उसके लिए घर पे मटका खाद वगैरह बनाकर अपने किचन गार्डन में वो उपयोग कर सकता है, तो वो भी हमारे सुखता सर्पी में जो हमको मदद करती है। बाकी जो आपका सॉलिड जो वेस्ट होता है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको वो अपने घर में पुनः उपयोग कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं करके उस कचरे की जो तादाद जो है खुद ब खुद कम हो जाती है। इसलिए सोर्स सेग्रीगेशन पे ज्यादा जो है दिशा में आप लोगों के साथ साथ शहर की आम जनता का भी बहुत ज्यादा सहयोग लगेगा। सागर नगर निगम दिशा में लगातार प्रयासरत है सागर शहर को उतना साफ सुथरा और व्यवस्थित भी रखना है, क्योंकि सागर नगर निगम हर दिन शहर को साफ करता है, फिर दूसरे दिन फिर वैसा गंदा होता है, फिर उसको साफ करना होता है, तो आम नागरिकों की भागीदारी उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। कृपया कर आप लोग अपने व्यवहार के साथ साथ सागर नगर निगम के साथ मिलकर मदद करें।
1: ये आवाज मनीष जाटव की।

0: दिन ब दिन सागर और भी सुंदर होता चला जा रहा है। इसकी और भी कहानियों को समेटकर हम जल्द ही आपसे फिर मिलने आएंगे अगले अंक में। तब तक इजाजत दीजिए साहिबा को
1: और नासिर को।
0: नमस्कार।

0: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से। अपने सागर से जुड़ी कुछ और बातें लेकर आएंगे हम अगले अंक में।
1: सागर का चप्पा चप्पा अपने विकास की कहानी कह रहा है। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी सागर की पहचान।
2: सागर को बनाएं अपने सपनों का सागर।
1: अपने सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सागर नगर निगम का सहयोग करें।
0: नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी। मैं सागर हूँ।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नगर निगम सागर।
3: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण FM 102.6 MHz पर। 5:40 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम की पहली पेशकश सुचित्रा की आवाज में, जिसकी धुन बनाई है रहमान राजन ने, बोल अरुण राज के हैं।

0: का व्यापार आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक, समय होता है सुबह 11 से 11:30 बजे तक।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: और अब आइए सुनते हैं शुभा मुद्गल को, प्रसून जोशी के बोल हैं, धुन तैयार की है शांतनु मोहित्रा ने।

0: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।
1: और अब आइए सुनते हैं कृष्णा की आवाज में उन्हीं का कंपोज किया हुआ ये गीत, बोल हैं फैज अनवर के।

और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं गुलजार का लिखा गीत भूपेन हजारिका की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बैठक 2026 के अंतर्गत सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने खेल विकास, युवा भागीदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने व्यवहारिक और सतत सहयोग के साथ ब्रिक्स खेल भागीदारी का निर्माण करने का आह्वान किया। उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धा और खेल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी साझा करने का प्रस्ताव किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
2: हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है। आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरईसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। ICMR के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पडिकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल

0: श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
3: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
2: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
4: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
6: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
5: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
6: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
5: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
6: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
5: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
6: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुझे बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपके आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम सदाबहार गीत। पहला गाना है फिल्म नसीब अपना अपना से, आवाज शब्बीर कुमार की है। एसएच बिहारी ने गीत लिखा है और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और अगला सदाबहार गाना है मोहम्मद रफी की आवाज में, लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, धुन तैयार की है रवि ने, फिल्म का नाम नई रोशनी।

और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं नाचे मयूरी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजें हैं, आनंद बख्शी ने ये गीत लिखा है और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो नाचे मयूरी फिल्म का ये गाना।

Patrick,

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के गाए इस गीत के साथ कार्यक्रम सदाबहार गीत अब समाप्त हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:45 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। लोक रंग में सबसे पहले सुनते हैं ये वर्षा गीत केशव सुल्लेरे की आवाज में।

0: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सरस्वती झा से ये लोकगीत।

शकुंतला झा के गाए, माफ कीजिएगा सरस्वती झा के गाए इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोकरंग अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, शाम के 7 बजने को हैं।

0: स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में संपन्न हुई। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बैठक 2026 के अंतर्गत सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने खेल विकास, युवा भागीदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय योग को प्रोत्साहन देने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने व्यावहारिक और सतत सहयोग के साथ ब्रिक्स खेल भागीदारी का निर्माण करने का आह्वान किया। उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धा और खेल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी साझा करने का प्रस्ताव किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
2: हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरईसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वह महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्टस एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने स्पष्ट किया है कि वायरस H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौजूदा समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। ICMR के अनुसार H1N1 समेत मौसम में इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये है आकाशवाणी का सागर केंद्र। शाम के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आपका स्वागत है। सुनिए हमारे स्टूडियो से

प्रसारित और अनुप्रसारित कल के कार्यक्रम और आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। कल प्रातः 6 बजे सुनिएगा हिंदी में समाचार, दिल्ली से रिले करेंगे। 6:05 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। कार्यक्रम विवरण का वक्त होगा कल सुबह 6:25। 6:30 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। स्वर होगा रंजना जोगलेकर का। भूले बिसरे गीत सुनिएगा सुबह 6:40 पर। संस्कृत समाचार प्रातः 6:55 से दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 7 बजे होगा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह और 7:05 पर सुनिएगा कृषि संकेत। प्रातः 7:10 पर प्रादेशिक समाचार भोपाल से रिले करेंगे। 7:20 पर होंगे मनचाहे गीत और 7:45 पर संगीत सरिता। समाचार प्रभात रिले करेंगे सुबह 8 बजे दिल्ली से। लोक संगीत का वक्त होगा 8:15। 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम बिंदिया। 9 बजे से विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे। 9:50 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार। जिले की चिट्ठी सुनेंगे 10 बजे भोपाल से। 10:05 पर सुनिएगा फोन करें लोकगीत सुने। 11 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 11:30 से विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे। दोपहर में 2 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फिल्म संगीत आप सुनेंगे, रिले करेंगे भोपाल से। प्रादेशिक समाचार भोपाल से ही होंगे 2:10 पर। 2:15 पर दोपहर में दोपहर समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे। दिन में 2:30 विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे। शाम 5 बजे सुनिएगा इस घंटे की सुर्खियां भोपाल से। संगीत सरिता का आनंद लीजिएगा शाम 5:30 पर। शाम 5:02 से युववाणी भोपाल से रिले किया जाएगा। शाम 6 बजे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई से। 6:30 पर होंगे सदाबहार गीत। 6:45 पर सुनिएगा लोकरंग। 7 बजे हिंदी में समाचार दिल्ली से। 7:05 पर कार्यक्रम विवरण। 7:10 पर भोपाल से होंगे प्रादेशिक समाचार और शाम 7:20 पर सुनिएगा ग्राम सभा। रात्रि 8 बजे चित्रपट संगीत होगा। 8:20 पर संगीत सरिता। 8:45 पर समाचार संध्या दिल्ली से और 9 बजे होंगे मनचाहे गीत। 9:30 से विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे। तो ये तो थे हमारे कल के कार्यक्रम और अब आज के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ देर बाद यानी 7:10 पर प्रादेशिक समाचार भोपाल से रिले करेंगे। 7:20 पर सुनिएगा ग्राम सभा। सुर्खियों में यह कार्यक्रम भोपाल से रिले करेंगे रात्रि 8 बजे। 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम डगर विकास की, रिले करेंगे भोपाल से। रात्रि 8:30 पर होगा चित्रपट संगीत और 8:45 पर समाचार संध्या दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 9 बजे होंगे मनचाहे गीत और 9:30 से विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे। और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ। यह है आकाशवाणी सागर FM बैंड 102.6 MHz पर। शाम के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार भोपाल से रिले करेंगे बस कुछ ही देर में।

0: दी, ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
2: दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा।

0: सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
1: आई नो ना।
0: RBI कहता है,
2: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस टेक स्टार्टअप्स से भारत को वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे ले जाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। वन विभाग में पदोन्नत कर्मचारी कल भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त करेंगे। और प्रदेश के श्योपुर, मुरैना सहित 14 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनियों के प्रमुख के साथ बातचीत में कहा कि सरकार की नीतियों में स्थिरता से स्टार्टअप्स में भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिभा, कम लागत और जोखिम लेने की क्षमता के कारण देश अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री ने दुनिया भर की प्रतिभाओं को भारत के स्पेस स्टार्टअप से जोड़ने का आह्वान भी किया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को वैज्ञानिक प्रगति और नवाचार का प्रमाण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र का लगातार विस्तार कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता से भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में साख बढ़ी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज हरिद्वार में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर आयोजित संत समागम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि लगातार होने वाले चुनाव विकास के काम में बाधा डालते हैं। चुनावी ड्यूटी में शिक्षक, कर्मचारी, पुलिस और प्रशासन का समय लगता है और सरकारी धन भी खर्च होता है। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव होने से समय और संसाधनों की बचत होगी। श्री चौहान ने संत समाज से एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए लोगों को जागरूक करने की अपील की।
1: मैं यही प्रार्थना करूंगा अंत में कि एक राष्ट्र एक चुनाव, इसका हम संकल्प है। इसके लिए प्रचार करें, जनमानस बनाएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे और वातावरण ऐसा बन जाएगा कि कोई राजनीतिक दल इसका विरोध करने का साहस ना कर पाए।
0: केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सोमवार को रायसेन में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वह सुबह कन्या महाविद्यालय में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन गर्ल्स स्कॉलरशिप कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद पौधरोपण और मेधावी छात्र सम्मान समारोह में भाग लेंगे। शाम 3 से 6 बजे तक दिशा समिति की बैठक में जिले के विकास कार्यों और केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। वन विभाग में पदोन्नति पाने वाले शासकीय सेवक कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त करेंगे। भोपाल के भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में सुबह 11 बजे आभार समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। समारोह में पदोन्नत कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ बेहतर काम के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE और यंत्र इंडिया लिमिटेड YIL की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि

0: पूजन समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जीआरएसई भविष्य में जहाज निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सकती है। श्री सिंह ने कहा कि विश्व को निर्यात किए जाने वाले रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समय पर वितरण पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि सशस्त्र बल अब रक्षा आवश्यकताओं के लिए स्वदेशी उत्पादों पर निर्भर हैं।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और हमने यह साबित किया है कि आत्मनिर्भरता यह हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरएसई तथा यंग इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है।
0: राजगढ़ जिले के करनवास थाना क्षेत्र में आज महाकाल दर्शन कर झांसी लौट रहा एक परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया। ग्राम परसुलिया के पास तेज रफ्तार बलेनो कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों को ब्यावरा अस्पताल ले जाया गया जहां 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें भोपाल रेफर किया गया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा यानी FMGE पास कराने के नाम पर पैसे मांगने के दावे सामने आए हैं। सरकार ने छात्रों से ऐसे लोगों के झांसे में न आने और किसी भी तरह की धनराशि नहीं देने की अपील की गई है। संदिग्ध सरकारी जानकारी की PIB फैक्ट चेक को भेजने की सलाह दी गई है। कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने राजगढ़ जिले के सारंगपुर की याशिका मिश्रा का सम्मान किया, जिन्होंने डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में भाषा विज्ञान विषय की MA परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है। मंत्री ने कहा कि याशिका की सफलता उनकी मेहनत और लगन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि याशिका की उपलब्धि क्षेत्र की अन्य बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणा है। प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ी सारांश जैन ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया है। डॉक विभाग में कार्यरत सारांश के टेस्ट डेब्यू पर केंद्रित मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह टेस्ट कैप सारांश की कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम है। सिंधिया ने उनके सफल टेस्ट करियर के लिए शुभकामनाएं दी। प्रदेश में बारिश का दौर फिर तेज होने वाला है। मौसम विभाग ने आज 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पाडुना, सिवनी, बालाघाट, डिंडौरी और सीधी में भारी बारिश के आसार हैं। भोपाल में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 23 से 26 अगस्त के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर पुलिस ने फर्जी IAS अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने नौकरी लगवाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 9,80,000 रुपए की ठगी की थी। राजगढ़ में कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की तैयारियों और विभागीय प्रकरणों की समीक्षा बैठक हुई। कलेक्टर ने लंबित आवेदनों को समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। खंडवा में ऐतिहासिक पद्मकुंड के संरक्षण के लिए नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों का महापौर ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन कृत्रिम विसर्जन कुंड की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दतिया में साहित्यकार पंडित महेश मिश्र मधुकर की पुण्यस्मृति में आयोजित समारोह में देशभर से आए 100 से अधिक कवि, लेखक, साहित्यकार और पर्यटन एवं विरासत क्षेत्र की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। देवास में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो 1 साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। DBT के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। तुम अपना भी बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: तीनों कॉलेज में
6: डोंट वरी,
5: फीस तो देखो।
7: क्या हाल है, क्या हुआ?
6: फीस की टेंशन,
7: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
8: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4,00,000 रुपए तक, नो कोलैटरल।
7: वो कहाँ है?
8: मिठाई।
9: RBI कहता है,
10: तरों से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा सुनबे बारे सबई किसान भैया बिन्ना पंचो खो सतीश साहू की राम राम पहुंच जाए। ओ भैया हरो, बड़ी प्रतीक्षा रहे थे कार्यक्रम की कि कभी अपने किसान भैया बिन्ना हरों के बीच में पहुंच के और उनसे बतकाव कर ले दें। तो आज बतकाव के इलाने का ले आए हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको ये कार्यक्रम में सुनवाई जो है हम आपको बताएं दे थे। भैया हमारे आपके बतकाव की जो बात हो रही है तो ये मैं सोयाबीन फसल में फूल से फलियों की अवस्था में देखभाल कैसी का रव चाहिए, कैसी का सिफारिश विशेषज्ञ करत हैं, इस पे चर्चा हुई है। संगे संगे भैया आज एक बहुत महत्तम को दिवस है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तो ये दिवस पे भी अपन चर्चा कर हैं। इसके अलावा भैया मनोरंजन के लाने चूँकि साहुन चल रहा है तो आपको झूला गीतों की खूब बहार है तो झूला गीत सुनवा है भैया। और आत है आज की मुख्य जानकारी पे, तो मुख्य जानकारी के तौर पे भेंट वार्ताएं वार्ताएं लेके आते हैं भैया आप और खो। तो आज जो भेंट वार्ता आपको लेके आए हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण भेंट वार्ता है भैया, औषधीय फसल चराईता की उन्नत खेती पे प्रगतिशील किसान तरुण मौर्य जी पिछले दिनों आकाशवाणी में आए थे भैया, तो इनसे जो बातचीत करी गई है भाभी आपके लाने लेके आए हैं हम। और इसके अलावा भैया रोज के क्रम जो है, चाहे वे अनाज भाव की जानकारी हो चाहे मौसम की जानकारी हो, जो तो आपके लाने हम लेके आए हैं। तो अपन भैया शुरू करत हैं, जो हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की आपसे बात कर रहे हैं, तो भारत में हर साल 23 अगस्त माने आज के दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। सन 2023 में आज के दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन माने इसरो चंद्रयान 3 मिशन में सफल भाव तो एक अंतर्गत विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सुरक्षित और सफल लैंडिंग करी थी। अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में भारत की यही सफलता के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी थी, ताकि देश के युवाओं में विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति रुचि को बढ़ावा मिले। भैया हरो, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरवे वारो दुनिया को पहलो देश बनवे की उपलब्धि को सम्मान करवे को दिवस है। आज के दिवस को उद्देश्य देश के युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी के प्रति प्रेरणा जगावो रहे थे। आज के दिन देश भर में विज्ञान से जुड़े अनेक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं को आयोजन करो जाते हैं। 2026 की मुख्य गतिविधियों की बात करें भैया, तो 12 अगस्त माने डॉक्टर विक्रम साराभाई की जयंती से लेकर 18 अगस्त तक इंडिया स्पेस वीक को आयोजन करोगो। एक उद्देश्य वही छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ बो रहो। संगई आज भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति बनाबे के लाने देशवासियों को डिजिटल

0: डिजिटल रूप से शपथ लेबे की भी आमंत्रित करोगाओ है। इसके अलावा भैया देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में चंद्रयान और भविष्य के मिशनों को लेकर विशेषज्ञों के बीच चर्चाएं भी आयोजित करी जा रही हैं। तो इन्हीं सब गतिविधियों के बीच आकाशवाणी सागर की तरफ से भी सभी श्रोताओं सभी नागरिकों को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद भैया कार्यक्रम में अपन आगे बढ़े हैं, ओके पहले अपन सुनते हैं जे संदेश।
1: बुद्धू नई कार जीतने का मौका, वाओ पापा को सरप्राइज दूंगी, बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू,
3: ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
0: तो भैया हरो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की अपन ने चर्चा करी है के बाद ग्राम सभा में कार्यक्रम होते है भैया अपनी जो फसलें हैं अपनी जो खेती बाड़ी है ओकी, तो सोयाबीन फसल में फूल से फलियां बनने की अवस्था में कैसी का देख रेख रहो चाहिए, यही विषय पे आज अपन चर्चा कर रहे थे। तो अगस्त महीना को चौथा हफ्ता शुरू हो चुका है भैया, अपने क्षेत्र में बोनी को समय देखो जाए तो औसतन 50 से 60 दिन की फसल अपनी हो गई है और सोयाबीन फसल की जा अवस्था देखरेख के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मानी जात है। इस समय पे अगर जे पांच काम हमें अपन कर लेते हैं भैया अपनी ज़रूरत के हिसाब से तो अपन को बहुत फ़ायदा इनको मिला थे। पहलो काम अगर अपन देखें तो कीट और रोगों की निगरानी और नियंत्रण। भैया वर्तमान समय में सोयाबीन में गर्डल बीटल है, तम्बाकू की इल्ली है और सेमी लूपर, ऐसे कई कीट जो है आक्रमण सबसे ज़्यादा करते हैं इस समय पे। तो एक लाने हमें हर 2-3 दिन में खेत को जायजा लाओ चाहिए और एक वर्ग मीटर में 5-6 पौधा देखें, अगर उनमें से एक पौधा में 2-3 लार्वा अपन को मिलें तो अपन को कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेके इमामेक्टिन बेंजुएट या प्रोफोनोफास की सिफारिश करी गई मात्रा को निर्धारित पानी में घोल बना के छिड़काव करो चाहिए। यदि पौधों में पीला मोजेक या तना सड़न रोग दिखावे तो तुरंत रोगी पौधा उकाड़ के अपन को नष्ट कर दो चाहिए भैया। दूसरी बात पे अपन आते हैं पानी को प्रबंधन। विशेषज्ञ बताते हैं भैया कि फसल की ये अवस्था में खेतों में नमी रहे वो बहुत ज़रूरी होते हैं। उनसे तो पिछले हफ्ता भर से सोयाबीन के हिसाब की अच्छी वर्षा हो रही है भैया, लेकिन जहाँ पिछले 10-12 दिन से बरसात नहीं भई है और माटी सूखी होए तो उतने हल्की सिंचाई की ज़रूरत रहती है। दूसरी तरफ जो भी बहुत ज़रूरी है कि खेतों में पानी को भराव और ठहराव न हो पाए भैया, कैसे जल भराव की स्थिति से जड़ सड़न और पीला मोजेक रोग बढ़त है। मतलब समझ रहे हैं भैया, केवे को मतलब जो है कि पानी की कमी और पानी की अधिकता दो ही नुकसानदायक हैं, तो इस समय पर भरपूर निगरानी करके अपन को इन दो ही स्थितियों से बचने हैं। तीसरी बात पे आते हैं भैया खरपतवार नियंत्रण। हालांकि खरपतवार के मामले में 45 दिन तक खेत इनसे मुक्त रहो चाहिए और जहाँ अवस्था निकल गई है हमारे किसानों ने खेतों में खरपतवारों को प्रभावी नियंत्रण कर भी ला हुई है, एक बाद अगर अबे की स्थिति में खेतों में खरपतवार दिखा रहे हैं तो उनको नियंत्रण हाथ से निराई करके भाव चाहिए। अब खेतों में खरपतवार नाशक दवाई को उपयोग अपन को ये अवस्था पे बिल्कुल नहीं करो चाहिए भैया, एक ही उपयोग से फूल और फलियों को निष्कान हो सकत है। बात अगली करत है भैया माने चौथी, फली भरबे के लाने पोषक तत्व प्रबंधन। भैया हरो बताई जात है कि फूल आवे के बाद 2% यूरिया और 2% DAP को घोरा 15 दिन के अंतर से 2 बार छिड़कबे से फलियों में दानों को भराव अच्छो होत है। विशेषज्ञों की सलाह से वैकल्पिक तौर पे NPK के 2 स्प्रे भी अपन कर सकते हैं। इस समय पे बोरेक्स के छिड़काव से फूलों को झरबो भी रुकत है, लेकिन भैया जब भी हम फसल में कोई भी दवाई को उपयोग करें इनमें विशेषज्ञों की सलाह ज़रूर लेने हैं। बरन बरन की दवाइयाँ आउत हैं, बरन बरन की मात्राएं बताते हैं, बरन बरन की सलाह अपन को मिलत है, इससे जो एक विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत करने के बाद ही अपन को जो है जे काम करो चाहिए। एक बाद भैया आखिरी और पांचवी बात पे आते हैं जल निकासी को प्रबंधन। ये मौसम की फसल में खेतों में पानी को भराव आम

0: तौर पे देखो जात है और वर्षा काल में जहाँ पानी ज्यादा गिर जात है उते जा स्थिति स्वाभाविक रूप से बनत है भैया, लेकिन खेतों में पानी भरबे के बाद रुक न पाए एक लाने हमें खेतों में जल निकास की व्यवस्था करो चाहिए। नाली बना के खेत को पानी बाहर निकालो चाहिए। कैसे 24 घंटा से ज्यादा अगर जल भराव की स्थिति होत है तो सोयाबीन पीरो परन लगत है। जी काम भैया करबे के हो गए, अब कौन से काम अपन खोन नहीं करने, थोड़ी सी चर्चा ऊपर भी हो जाए। विशेषज्ञों की सलाह से ज़्यादा बहुत अधिक नाइट्रोजन माने यूरिया को उपयोग अपन खोन नहीं करने, इससे पौधा ज़्यादा बढ़ जाए है, मनोफली कम हुई है। जो उनको अपन बुंदेली में कह लगा ना भैया पौधा गर्रा गो है, तो अपन को भैया विशेषज्ञों की सलाह जितनी रहते उतना ही नाइट्रोजन अपन खो जो है यूरिया दो चाहिए। तेज कीटनाशकों को उपयोग अपन खोने करो चाहिए भैया, नहीं तो जो अपने परागण करबे बारे मित्र कीट रहते हैं वे भी समाप्त तो हो सकते हैं। आवश्यक कामों के लाने भर खेत में अपन खो जाओ, बेर बेर अनावश्यक रूप से खेत में जावे से अब फूल पे अपनी फसल है भैया सो फूल झल जाते हैं। तो जे कछु बातें अपन ने करबे वारी करी कछु न करबे वारी करी, तो भैया आशा है कि इन बातों को आप ध्यान रखो और एक बाद भैया अपन मनोरंजन की तरफ चल है। मनो ओ के पहले हम आपको सुनवा रहे हैं जो संदेश।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और भैया जैसो को मनोरंजन को हमने वादा करो तो वादा पे हम कायम हैं। आपको एक झूला गीत लेके आए हैं, झूला झूल रहे गिरधारी, स्वर है सियाबाई जाटव और इनकी सखियों को।

0: तो भैया हरो बड़ो मीठो सो बड़ो उम्दा सुरीलो सो जो अपन ने झूला गीत सुनो एखो गा रही थी सिया बाई जाटो और उनकी गुइया। और एक बाद भैया फिर अपन आगे बढ़त हैं जानकारी के क्रम की तरफ। तो आज जो भेंट वार्ता लेके आए हैं, जैसे कि हमने आपको बताई थी कि पिछले दिनों एक प्रगतिशील किसान तरुण मौर्य जी आकाशवाणी पहुँचे और उनसे बातचीत भाई भैया खास तौर से औषधीय फसल चराइता की। तो जो कैसो नवाचार है जो अपन सुनत हैं और जानत हैं और ए पे अमल भी करत हैं। भैया हरो आप सब जने जानत हो कि किसान वाणी कार्यक्रम में समय समय पे बहुत से विशेषज्ञों को प्रगतिशील किसानों को हमारे आमंत्रित करत हैं और उनके द्वारा दई गई जानकारी आप तक पहुँचात हैं ताकि आप उन्हें भी उसे प्रेरणा ले सको और उस दिशा में काम कर सको। यही क्रम में आज हमारे बीच पधारे हैं पुरानी सदर कैंट सागर से तरुण मौर्य जी। तो तरुण मौर्य जी औषधीय फसलों की खेती करत हैं तो वही विषय पे आज अपन इनसे चर्चा कर रहे हैं। तरुण मौर्य जी सबसे पहले तो आपको हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद जी।
0: और भैया आज काल मेघ चराइता एक फसल होत है, एक हम अपन चराइता चराइता आम भाषा में कहने लगत है, जितने जने कैद हैं अभी तो बहुत से लोग इन फसलों को जानत भी नहीं है तो यही पे अपन चर्चा कर रहे हैं। तरुण मौर्य जी सबसे पहले आप बताओ कि काल मेघ चराइता जा कौन सी फसल है?
1: ये काल मेघ जो एक फसल है ये औषधि फसल में आती है
0: जी,
1: जिसमें बहुत ही कम लागत आती है और बहुत ही आसानी से की जा सकती है। और जैसे कि मालूम है औषधि फसल है तो औषधि जितनी भी फसलें होती हैं ये हमारे लिए औषधि का काम करती हैं, जैसे कि बुखार है, जॉइंटिस्ट है, बहुत सारी जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, इन सब में ये काल मेघ का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है।
0: जी जी। तो एक फ़ायदा आप ऐसे बताओ कि मतलब एक परिष्कृत रूप काम में आता है कि सीधो ये विषय में भी थोड़ी सी आप जानकारी दें।
1: काल मेघ ऐसी औषधि फसल है जिसका पूरा का पूरा पंचांग
0: जी,
1: यानी कि जैसे अपन कहते हैं ना भूसा, इसका भूसा ही सबसे ज्यादा काम में आता है।
0: अच्छा।
1: जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हर्बल हैं तो इनको पाउडर फॉर्म में जो मिलता है तो इसके भूसे को ही मतलब पंचांग को ही पूरा पीस के दिया जाता है।
0: जी जी जी।
1: बीज इसके सिर्फ बोने के काम में आते हैं लेकिन बाकी जो फूल और ये है ये फसल पूरा आपका औषधि के लिए जाता है। जैसे आपने बोला मलेरिया, पेट में बच्चों को कीड़े हो जाते हैं उसके लिए आते हैं, एंजाइटी जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में उसमें होती है, और बहुत सारी फार्मर कंपनी इसका अर्क और भी विभिन्न गंभीर बीमारियों में इसका उपयोग करते हैं।
0: निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद जो कहा। अच्छा आप जो कब से कर रहे हो और कितनी अवधि की जा फसल होत है, कौन से समय पे की बुआई होत है?
1: जी बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये 5 से 6 महीने की फसल है
0: जी।
1: और सबसे पहले बता दें ये बरसाती मौसम की है।
0: अच्छा,
1: फसल
0: अच्छा,
1: है इसको सिर्फ हम बरसात में लगाते हैं और ये उस जमीन में लगती है जहाँ पे जल भराव ना हो।
0: अच्छा।
1: ये हल्की

0: मिट्टी जितनी भी होती है किसान की हल्की दोमट मिट्टी होती है जो इसमें हम बहुत फसल नहीं ले पाते हैं, तो औषधियां की फसल लेके अपने आय का साधन बढ़ा सकते हैं।
1: जी जी जी, मतलब जो मिट्टी पे हमारे किसान भैया हर कछु नहीं ले सकते हैं, खासतौर से खाली छोड़े रहते हैं, वो पे की फसल ले जा सकते हैं। अच्छा, विधि की बात करें जैसे मौर्य जी अपन, तो विधि का रहे थे कि
0: ये काल्मिक या चराइता की फसल दो विधि से होती है। एक तो होती है छिड़काव विधि।
1: जी,
0: छिड़काव विधि से आप अपना बीज को छिटक दें खेत में, और ये सावधानी रहना चाहिए कि उसके ऊपर हमें कुछ भी नहीं चलाना है।
1: अच्छा,
0: बीज बहुत बारीक होता है, वो जमीन स्वतः ही चला जाता है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: उसके ऊपर कोई या सीड ड्रिल से या मशीन से या कुछ उससे बोनी नहीं करनी, सिर्फ हाथ से छिड़काव विधि से ही किया जाता है।
1: जी,
0: तो एक एकड़ में कम से कम आपका 7 से 8 किलो बीज लगता है।
1: अच्छा,
0: दूसरी विधि जो है एक नर्सरी, पहले आप उसकी नर्सरी तैयार कर लें, और जैसे कि भट्टे और टमाटर की अपन नर्सरी को तैयार करके पौधों को शिफ्ट करते हैं, उस तरीके से आप लगा सकते हैं।
1: जी जी जी,
0: तो जब अगर हम नर्सरी कर रहे हैं तो यहाँ में बीज की मात्रा हमारी कम हो जाती है, जहाँ 7 से 8 kg हमारा एक एकड़ में लग रहा था वो हमारा आधा हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: 2 से 2.5 किलो बीज में ही पर्याप्त हो जाते हैं।
1: जी,
0: क्योंकि हम जब पौधे के रूप में हम रोपित कर रहे हैं तो हम पौधे से पौधे के बीच में हम फासला रखते हैं, और उससे क्या है कि फायदा भी होता है।
1: जी,
0: अगर नर्सरी करके कि हमें लेबर कॉस्ट जरूर आती है थोड़ा सा, हमारा इनपुट बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन क्या है उत्पाद बढ़ जाता है हमारा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: स्वस्थ पेड़ को ही हम लगाते हैं, और पर्याप्त डिस्टेंस होता है, जगह होती है, तो वो फलता फूल और स्वस्थ पेड़ हो जाता है,
1: हवा प्रकाश सब चीजें उसको बराबर मिलते हैं। चलो अच्छा, ये दो विधि तो आपने मौर्य जी बता दी है फायदेमंद जो है कतार से कतार नर्सरी लगा के अगर अपन लगाए तो। अच्छा, एक ही देख रेख में दूसरी फसलों की अपेक्षा अगर अपन तुलनात्मक रूप से बात करें तो ज्यादा खर्च या ज्यादा परिश्रम आते हैं या?
0: हाँ, पूर्व में भी जो हमारे प्रसार हुए औषधि खेती में, उसमें भी हमने पहले भी सभी को बतलाया, अभी भी बता रहे कि औषधियां खेती जो होती हैं
1: जी,
0: ये रख रखाव और बाकी तुलनात्मक अन्य फसलों से बहुत ही कम, मिनिमम इनकी जरूरत होती, बहुत ही कम लागत लगती है।
1: जी जी,
0: सिर्फ एक होता है कि शुरुआती टाइम में जब ये जैसे कि आपने रोपण से भी किया या वो, तो जो खरपतवार है सिर्फ उसी को हमें एक बार पहले ध्यान देना होता है, एक बार जरूर हमें खरपतवार के निकालना होता है, वो भी निंदाई के थ्रू।
1: बिल्कुल,
0: हम कोई भी इस पे स्प्रे या खरपतवार नाशक का उपयोग ना करें,
1: नहीं डालें,
0: क्योंकि औषधि का नाम है तो औषधि को हम शुद्ध ही लें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब बहुत ज्यादा परिश्रम और बहुत ज्यादा देखरेख की आवश्यकता ये में नहीं रहे थे। और अब मुख्य बात आत है मौर्य जी सिंचाई की, कैसे अपनो क्षेत्र कम जल वालों बेल्ट मानो जात है, तो सिंचाई की हमें कितनी जरूरत होत है, कितनी बार होत है, 5 महीना की आपने जो अवधि बताई हमें कितनी बार सिंचाई की जरूरत होत है?
0: औषधीय खेती कम पानी में ही होती है
1: जी,
0: और जैसे कि वर्षा ऋतु की फसल है हमारी, बारिश होती है तो वो पर्याप्त होती है, अगर बाय चांस हमारा एक महीने तक बारिश नहीं हुई है
1: जी,
0: तब हम एक सिंचाई देते हैं। दूसरी बात और है कि इसको जैसे भी मैंने कहा फायदा अगर हमें ज्यादा लेना है तो अगर हमें इसका बीज भी लेना है तो फिर आपको अक्टूबर नवंबर के टाइम पे इसमें सिंचाई की जरूरत पड़ जाती है, उस टाइम पे क्योंकि बारिश कम हो जाती है
1: जी,
0: उस ड्यूरेशन में ही हमें 1 या 2 पानी ही देना पड़ता है।
1: अच्छा, और अब हम बात करते हैं मौर्य जी लागत की, तो बीज को मिला के सिंचाई को मिला के सब चीजों को अपन देखें अगर इन 5 महीना की अवधि में, तो कितनी अपनी लागत ए पे लगत है और लागत के बाद कितो उत्पादन होत है, उसे कितो लाभ अपन को मिल जाते हैं एक एकड़ में?
0: लागत की जैसे बात की जाए तो पूरा प्रक्रिया बीज से लेके हमारा थ्रेशिंग तक,
1: जी
0: हमने कहा इसका भूसा होता है तो हम थ्रेशिंग तक के लिए लें
1: जी,
0: तो आपका 20 से लेके 25,000 रुपए
1: जी
0: ही हमारा खर्च होता है।
1: अच्छा, सब मिला के?
0: सभी मिला के, या थोड़ा सा ये होता है कि आपको मान लो कि सीजन है निदाई करवानी लेकिन लेबर नहीं मिल रही है, या कटाई में गए उस टाइम पे अगर आपकी जरूरत है लेबर नहीं मिल रही तो वो लेबर का कॉस्ट बढ़ जाती है, तो वो थोड़ा सा साल में आप भी जानते हैं कि मांग के ऊपर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, हो सकता है 30,000 भी हो जाए
1: जी,
0: लेकिन इससे ज्यादा इसमें कोई लागत नहीं
1: जी।
0: अब आपने बोला कि इससे हमें आय कितनी हो रही है?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: एक एकड़ में जब हम एक फसल बो रहे हैं तो जैसे हमने की भूसा है तो इस फसल को हम 2 भाग में बांट देते हैं, अगर सिर्फ आपको उसका भूसा ही बना के बेचना है
1: जी,
0: तो हम इसको 2 बार कटिंग करके इसको सुखा के, जैसे हमने पहली कटिंग हमने 4 महीने बाद कर ली
1: जी,
0: पहले में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर हमने जड़ से लेके 6 इंची या 4 इंची के ऊपर से उसकी कटाई करके उसके लिए सूखने डाल दिया, 4 से 5 दिन में वो सूख जाएगा
1: जी,
0: उसके बाद उसकी थ्रेशिंग कर लो तो ये भूसा आपको मिल गया। दूसरी उसके बाद में आपकी नवंबर दिसंबर तक आपका दूसरा कटाई के लिए तैयार हो जाएगी।
1: अच्छा,
0: तो उसको फिर कटाई करके सूखने के लिए आप डाल दें, तो इस ड्यूरेशन में पूरा एक आपकी एक फसल में 30 से

0: 40 क्विंटल
1: अच्छा
0: भूसा आपको प्राप्त होगा।
1: अच्छा,
0: रही बात आपकी मार्केट की, तो जैसे वो अभी आप प्रश्न करेंगे कि अगर आपको 30 से 40 क्विंटल आपको प्राप्त हो रहा है और आज की डेट में मंडी में नीमच मंडी में 9000 से 10000 रुपए क्विंटल का आपका भाव चल रहा है, ये घटता बढ़ता रहता है
1: जी।
0: वर्तमान समय देखें, आगे बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयों पर बैन हो रहे हैं
1: बिल्कुल,
0: और
1: बिल्कुल,
0: सरकार भी ये ध्यान दे रही है कि हम औषधि खेती को बढ़ावा दिया जाए, तो अब इनका उत्पादन और लोग भी जागरूक हो गए, हम और आप भी जागरूक हो गए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हम औषधि का ही उपयोग कर रहे हैं, तो इसकी डिमांड अब बढ़ती ही जा रही है
1: जी।
0: हमारे भारत के साथ साथ विदेशों में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है
1: जी,
0: तो इस वजह से अभी फ्यूचर में हमारा जो अभी आकलन है ये 11 से 12 हजार रुपए क्विंटल जा सकता है इस सीजन में
1: जी जी,
0: क्योंकि मार्केट में अभी इसकी बहुत डिमांड हो रही है, तो उस हिसाब से आप लगाएं तो कम से कम एक साल में लागत आप भी अपने 30,000 भी काट लें तो कम से कम आपको 2 से 2.5 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट एक साल में आपको आराम से हो जाता है, मतलब 5 महीने में
1: जी जी। और जो भूसा की आप बात कर रहे हो तो पूरा पंचांग को भूसा जो
0: है पंचांग का है, आप जड़ भी चाहें तो जो जड़ है जो अलग से बिक जाती है
1: जी जी जी,
0: वो जड़ को भी अगर आप जड़ सहित निकालेंगे तो जड़ को अलग काट के सुखा के साफ करके मिट्टी ना हो उसका अलग रेट चला जाएगा, वो भी बिक जाता है
1: जी जी। तो वो जब अपन आखिरी बार कटाई करत हुई है उस समय
0: उखाड़ लें जी जी, उसमें बीज भी प्राप्त हो जाएगा, तो बीज एक एकड़ में कम से कम 40 से 50 किलो बीज आपको प्राप्त हो जाएगा
1: जी।
0: तो एक अतिरिक्त आय में उसको हम जोड़ते नहीं, क्योंकि वो बीज क्या होता है क्वालिटी बेस पे ही जाता है।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो वो हम उसको ये सोचते हैं वो अतिरिक्त आय के रूप में हम उसको छोड़ देते हैं
1: जी, जी।
0: तो मेन कैलकुलेशन हम जो करें उत्पादन है, जो हम भूसा है मेन है उसका ही उत्पादन आपको बताए, तो उस पर से हमारे लिए 2 लाख तक आराम से 2 से 2.5 लाख हम उससे सेविंग हो जाती है
1: जी। अच्छा मौर्य जी, हालांकि आपने अपनी बातचीत के दौरान नीमच मंडी को जिक्र करो, लेकिन फिर भी हम जो जानो चाहते हैं कि औषधीय फसल अगर कोई किसान लगावो चाहते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ो प्रश्न रहते हैं मंडी को फसल को बेचने को, तो आपने नीमच मंडी की बात करी, तो नीमच मंडी की कितनी दूरी पड़त है, और जैसे अब एक किसान है लगभग एक एकड़ आधा एकड़ में उन्हें फसल ली है उतने तक नहीं पहुंच सका, तो कौन तरीके से वो एक ही बिक्री कर है?
0: विगत 6 महीने से सबसे पहले हमने इसी पे चिंतन किया, नीमच मंडी हमारे यहाँ से काफी दूर है
1: जी,
0: तो अभी जो भी किसान इच्छुक हैं या औषधि कोई भी खेती कर रहे हैं तो अगर वो उनके पास जो भी औषधि खेती है वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं
1: जी।
0: हमारे पास जो इनकी खरीदार हैं उनसे हमारा संपर्क है
1: जी,
0: तो वो यहाँ आपके सागर से आपके खेत से ही ले जाने को तैयार खरीदार
1: अच्छा, अच्छा,
0: हैं
1: जी।
0: तो इसके लिए मार्केट की आज की डेट में ये कहना चाहिए कि अब हमें मार्केट की चिंता नहीं करनी चाहिए, खासतौर पर औषधि खेती के लिए
1: जी।
0: ये आपके लोकल ही आपको यहाँ पे अवेलेबल बहुत सहजता से हो सकती है
1: जी,
0: कोई अगर किए है फसल अभी भी वर्तमान में किसी के पास औषधि खेती है तो वो संपर्क कर सकता है, हम उनको अरियों से संपर्क करा देंगे
1: जी। तो निश्चित रूप से भैया हरो, जो मार्केट वाली जो खपत वाली समस्या हती बाबी मौर्य जी ने कितने बढ़िया तरीके से आपको बताई कि अब एक ही चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो हमें लगता है भैया कि आज की ये पूरी बातचीत को सार जो है वो निश्चित रूप से आप औरों को प्रेरणा दे है औषधीय खेती करने के लाने। और मौर्य जी आज आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, आपने हमारे सुनने वाले किसान भैया बिन्नाहरों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो देखो भैया हरो, अपन जो पारंपरिक रूप से खेती करत आते हैं वो पारंपरिक चीज़ों की खेती करत आते हैं, इसे अगर हटके अपन चलें तो निश्चित रूप से भैया थोड़ो सो जोखिम तो रहते हैं, लेकिन जोखिम उठाने तो पड़े भैया, बिना जोखिम उठाए कोनो काम नहीं होता है। और जो अपने प्रगतिशील किसान तरुण मौर्य से अपनी चर्चा हो रही थी, उनने भी यही सब बातें बताई कि उनने कहाँ से शुरुआत करी और आज कितनो अच्छो उनको जो है चल निकलो है। और चराइता जो अपन ने तो अबे भैया शब्द ही नहीं सुनो जो है, एक बात भैया उनने करो भी और उनकी बिक्री भी करी, और जो सबसे बड़ी चिंता रहते है कि नई नई चीज़ों की अपन खेती कर तो लो भैया उनको बाजार अपन को कहाँ मिले, तो जा समस्या को समाधान भी उनने बताओ, उन्हें बताओ अगर आपकी थोड़ा उत्पादन है और आप उतने नहीं जा पा रहे भैया नीमच मंडी, तो आप जो है उनसे संपर्क कर सकत हो, या आपके अगल बगल के 2-4 किसान कछुआ औषधीय खेती कर रहे हैं तो वे सब एक वाहन करके और उते ले जा सकते हैं, तो बहुत से रास्ता खोलते हैं भैया जब अपन करण लगो। हमें आशा है कि आपको निश्चित रूप से ये दिशा में बढ़ो चाहिए, और अपन अब कार्यक्रम में एक बार फिर मनोरंजन की तरफ चल रहे हैं भैया, आपको हम एक और झूला गीत लेके आए हैं, एक हो गा रहे हैं पुरुषोत्तम ठाकुर।

भैया बड़ो उम्दा सो झूला गीत अपन ने सुनो पुरुषोत्तम ठाकुर को गाओ भाव। और एक बाद अब घड़ी कह रही है कि आज के अनाज भाव बताए जाएं। आज के नहीं भैया, कल के। आज तो इतवार है तो शनिवार के हम आपको अनाज भाव लेके आए हैं। गेहूं 2395 से 2790 रुपये, चना 2005 से 6150, मसूर 2100 से 8505, मूंग 3000 से 6855, सोयाबीन 3500 से 6900 रुपये प्रति क्विंटल, और सरसों की बात करें भैया तो 6700 से 7750, और मक्का को एक ही भाव रहो भैया 1900 रुपया। मौसम पे आते हैं भैया तो आज को अधिकतम तापमान रहो 26.2 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहो। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21.8 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से 1 डिग्री कम रहो। आर्द्रता भुंसरा की रही 93% और संजा की 94%। आज सुबेरे 8:30 से संजा के 5:30 तक की वर्षा 33.6 मिलीमीटर रही, और ए मौसम की अभी तक की कुल वर्षा रही 512.5 मिलीमीटर। तो भैया इन्हीं सूचनाओं के संगे अब घड़ी कह रही है कि आज को ग्राम सभा इतना पूरा हो रहा है, तो सभी जने हम खुदेव अनुमति। राम राम।

ग्राम सभा अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजने को हैं। अगला प्रसारण भोपाल से होगा कुछ ही देर में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है।

0: दिवस पर भारत के स्पेस इकोसिस्टम की निरंतर यात्रा पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पल्लव बागला जी, जो लंबे समय से विज्ञान संचार के क्षेत्र में सक्रिय हैं। पल्लव जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार जी।
0: पल्लव जी, अंतरिक्ष कभी केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा और राष्ट्रीय गौरव का विषय हुआ करता था, आज ये किसी देश की अर्थव्यवस्था, तकनीकी क्षमता, वैश्विक प्रभाव, इन सब चीजों को भी तय करने लगा है। इस पूरे बदलते परिदृश्य में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो सफर तय किया है, उसे आप किस तरह से देखते हैं, खासकर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के संदर्भ में?
1: देखिए, भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाया जाता है क्योंकि 3 साल पहले भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब पहली बारी विक्रम लैंडर को लैंड किया था और प्रज्ञान रोवर को चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास चलाया था। उसी को एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भारत पहला देश बना था जिसने ऐसा काम किया दक्षिणी ध्रुव पे, तो उसी उपलब्धता को मनाने के लिए अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। आज 3रा अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है और अगर आप देखें, इस वक्त कोई ऐसा पहलू नहीं है हमारी जिंदगी का जिसमें कि हमें अंतरिक्ष कहीं ना कहीं से छूता नहीं हो। आप एटीएम से पैसे निकाल ले जाएं तब आप अंतरिक्ष क्षेत्र से सैटेलाइट से टच में आते हैं। आप मौसम की जानकारी दें तब कहीं ना कहीं अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ते हैं आप। आप मछुआरे हैं, भारत के फार्मर्स हैं, किसान हैं, हर कोई किसी किसी तरह से अंतरिक्ष से कहीं ना कहीं जुड़ता है। आप मैप लेके गाड़ी से जाएं या रास्ता देखें, गूगल मैप देखें, वो भी अंतरिक्ष में जुड़ता है। तो हमारी जिंदगी में अंतरिक्ष पूरी तरह से हर जगह पे है और भारत की जो अपनी क्षमता है अंतरिक्ष के क्षेत्र में वो एंड टू एंड है। हम अपने रॉकेट बनाते हैं, हम अपने सैटेलाइट बनाते हैं और उसके ऊपर जो हमारा एप्लीकेशन का काम है वो दुनिया में अद्वितीय है। सबसे अच्छे एप्लीकेशन भारत के ही बनाते हैं और आजकल जो बदल रहा है माहौल उसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत बड़ा हो गया है। हाल में हमने देखा स्काई रूट एरोस्पेस के 28 साल के एवरेज एज वाले बच्चों ने अंतरिक्ष में पहले ही अटेम्प्ट में अपना विक्रम 1 रॉकेट भेजा। तो स्टार्टअप का क्षेत्र है वो भी आगे बढ़ रहा है, सरकार की तरफ से भी बहुत इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हाल में ही प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप्स के सीईओ से मुलाकात की, उनको प्रोत्साहन दिया। तो इतना कुछ हो रहा है कि हम और आप इस पे 2 घंटे भी बिताने तब पूरा नहीं होगा।
0: आपने अभी काफी विस्तार से बताया कि क्या हो रहा है और देश ने अब तक क्या क्या हासिल कर लिया है इस क्षेत्र में और ये यात्रा किस दिशा में जा रही है। आप इनमें से किन उपलब्धियों और किन प्राथमिकताओं को रेखांकित करना चाहेंगे भविष्य के मद्देनजर?
1: देखिए, भविष्य के मद्देनजर भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जिसका नाम है गगनयान। वो ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि भारत अपनी ही धरती से अपने ही रॉकेट पे एक भारतीय को अंतरिक्ष में श्रीहरिकोटा से भेजना चाहता है और वापस लाना चाहता है। ये गगनयान प्रोग्राम जो है एक लंबा प्रोग्राम है, कई सालों से इसरो इस पे काम करता रहा है और आज ही इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन ने जो नेशनल स्पेस डे पे अहमदाबाद में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि अगले 4 महीने के अंदर पहला गगनयान का अनक्रूड मिशन का मतलब हुआ मानव रहित। पहले 3 मिशन होने हैं मानव रहित, उसमें से जो पहला मिशन है वो उसको अंजाम देंगे। तो गगनयान का बहुत बड़ा महत्व है। भारत ऐसा 4था देश बनेगा जिसके पास अपनी ताकत से अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष यात्री को भेजने की क्षमता बनेगी और 2035 तक भारत की मंशा है कि वो एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाए और 2040 तक अपनी क्षमता से एक भारतीय को चांद की सतह पे भेजे और उसको वापस लेके आए। तो भविष्य तो बहुत क्लियर है, लेकिन इसके साथ साथ ये तो हुई ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की बात, फिर हमारे पास अपने सैटेलाइट होंगे जो कम्युनिकेशन के लिए हैं, हमारे सैटेलाइट हैं जो सर्वेलेंस के लिए हैं, उस सब में भी भारत बहुत लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है और इसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बहुत बढ़ रही है।
0: आपने प्राइवेट सेक्टर का उल्लेख किया है, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स की जो बढ़ती भागीदारी है, इसे हम कितना बड़ा बदलाव मान सकते हैं? हाल के वर्षों में निजी क्षेत्र में लॉन्च और सैटेलाइट तकनीक से आगे बढ़कर कई नई क्षमताएं भी विकसित की हैं।
1: जी देखिए, भारत का जो अंतरिक्ष का प्रोग्राम है, ज्यादातर अभी तक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के माध्यम से होता रहा था। इसरो के पास भी, इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन ने बताया है,

0: कि 80% से ज्यादा पैसा प्राइवेट इंडस्ट्री के पास जाता था, जो अपनी तरफ से अलग अलग पार्ट्स बना के इसरो को देते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत बड़ा रहा है, 400 से अधिक इंडस्ट्रीज हैं जो इसरो के साथ जुड़ी रही हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है जब प्राइवेट सेक्टर अपने ही सैटेलाइट बना के अंतरिक्ष में भेज रहा है, अपने ही रॉकेट बना के अंतरिक्ष में भेज रहा है। हमने देखा, अभी स्काई रूट की बात करते हैं, पहले देखते हैं अंतरिक्ष में सैटेलाइट के क्षेत्र में। पिक्सेल कंपनी है बैंगलोर की, वो अपने सैटेलाइट बना के भेज चुकी है, एक दर्जन से ज्यादा सैटेलाइट उनके अंतरिक्ष में हैं। उसी तरह से रॉकेट के क्षेत्र में हमने देखा, हाल में स्काई रूट एरोस्पेस, उन्होंने अपना विक्रम 1 रॉकेट पहले ही अटेम्प्ट में सफल प्रक्षेपित किया श्रीहरिकोटा से, और उससे उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की। आने वाले टाइम में अग्निकुल कॉस्मॉस करके एक चेन्नई की कंपनी है, वो भी रॉकेट भेजने की तैयारी में है, और इसी तरह से सैटेलाइट और भी कंपनियां बना रही हैं। पीछे गैलेक्साई ने अपना सैटेलाइट बना के छोड़ा था। गैलेक्साई स्पेस एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका सैटेलाइट काम नहीं किया। अंतरिक्ष में हर चीज पहली बारी में काम नहीं करती है, और फेलियर हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और पीछे इसरो के भी फेलियर हुए हैं, जो कि वो अभी सुधार के लॉन्च के साइट पे वापस आने की तैयारी में है। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में सफलता आती है, लेकिन बहुत मेहनत के बाद आती है।
1: अगर हम इस पर देखें कि हमारी सरकार क्या कर रही है, तो सरकार और निजी क्षेत्र के बीच जो एक बढ़ता हुआ भरोसा दिख रहा है अभी, वो कितना महत्वपूर्ण है? और क्या जो हम एक नीतिगत निरंतरता देख रहे हैं, खास करके जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लोग जोखिम ले सकें, इसके लिए एक माहौल जो तैयार हो रहा है, क्या वो हमारे स्पेस इकोसिस्टम को एक नई गति दे सकता है?
0: देखिए, प्राइवेट स्टार्टअप जो है वो अपना पैसा जुगाड़ के अपनी रिस्क पे चीजें करने को तैयार हैं, और उनकी कैपेसिटी यूज न्यू टेक्नोलॉजी और उस नई तकनीक से नई चीजें बनाने में उनकी क्षमता काफी है। लेकिन अभी सारे स्टार्टअप जो हैं वो बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, तो उनमें अभी वो ताकत नहीं है जो कि आप देखें, अगर अमेरिका में बोइंग है या लॉकहीड मार्टिन है या इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अभी हमारी कंपनियां छोटी हैं और वो छोटे सैटेलाइट पे कर रही हैं, और लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो सब आगे बढ़ के रॉकेट के क्षेत्र में कभी ना कभी वो अमेरिका की बड़ी कंपनी जो है स्पेसएक्स को स्काई रूट एरोस्पेस जरूर टक्कर दे सकेगा। तो देखिए, आने वाले टाइम में बहुत आयाम हैं जो कि खुलेंगे, और अभी सारे प्राइवेट सेक्टर के जो स्टार्टअप हैं वो एंकर कस्टमर सरकार को ही ढूंढ रहे हैं। वो चाहते ये हैं कि बनाए हम, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन और उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है वो सरकार दे। तो ये थोड़े दिन चलेगा, लेकिन आने वाले टाइम में इनको अपनी ताकत से बहुत चीजें करनी पड़ेंगी। जहां तक पॉलिसी का सवाल है, हाँ, जब से स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म किए गए और प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दी गई और उनको इजाजत दी गई कि वो इसरो की फैसिलिटीज में अपने टेस्ट कर सकें, इसरो की फैसिलिटी से लॉन्च कर सकें, जैसे स्काई रूट एरोस्पेस ने किया श्रीहरिकोटा में हमारे अपने सरकारी लॉन्च पैड को यूज करके, तो वो एक अच्छी बात है। आने वाले टाइम में हम बहुत देखेंगे कि इस तरह से दोनों की शायद साझेदारी हो, तो इस तरह से मिलजुल के जो भारत का अपना एक इकोसिस्टम है स्पेस का, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हो रहा है। इसरो अपनी जगह कायम रहेगा, एक्सप्लोरेशन का काम, R&D का काम इसरो करेगा, और जो रिपीट सैटेलाइट्स और रिपीट रॉकेट हैं वो प्राइवेट सेक्टर के पास जाएंगे।
1: पल्लव जी, आज भारतीय कंपनियां लॉन्च सेवाओं से आगे बढ़कर अंतरिक्ष के कचरे को हटाने, डॉकिंग और इन स्पेस रिफ्यूलिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर भी काम कर रही है। इन क्षेत्रों में भारत के लिए भविष्य में क्या संभावनाएं हैं?
0: देखिए, अभी जो कदम लिए गए हैं, आपने जो तीनों क्षेत्र बोले वो बहुत ही छोटे कदम हैं, लेकिन हर शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। अंतरिक्ष से कचरा हटाने का काम जो है वो इस बारी स्काई रूट एरोस्पेस के रॉकेट में उसके लिए पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो एक्सपेरिमेंट अनफॉर्चुनेटली सक्सीड नहीं किया। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ एप्लीकेशन के क्षेत्र में कई स्टार्टअप हैं जो कि खासकर फार्मर इंश्योरेंस के क्षेत्र में, फार्मिंग इंश्योरेंस के क्षेत्र में बड़े कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। वहां पे बहुत काम हो रहा है, और वो ज्यादा कहानी उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, क्योंकि वो

0: अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और बहुत सारे बैंक्स जो हैं आज अंतरिक्ष के क्षेत्र को यूज करके फार्मर को लोन देने में, फार्मर की रिस्क असेसमेंट में अंतरिक्ष के क्षेत्र को डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ये जो अभी कचड़े वाली बात है या और इस तरह के एक्सपेरिमेंट हैं, वो तो अभी बहुत छोटे स्केल पे है।
1: अंत में नेशनल स्पेस डे 2026 से आगे देखते हुए भारत को अपनी अंतरिक्ष क्षमता को अगले स्तर तक ले जाने के लिए किन क्षेत्रों पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए?
0: देखिए, सबसे बड़ा क्षेत्र जो इस वक्त प्राइवेट सेक्टर की तरफ से डिमांड है कि भारत को अपना एक अंतरिक्ष का लॉ बनाने की जरूरत है। अभी हमारे पास अपनी कंट्री में स्पेस लॉ नहीं है, हम गवर्नेंस के क्षेत्र में थोड़ी अभी हमारी कमी है। तो रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ, लायबिलिटी क्या होगी जब प्राइवेट सेक्टर काम करेगा, एक तरफ तो वो चाहिए हमको। उसकी दूसरी तरफ आती है जो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में हमारा गगनयान का प्रोग्राम जो है, जिसमें एक लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को ह्यूमन रेटिंग करके उससे अंतरिक्ष में एक क्रू मॉड्यूल से भेजा जाएगा, वो काम आगे बढ़ रहा है। पिछले साल में हमने देखा था कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष गए थे, लेकिन वो गए थे फाल्कन 9 अमेरिकन रॉकेट से और स्पेसएक्स की क्रू ड्रैगन से और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे। तो अब गगनयान में भारत अपने रॉकेट से ही भेजना चाहता है, अपनी ही धरती से अपनी ताकत पे भेजना चाहता है। उसके साथ साथ जो हमारा अपना कार्यक्रम है कि एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हो 2035 तक, उसका काम भी आगे बढ़ रहा है। और आने वाले टाइम पे अगर हमने एक मनुष्य को चांद पे भेजना है और वापस आना है, उसके लिए एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV की तैयारी चल रही है, जो कि जो हमारा बाहुबली रॉकेट है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, उससे भी ज्यादा ताकतवर होगा। तो कई क्षेत्र में काम चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। उन्होंने तो अंतरिक्ष में इसमें एक नया ही पूरी ऊर्जा फेंकी है, जिससे कि बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर भी एनर्जाइज्ड है, इसरो भी एनर्जाइज्ड है और भारत को इससे बहुत फायदा भी हो रहा है। तो मुझे तो दिखता है कि आने वाले टाइम में भारत एक स्पेस पावर के रूप में जरूर उभर के आएगा। और जैसे इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन ने आज अहमदाबाद में कहा कि हमारी शुरुआत हुई थी रॉकेट के पुर्जों को साइकिल पे ले जाते हुए और आने वाले टाइम में 2040 तक हम वी विल बी सेकेंड टू नन, माने कोई सबके बराबर आ जाएंगे।
1: पल्लव जी, अपने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों, बदलते इकोसिस्टम और भविष्य की संभावनाओं पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। सुर्खियों में अपना बहुमूल्य समय देने और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में सुर्खियों में अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए कार्यक्रम डगर विकास की। विषय है सुकन्या समृद्धि योजना। योगदान ग्वालियर केंद्र का है।

0: बेटियां किसी भी परिवार, समाज और राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होती हैं। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक ऐसी बचत योजना शुरू की जो न केवल बेटियों के भविष्य को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि अभिभावकों में बचत की आदत भी विकसित करती है। इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इसकी शुरुआत कब और क्यों हुई, इसके प्रमुख लाभ क्या है, खाता कैसे जा सकता है, निवेश की प्रक्रिया क्या है और यह योजना बेटियों के भविष्य को किस प्रकार सुरक्षित बनाती है।
1: आज यहां भारत सरकार की एक और योजना का भी प्रारंभ हुआ है, सुकन्या समृद्धि योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है और इसलिए उसके लिए सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। इस सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बेटी 1000 रुपया से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक उसके मां बाप पैसे बैंक में जमा कर सकते हैं और सरकार की तरफ से हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार की परंपरा में ब्याज दिया जाता है उससे ज्यादा ब्याज इस बेटी को दिया जाएगा। उसका कभी इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा और बेटी जब 21 साल की होगी, पढ़ाई पूरी होगी या शादी करने जाती होगी तो ये पैसा पूरा का पूरा उसके हाथ में आएगा और उस वो कभी मां बाप के लिए बोझ महसूस नहीं होगी।
0: भारत जैसे विशाल देश में लंबे समय तक बेटियों की शिक्षा और उनकी भविष्य को लेकर कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां रही हैं। अनेक परिवार आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों की उच्च शिक्षा या विवाह के लिए पर्याप्त धन नहीं जुटा पाते थे, परिणाम स्वरूप बेटियों के सपने अधूरे रह जाते थे। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत वर्ष 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की। यह योजना विशेष रूप से बालिकाओं के लिए बनाई गई एक लघु बचत योजना है जिसका उद्देश्य उनके भविष्य के लिए आर्थिक संसाधन तैयार करना है। सुकन्या समृद्धि योजना केवल एक बचत योजना नहीं है बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम है। यह संदेश देती है कि बेटी कोई बोझ नहीं बल्कि परिवार और राष्ट्र की शक्ति है। यदि इसके भविष्य की योजना आज से बनाई जाए तो वह कल आत्मनिर्भर और सफल नागरिक बन सकती है।
1: पिछले साल फरवरी में हमने वहां 27,000 बेटियों के सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाए थे और हर बेटी के बैंक खाते में 300 रुपये भी ट्रांसफर किए गए थे। बेटियों की एजुकेशन और बेहतर भविष्य में सुकन्या समृद्धि योजना बड़ी भूमिका निभा रही है। साथियों, देश में पिछले 11 वर्ष में ऐसी अनेक योजनाएं शुरू हुई हैं जिन्होंने नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा को, सोशल सिक्योरिटी कवच को बहुत मजबूत कर दिया है और देश के गरीब वंचित निरंतर सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आ रहे हैं। 2014 में देश में 25 करोड़ लोग ही सोशल सिक्योरिटी के दायरे में थे। आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं और बाबा के चरणों में बैठकर के कहता हूं, आज ये संख्या करीब करीब 100 करोड़ तक पहुंच चुकी है। भारत की गरीब कल्याण की योजनाओं की, सोशल सिक्योरिटी देने वाली योजनाओं की विदेशों तक सभी इंटरनेशनल फोरम में चर्चा हो रही है।
0: सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित एक छोटी बचत योजना है जो केवल बालिकाओं के लिए संचालित की गई है। इस योजना के अंतर्गत माता पिता या अभिभावक

0: अपनी बेटी के नाम पर खाता खोल सकते हैं और उसमें नियमित रूप से धन जमा कर सकते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सामान्य बचत खातों की तुलना में आकर्षक ब्याज दर प्रदान की जाती है, साथ ही आयकर संबंधी लाभ भी मिलते हैं। इस प्रकार यह योजना सुरक्षित निवेश और बेहतर रिटर्न का उत्कृष्ट संयोजन प्रस्तुत करती है। सुकन्या समृद्धि योजना के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जैसे बालिकाओं के भविष्य को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, विवाह संबंधी खर्चों के लिए धन संचय करना, परिवारों में दीर्घकालिक बचत की संस्कृति विकसित करना, बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। यह योजना इस विचार पर आधारित है कि यदि बेटी के जन्म के साथ ही उसके भविष्य के लिए बचत शुरू की जाए तो यह बड़े आर्थिक लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने का एक बेहतर तरीका हो सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए कुछ निर्धारित शर्तें हैं। खाता केवल बालिका के नाम पर खोला जा सकता है। बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। माता पिता या कानूनी अभिभावक खाता खोल सकते हैं। एक बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। एक परिवार अधिकतम 2 बेटियों के लिए खाते खोल सकता है। जुड़वा या 3 बेटियों के विशेष मामलों में नियमानुसार अतिरिक्त खाते की अनुमति दी जा सकती है। इन प्रावधानों का उद्देश्य योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुँचाना है।
1: सबका साथ सबका विकास कहते हैं तो इसका अर्थ सीमित नहीं है, लेकिन वो एक संपूर्ण है। मतलब यह देश के हर वर्ग हर क्षेत्र के समान विकास की बात तो है ही, हर परिवार के हर सदस्य की बेहतरी की भी इसमें अवधारणा है। आज अगर आप देखेंगे तो सरकार ने परिवार के हर सदस्य को, यानी बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, युवाओं, महिलाओं, पुरुषों, सभी लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कार्य किया है। एक और जहां प्रसूता माता के स्वास्थ्य और पोषण के लिए सुरक्षित मातृत्व अभियान चल रहा है, तो दूसरी ओर शिशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उनके पोषक भोजन का भी ध्यान रखा जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से बेटियों की जन्म से पहले ही हत्या की प्रवृत्ति में लगाम लगाने की ओर बड़ा कदम उठाया है। तो बेटियों की उच्च शिक्षा से लेकर के अन्य बड़े खर्चों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना भी चलाई जा रही है। इस योजना के तहत करीब 1.5 करोड़ बेटियों के बैंक खाते खुल चुके हैं, जिसमें करीब 30,000 करोड़ रुपए जमा है। वहीं पढ़ाई और कमाई के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व सुधार हुआ है। विशेष तौर पर इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिकल और बिजनेस जैसे सेक्टर्स में अवसरों की बात करें तो बीते 4 वर्षों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। स्वरोजगार की बात करें तो एक तरफ जहां स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत हजारों युवाओं को अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने का अवसर मिला है, वहीं दूसरी तरफ मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यवसायियों को बिना गारंटी के 14 करोड़ से अधिक लोन दिए जा चुके हैं।
0: सुकन्या समृद्धि खाता देश भर में डाकघरों में, अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, अधिकृत निजी बैंकों में खाता खोला जा सकता है। खाता खोलने की प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। खाता खोलते समय सामान्यतः कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जैसे बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता या अभिभावक का पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के फोटो, बैंक या डाकघर द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र। दस्तावेजों की जाँच के बाद खाता सक्रिय कर दिया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसका लचीलापन है। न्यूनतम वार्षिक जमा राशि अपेक्षाकृत कम रखी गई है। परिवार अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार राशि जमा कर सकता है। एक वित्तीय वर्ष में निर्धारित अधिकतम सीमा तक निवेश किया जा सकता है। जमा राशि एकमुश्त या किस्तों में जमा की जा सकती है। यह सुविधा निम्न आय वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग और उच्च आय वर्ग तक सभी परिवारों को योजना से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। सुकन्या समृद्धि योजना की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण इसकी आकर्षक ब्याज दर है। सरकार समय समय पर इसकी ब्याज दर निर्धारित करती है। सामान्यतः यह दर कई पारंपरिक बचत योजनाओं की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी होती है। ब्याज वार्षिक आधार पर खाते में जोड़ा जा सकता है और चक्रवृद्धि प्रभाव के कारण समय के साथ निवेशित राशि में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। यही कारण है कि लंबे

0: समय तक नियमित निवेश करने पर एक बड़ा कोष तैयार हो जाता है जो बेटी की शिक्षा या अन्य आवश्यकताओं में उपयोगी सिद्ध होता है। अक्सर कहा जाता है कि निवेश में समय सबसे बड़ा मित्र होता है। सुकन्या समृद्धि योजना इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। जब खाते में जमा धन पर ब्याज मिलता है और अगले वर्ष उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है तो इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इस सिद्धांत के कारण छोटी छोटी बचतें भी लंबे समय में बड़ी राशि का रूप ले सकती हैं। यदि बेटी के जन्म के तुरंत बाद निवेश शुरू किया जाए तो परिपक्वता के समय पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो सकती है।
1: आज ही यहां 20,000 से ज्यादा बेटियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोले गए हैं। इससे उन बेटियों की शिक्षा और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हुआ है। साथियों, भारत सरकार ने 10 साल पहले बेटियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए यह सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी। ये देश की उन योजनाओं में से एक है जिसमें 8.2% का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट हमारी बेटियों को मिलता है। अब तक देश की 4 करोड़ से ज्यादा बेटियों के खाते सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोले जा चुके हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब तक इन बैंक अकाउंट में 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा कराई जा चुकी है।
0: सुकन्या समृद्धि योजना केवल एक बचत खाता नहीं है बल्कि यह एक विश्वास है, एक ऐसे भविष्य का विश्वास जहां हर बेटी शिक्षित, आत्मनिर्भर और सम्मानित हो। यह योजना हमें यह सिखाती है कि भविष्य की तैयारी आज से शुरू होती है। छोटी छोटी बचतें समय के साथ बड़े सपनों का आधार बन जाती है। जब परिवार अपनी बेटियों के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं तब वे केवल एक बच्चे का नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र का भविष्य मजबूत करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना इसी दिशा में एक प्रभावी और प्रेरणादायक कदम है और इन्हीं कदमों के साथ भारत विकास की डगर में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

0: डगर विकास की, यह कार्यक्रम अभी आपने सुना। विषय था सुकन्या समृद्धि योजना, योगदान हमारे ग्वालियर केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। निगाहें फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद अजीज की आवाज में, बोल आनंद बख्शी के और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: यह है आकाशवाणी का सागर केंद्र FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। चित्रपट संगीत लेकर हम हाजिर हैं आपके साथ। पहला गाना फिल्म हीर रांझा से।

0: हीर रांझा, इस फिल्म का ये गाना भी आपने सुना अनवर और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी ने गीत लिखा था, धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब आइए आनंद बख्शी का लिखा है एक और गीत सुनते हैं, जो है फिल्म ताल से। सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक की आवाजें हैं, धुन तैयार की है A.R. रहमान ने।
1: ओए रत्ता जोगी, ओए रत्ता जोगी, होए होए होए होए होए, ओए रत्ता जोगी, ओए रत्ता जोगी, होए होए होए होए।

और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सूरज जगन की आवाज में अन्विता दत्त का लिखा गाना, जिसकी धुन तैयार की है विशाल शेखर ने। फिल्म का नाम है आई हेट लव स्टोरीज़।

और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अगला प्रसारण दिल्ली से होगा बस कुछ ही देर में।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेल में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ सम्पन्न हुई। ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल

0: फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बीच राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपये की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
4: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

0: वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इसकी इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
1: बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, AI, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल है जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
0: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव में श्री सोनोवाल ने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की रचना पारिजात हरण अंकीय नाट प्रस्तुत करने के लिए देश भर के कलाकार श्रद्धापूर्वक एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव ने कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को लाने के लिए अनेक प्रयास किए।
2: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है, कला संस्कृति की द्वारा, नित्य गीत की द्वारा, इसके वजह से आज हम 21वीं शादी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है।
3: देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए सहयोग करें।
0: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को AI और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की दो दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की

0: सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एमएल जाट ने आज कहा कि फसल सुधार, कृषि विकास तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का मृदा डेटाबेस और सूचना प्रणाली तथा भूमि उपयोग नियोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकताओं और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप ये संस्थान सही दिशा में प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र हटा दिया है। अधिकरण का मानना है कि बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
1: ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वां ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरेंट कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। और क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेलों में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह है आकाशवाणी का सागर केंद्र FM 102.6 MHz पर। रात्रि के 9 बजे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम मंच है गीत सुनने का। सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है और ये सुरीला सफर आज आप तय करेंगे ब्रिजेश रेचारिया के साथ। पहला गीत दो रास्ते फिल्म से है। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और ये मंच है गीत का पहला गाना भी आपने सुना, जिसे सुनने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेजे थे हमारे सभी श्रोताओं ने। संदेश भेजने वाले थे नीलू, अनीता, भागवती, शौर्य, रजनीश, रोहित, सूर्यप्रकाश और हुकम चंद पटेल। और ये संदेश इन्होंने भेजा है तिलकगंज सागर से। बक्सर बिहार से इसी गीत को सुनने के लिए हमें संदेश भेजा था शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी

और सुमित और रमेश साहू ने, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीवा और दानिश अंसारी ने, गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धा नंद आर्य, अभ्यानंद आर्य और परमानंद आर्य, सारेमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान। यही गीत सुनना चाहा था चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने। एक और संदेश हमें मिला था खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार का। निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, इन सभी ने इस गाने को पसंद किया था। और अगला गाना जो हम आपको सुनाने वाले हैं, सुना चाहते हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ो कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू और भाविक सिक्का। एक और संदेश हमें मिला है इसी गीत को सुनाने के लिए, टाउन शिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से श्याम अशोक, श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर का। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से संदेश भेजने वाले हैं हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नौखेलाल। आप सभी सुनना चाहते हैं ममता फिल्म का गाना, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की हैं। मजरूह सुल्तानपुरी ने गीत लिखा है, धुन तैयार की है रोशन ने।

0: आपका व्यापार आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
1: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
2: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
3: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड एचआईवी टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एचआईवी एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
2: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
4: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
5: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: और अब आइए सुनते हैं निकाह फिल्म का गाना। महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाजों में हसन कमाल ने गीत लिखा है, धुन तैयार की है रवि ने।

निकाह फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना, सलमा आगा और महेंद्र कपूर की आवाजें थी। हसन कमाल ने ये गीत लिखा था, धुन तैयार की थी रवि ने, और सुनना चाहा था हमारे इन सभी श्रोताओं ने लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी ने। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू और ईशु बाबा और पेंटर बाबू। पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से संदेश भेजा है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़ और भरत मक्कड़ और कमल साहनी ने। सूर्यवाड़ी छत्रपति संभाजी नगर से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद, विराज, स्वीट, अंशुमन और ओबी। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से संदेश भेजने वाले हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। और इसी गीत को सुनने के लिए संदेश भेजा था हमारे इन सभी श्रोताओं ने नूरमहल महसौल सीतामढ़ी बिहार से।

ते मुसर्रत जहां नाज, तलत जहां नाज, फरहत जहां नाज, रिफत जहां नाज, नुजहत जहां नाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज ने। और अब का कार्यक्रम का आज के इस कार्यक्रम का आखिरी गाना, जिसके लिए संदेश हमें भेजा है गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से संदेश भेजने वाले हैं अभिजीत गहावकर राही, श्रीमती सरिता गहावकर, प्रणीता सिद्धांत गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर और अर्जुन गवाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाड़कर, वैशाली गवाड़कर, श्वेता सुमित गवाड़कर, ध्वनि गवाड़कर और नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से लिखते हैं पी एस निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर। मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायडे, आशीष मुरहेकर। और एमएलबी रोड ग्वालियर से संदेश भेजा है सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरव खुराना और एस के पप्पी। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, तन्वी मनवी, लक्ष्य सोनी, मोहनी ऋतिक और बलवीर सिंह। पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन। पद्मा टाकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से संदेश भेजने वाले हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। आप सभी सुनना चाहते हैं पड़ोसन फिल्म का गाना, आवाजें किशोर कुमार, मन्ना डे और महमूद की हैं। राजेंद्र कृष्ण ने ये गीत लिखा है, धुन तैयार की है राहुल देव बर्मन ने।

0: यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये भूषत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार, परता
1: अम्मा।

की अब के जो आवाज लगाए चोटे कर दूंगा। सज्जम सकजम सकनम सकदम सत्संगिर दक्षिण गिर सकजम सकदम सकनम सकदम सत्संगिर दक्षिण गिर।

जा रे खा गा।

ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಪಕ್ಕಡ ಕರಕ ಗಜೆ ಮೇದೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ ಏ ಭೂತ ಜಾತ ಅಮ್ಮ ಮದ

और इसी गीत के साथ कार्यक्रम मन चाहे गीत अब समाप्त हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM 102.6 MHz पर। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अगला प्रसारण मुंबई से होगा बस कुछ ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, पर या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
3: आज के फनकार।

हाँ दोस्तों, कमसीन तो वो थी ही और है भी। इसी मारूफ कमसीनियत की बदौलत उन्हें कई फिल्मों का ऑफर मिला। सारा बानू की माता जी उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री थी नसीम बानो। उनके पिता प्रोड्यूसर थे एहसान उल हक साहब। उनकी दादी भी नामचीन थी छमिया बाई, जो कि शमशाद बेगम ऑफ दिल्ली के नाम से मशहूर थी। उत्तर प्रदेश के हसनपुर से ये परिवार था। सायरा बानू को अदाकारी जैसे विरासत में ही मिली थी। पहली ही फिल्म जंगली में उन्हें काफी सराहना मिली और फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला।

फिल्म जंगली के कहानीकार और संवाद लेखक थे मशहूर उर्दू राइटर आगा जानी कश्मीरी। लंदन से तालीम याफ्ता सायरा बानू को उर्दू की डायलॉग डिलीवरी की सलाहियत आगा जानी कश्मीरी ने ही सिखाई, वो उनके लिए काफी मददगार साबित हुई। शम्मी कपूर के साथ उनकी पहली फिल्म जो जंगली बनी, इसके बाद उन्हें काफी मकबूलियत हासिल हुई। इसी वजह से वो उस जमाने की लव स्टोरीज की जैसे रोमांटिक हीरोइन बन गई।

0: दोस्तों, उस जमाने के चार्मिंग चॉकलेट हीरो जुबली कुमार राजेंद्र कुमार के साथ उनकी 1964 में आई थी फिल्म आई मिलन की बेला, और इसके बाद झुक गया आसमान।
1: उनसे

0: के रोमांटिक हीरो विश्वजीत के साथ भी उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अप्रैल फूल।
1: उनकी पहली नजर क्या असर कर गई

0: इसका कोई नहीं है, इस दिल को प्यार करना
1: अय्या।

दोस्तों, सायरा बानू जो 1966 तक एक एस्टैब्लिश्ड अदाकारा बन चुकी थी, उनके शादी के लिए किसी नवाब, शहंशाह, बादशाह सी आन बान वाला राजकुमार उनकी नजरों में रहा होगा, और वो ख्वाब जो उन्होंने देखा होगा सच हुआ जब उनकी शादी मुगल आजम के शहजादा सलीम यानी दिलीप कुमार अर्थात यूसुफ

0: प्यार मोहब्बत क्या समझाए इसको राम और शाम के तेरी मेरी नई निभनी के तेरी मेरी नई निभनी नई नई के तेरी मेरी नई निभनी।
1: इसी दौरान उन्होंने राजेंद्र कुमार अभिनीत फिल्म अमन में एक रोमांटिक रोल किया और उनके चाहने वालों को ये संदेश भी दिया कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम करना बंद नहीं करेंगे।

0: अपने दिल को समझाओ ना।
1: दोस्तों, फिल्म पड़ोसन जो 1968 में आई थी, सायरा बानू के लिए उनके करियर की एक जबरदस्त मोड़ देने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें दिलाया उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम।

1968 में उनकी एक फिल्म आई दीवाना, जिसमें उनके साथ दीवाना के मुख्य किरदार में थे राज कपूर। महेश कौल निर्देशित इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन का था और बड़ा ही कर्णप्रिय और लोकप्रिय बन पड़ा था।

दोस्तों, दिलीप कुमार के साथ उनकी तीन फिल्में आई हैं, सगीना, बैराग और गोपी। इसमें सिर्फ गोपी को ही कमर्शियल सक्सेस मिली थी।

0: जेंटलमैन जेंटलमैन।
1: और हाँ दोस्तों, देवानंद के साथ उनकी एक फिल्म आई थी प्यार मोहब्बत। मनोज कुमार के साथ भी दो फिल्में उन्होंने की, बलिदान और पूरब और पश्चिम।

नवीन निश्चल के साथ भी दो हिट फिल्में उन्होंने दी, पहली थी पैसे की गुड़िया और दूसरी विक्टोरिया नंबर 203।

0: धर्मेंद्र के साथ उनकी कुल 6 फिल्में आई थी, आदमी और इंसान, रेशम की डोरी, पॉकेट मार, इंटरनेशनल क्रूक, चैताली और ज्वारभाटा।
1: रूठा है तो मना लेंगे।

सुनील दत्त के साथ एक और सफल फिल्म उनकी आई थी नहले पे दहला। और जैसा कि आप जानते हैं उनकी सुनील दत्त साहब के साथ पहली फिल्म थी पड़ोसन। दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म दुनिया में जो आई थी 1984 में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था। दोस्तों उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी फैसला। इस फिल्म में उनके हीरो थे विनोद मेहरा। हालांकि फिल्म 1976 में पूरी हो चुकी थी पर यह फिल्म रिलीज हुई थी 1988 में। दोस्तों सायरा बानो एक सफल अभिनेत्री रही हैं और साथ ही साथ एक जिम्मेदार पत्नी का रोल भी वो बखूबी निभा रही हैं। तो आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर और मारूफ अदाकारा सायरा बानो पर।

0: शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। छाया गीत में आज ऐसे गाने हैं जिनके दो संस्करण हैं, एक मेल वर्जन और एक फीमेल वर्जन। सुनने के आनंद के लिए हमने किसी दिलचस्प मोड़ पर इन गानों को आपस में जोड़ दिया है।

कुछ अल्फाज कहना कितना मुश्किल होता है। जब कहना इतना मुश्किल है तो लिखना और भी ज्यादा मुश्किल होता होगा ना। फिर कैसे कहें अपने

कहते हैं कि आंखें दिल का आईना होती हैं, खुशी की चमक, दुख की झलक, सब कुछ आंखों में तैर जाता है। आंखों में समाया है हमारे दुखों का नमक और खुशियों की चहक। किसी की आंखें रोशनी हैं, उम्मीद हैं, इन आंखों से रोशन है हमारा संसार। आंखें आंखों से करती हैं बातें, आंखों की इस भाषा को कम ही लोग जान पाते हैं।

0: अच्छा यह गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
1: उससे नाराज नहीं जिंदगी,
2: हैरान हूं मैं।
0: हम अभी हाजिर हुए।

जिंदगी आसान भी है और दुश्वार भी। जिंदगी कितना कुछ सिखाती है हमें। सांप सीढ़ी का खेल है ये जिंदगी। यूं लगता है कि सामने है मंजिल और पल भर में मंजिल कोसों दूर होती है। जिंदगी कभी एक कविता है, कभी एक अफसाना और कभी एक महागाथा। चलो जिंदगी की उंगली पकड़ें और बातें करें इससे, कह दें इससे अपने सारे गिले शिकवे।

बारिश कुदरत की एक कविता है, बारिश संगीत है प्रकृति का, बारिश एक वरदान है, ये जज्बात जगाती है और हमें बेहतर इंसान बनाती है। ऐसी बारिश में घर के अंदर बंद रहना एक गलती है। बारिश तो बाहर निकलने के लिए होती है, सराबोर होने के लिए होती है, गाना गाने के लिए होती है, जिंदगी जीने के लिए होती है बारिश।

0: छाया गीत में आज ऐसे गाने थे जिनके दो संस्करण हैं, एक पुरुष और एक महिला संस्करण। सुनने के आनंद के लिए हमने इन दोनों गानों को किसी दिलचस्प मोड़ पर आपस में जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम, फिल्म जंगली।
1: एहसान तेरा
2: दा मुझ पर,
0: फिल्म चिराग।
1: तेरी आँखों के सिवा
2: दुनिया में रखा क्या,
0: फिल्म मासूम।
1: तुझसे नाराज नहीं जिंदगी,
2: हैरान हूँ मैं।
0: और फिल्म मंजिल। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

0: सुनहरे खाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
4: मिलो जो तुम्हें बताए।
3: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
5: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
3: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।

संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था

0: सकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India. Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day today, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
2: आपने नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें। दुनिया अब भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है।
1: Defence Minister Rajnath Singh has stressed the need for self-reliance in building warships, offshore vessels and related maritime sectors, describing it as vital to the country's security. Mr. Singh was addressing the gathering after laying the foundation stone for 5 expansion projects of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers GRSE and Yantra India Limited worth approximately 34,000 crore rupees in Kolkata. The Defence Minister asserted that India is capable of becoming a global shipbuilding hub and called for high quality maintenance services and timely delivery of defence products to achieve this goal. Indian Council of Medical Research ICMR has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache and body ache, and most people recover with appropriate care and rest. The BRICS Sports Ministers meeting concluded at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh with unanimous adoption of the Sports Joint Declaration. The declaration reaffirms the commitment of the member countries to strengthen cooperation in sports through dialogue, mutual respect and inclusiveness. The meeting was held under India's BRICS Chairship 2026. A key outcome of the meeting has been the proposal to establish a BRICS working group on sports technology to promote cooperation in sports science, artificial intelligence, digital transformation and athlete performance. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar reached Moscow today on a 2-day official visit to Russia. During the visit, the minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade and Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. He will also meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. The National Skill Development Cooperation, NSDC, and Cultus Education have announced the launch of a nationwide cloud and artificial intelligence skilling initiative in collaboration with Amazon Web Services.